0: करते करते बुरी तरह थक जाते हैं तो मजबूरन सारे विषयों को छोड़ करके सुषुप्ति की तरफ जाना ही पड़ता है। इसलिए यहां पर बतलाया कि वह जो स्वरूप है मन बाणी का विषय नहीं, सुषुप्ति में जाने के बाद वह जो अवस्था है उसका मन बाणी से वर्णन नहीं कर सकते। केवल आप कहते हैं कि मैं सुख पूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अतद व्यावृत्ति के द्वारा ही उस स्वरूप का अधिगत होता है, ज्ञान होता है, जैसे सुषुप्ति में होता है। सकस्य तो तब्य कतिविध गुण कस्य विषय, कहते हैं कि वह जो सगुण साकार है वह सगुण साकार ऐसा है, पदे करवाची ने पतति न मन कस्य न बच। निर्गुण निराकार के विषय में कह दिया कि वह किसी के का स्तोतव्य नहीं है, स्तुति का विषय नहीं, परंतु सगुण साकार ऐसा स्वरूप है जिसमें सबका मन सबकी बुद्धि अनायास ही लग जाता है। जो सगुण साकार में भगवान ने अनेक प्रकार से अवतार लिया है वह सबके बुद्धि का विषय है। सगुण साकार के विषय में शास्त्र कहता है सर्वम खल्वमिदम ब्रह्म आत्मय इदम सर्वम, बहुत श्रुतियां हैं, स्वाध्याय में वही प्रसंग चल रहा है। तो जो सगुण साकार परमात्मा है वही परमात्मा नाम रूप का चादर ओढ़ा है। जैसे रंग मंच पर कोई रावण बन गया हो, कोई हनुमान बन गया हो, कोई पुरुष यदि गोपी बन गया, गोपी बनने के बाद उस गोपी बने हुए पुरुष के मन में पति पाने की जैसी अभिलाषा नहीं होती, उसे पता है कि मैं तो पुरुष हूं, लड़का हूं, रंग मंच पर केवल मैं दो तीन घंटे के लिए गोपी भाव को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से वही परमात्मा अनेकाकार भाव को प्राप्त हुआ है। इसी को ऋग्वेद में कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही उस परमात्मा को अनेक प्रकार से विद्वान लोग कहा करते हैं। वही जो परमात्मा है सत्व गुण को स्वीकार करके विष्णु रूप को प्राप्त हुआ, जगत की रक्षा करता है। वही रजोगुण को स्वीकार करके सृष्टि का विस्तार करता है। वही शिव तत्व तमोगुण को स्वीकार करके संहार करता है। यहां पर शंका होना चाहिए कि सामान्य व्यवस्था है बीस वृक्षों पर संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, एक विषैला पेड़ को लगाने के बाद भी स्वयं उसका छेदन करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर उस चैतन्य ने जगत को बनाया, संवारा, विस्तार किया, पालन किया, इसके बाद वह संहार क्यों करता है? संहार करना उपयुक्त नहीं है। परंतु हम लोग आए दिन सुनते हैं शास्त्रों के द्वारा वही चैतन्य तमोगुण को स्वीकार करके जगत का संहारक बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वास्तव में वह जो संहार है वह नए सृष्टि के लिए है। जैसे किसान खेत में फसल लगाता है, फसल जब पक जाती है तो पकने के बाद वह अपने हाथों ही खेत को काट के घर में लाता है। यदि उस पुराने फसल को न काटे तो नया फसल हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा यहां पर संहार में हिंसा भाव नहीं बल्कि उसकी उदारता, अनुकंपा, करुणा है। वही चैतन्य माता के शरीर में प्रवेश करके मातृ रूप से पूजित हो रहा है। वही चैतन्य पत्नी के शरीर में प्रवेश करके वह जो है साक्षात सती रूप से पूजित हो रहा है। वही चैतन्य पति के शरीर में प्रवेश करके पति परमेश्वर हो गया। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में चैतन्य की व्यापकता स्वीकार की है, अनेकता भी स्वीकार किया है। जैसे शरीर में अनेकता होने पर भी एकता है, देश में एकता, अनेकता होने पर भी एकता रहती है। इस शरीर में अनेकता का तात्पर्य है सारी इंद्रियां अलग अलग, इंद्रियों का आकार प्रकार अलग, सारे इंद्रियों के कार्यकलाप अलग, फिर भी इसको हम एक शरीर कहते हैं। आंख से देखना बिल्कुल पैर से चलने के विपरीत है, कान से सुनना मुख के खाने से विपरीत है, फिर भी विपरीत होने पर भी, अनेकात्मता होने पर भी इस पूरे समुदाय को मिलाकर एक शरीर है, ऐसा व्यपदेश कथन होता है। इसी प्रकार से वही चैतन्य अनेक भाव में स्थिर है। यदि पत्नी पति में परमेश्वर का दर्शन करती है, उसे साक्षात परमेश्वर की दर्शन का फल प्राप्त होता है। सच्चे दिल से दर्शन करे तो, क्योंकि निर्गुण निराकार जो मन वाणी का विषय है उसको वह समझ नहीं सकती है। इसीलिए शास्त्र ने कृपा करके यह कथन कर दिया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ के अंतर्गत वह पति का पिंड आ गया। उस पति के पिंड में परमेश्वर का दर्शन करने से जो परमेश्वर के दर्शन से लाभ होता है वह लाभ उसको उपलब्ध हो जाता है। एक पतिव्रता स्त्री जो परमेश्वर समझकर पति की पूजा करती है, वह यदि कुछ भी कह दे वह अमिट होता है। महाभारत में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार ऋषि किसी सदगृहस्थ घर पधारे हुए थे, कुछ जो है भेंट पूजा में अव्यवस्था हो गई। अव्यवस्था होने के बाद एक ऋषि को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद ऋषि ने हाथ में जल उठाया, श्राप दे डाला कि तूने हमें निमंत्रित करके हमारा सत्कार नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत प्रार्थना किया कि भीड़ भाड़ में हमें आपका ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैं आपकी सेवा न कर सकी, क्षमा करे। और ऋषि ने श्राप दे डाला कि जा, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। पतिव्रता ने कहा कि ऋषिवर, आपने श्राप तो दे दिया परंतु हमारे पति नहीं मरेंगे। ऋषि ने कहा कि हमारा श्राप अमोघ है। उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि सूर्य उदय होगा तब तो मरेंगे, सूर्य उदय ही नहीं होंगे। उस पतिव्रता स्त्री के पातित व्रत के प्रभाव से सूर्योदय होना बंद, संसार में हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। सभी ऋषि महर्षि आए, पत्नी को बहुत समझाए, तू मान जाओ। पत्नी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए सूर्योदय तो होना नहीं है। ऋषियों ने भी मध्यम मार्ग निकाला कि ऐसा है कि ऋषि की बात भी रह जाए और तुम्हारी बात भी रह जाए, इसलिए सूर्योदय होते तुम्हारे पति तो मरेंगे परंतु कुछ क्षण के बाद जीवित हो जाएंगे।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

नमः अभिवाद्याय नमः महाकर्मणे नमः तपस्विने नमः भूतधारणाय नमः उन्मत्तवेशाय नमः प्रच्छन्नाय नमः सर्वलोकाय नमः।

नमः सर्वभूताय नमः विरूपाय नमः वामनाय नमः नराय नमः लोकपालाय नमः अन्तर्हितात्मने नमः प्रसादाय नमः अभयदाय नमः विभवे नमः पवित्राय नमः महते नमः नियताय नमः नियताश्रयाय नमः स्वयंभुवे नमः सर्वकर्मणे नमः आदये नमः आदिकराय नमः निधये नमः सहस्राक्षाय नमः विशालाक्षाय नमः सोमाय नमः नक्षत्रसाध

सुवक्त्राय नमः, उदग्राय नमः, विनताय नमः, दीर्घाय नमः, हरिकेशाय नमः, सुतीर्थाय नमः, कृष्णाय नमः, शृगालरूपाय नमः, सर्वार्थाय नमः, मुण्डाय नमः, सर्वशुभंकराय नमः, सिंह

य नमः न्यग्रोधाय नमः विश्वकर्मणे नमः विश्वभुजे नमः तीक्ष्णाय नमः अपायाय नमः हर्यश्वाय नमः सहायाय नमः कर्मणे नमः कालविदे नमः विष्णवे नमः प्रसादिताय नमः।

नमः, नक्षत्र विग्रहाय नमः, भावाय नमः, निभावाय नमः, सर्वतोमुखाय नमः, विमोचनाय नमः, शरणाय नमः, हिरण्यकवचोद्भवाय नमः, मेखलायै नमः, कृतिरूपाय नमः।

खगाय नमः, भिक्षवे नमः, भिक्षुरूपिणे नमः, रौद्ररूपाय नमः, सुरूपवते नमः, वसुरेतसे नमः, सुवर्चस्विने नमः, वसुवेगाय नमः, महाबलाय नमः, मनसे नमः, वेगाय नमः।

भाग्याय नमः सहस्रभुजे नमः पक्षिणे नमः पक्षरूपाय नमः अतिदीप्ताय नमः निशाकराय नमः समीराय नमः दमनाकाराय नमः अर्थाय नमः अर्थकराय नमः।

सुधाजाताय नमः, स्वर्गद्वाराय नमः, महाधनुषे नमः, गिरावासाय नमः, विसर्गाय नमः, सर्वलक्षणलक्षविदे नमः, गन्धमालिने नमः, भगवते नमः, अनन्ताय नमः, सर्वलक्षणाय नमः, सन्तानाय नमः, बहुलाय नमः, बाहवे नमः, सकलाय नमः, सर्वपावनाय नमः, करस्थालिने नमः, कपालिने नमः, ऊर्ध्वसंहननाय नमः, यूने नमः, यंत्रतंत्रसुविख्याताय नमः, लोकाय नमः, सर्वाश्रयाय नमः, मृदवे नमः, मुंडाय नमः, विरूपाय नमः, विकृताय नमः, दंडिने नमः, कुंडिने नमः, विकुर्वणाय नमः, वार्यक्षाय नमः, ककुभाय नमः, वज्रिणे नमः, दीप्ततेजसे नमः, सहस्रपदे नमः, सहस्रमूर्ध्ने नमः, देवेन्द्राय नमः, सर्वदेवमयाय नमः, गुरवे नमः, सहस्रबाहवे नमः, सर्वांगाय नमः, शरण्याय नमः, सर्वलोककृते नमः, पवित्राय नमः, त्रिमधवे नमः, मन्त्राय नमः, कनिष्ठाय नमः, कृष्णपिंगलाय नमः, ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः, शतघ्नाय नमः, शतपाशधृषे नमः, कलायै नमः, काष्ठायै नमः, लवाय नमः, मात्रायै नमः, मुहूर्ताय नमः, अह्ने नमः, क्षपायै नमः, क्षणाय नमः, विश्वक्षेत्रप्रदाय नमः, बीजाय नमः, लिंगाय नमः, आद्याय नमः, निर्मुखाय नमः, सदसते नमः, व्यक्ताय नमः, अव्यक्ताय नमः।

त्रिविष्टपाय नमः, निर्वाणाय नमः, हृदयाय नमः, ब्रह्मलोकाय नमः, परागतये नमः, देवासुर विनिर्मात्रे नमः, देवासुर परायणाय नमः।

देवासुरगणाध्यक्षाय नमः देवासुरगणग्रण्ये नमः देवाधिदेवाय नमः देवऋषये नमः देवासुरवरप्रदाय नमः देवासुरेश्वराय नमः विष्णवे नमः देवासुरमहेश्वराय नमः सर्वदेवमयाय नमः अचिन्त्याय नमः देवात्मने नमः स्वयंभवाय नमः उद्गताय नमः त्रिक्रमाय नमः।

महर्षभाय नमः, विबुदाघ्राय नमः, सुराय नमः, श्रेष्ठाय नमः, स्वर्गदेवाय नमः, उत्तमाय नमः, संयुक्ताय नमः, शोभनाय नमः, वक्त्रे नमः, आशाणां प्रभवाय नमः, अव्ययाय नमः, गुरवे नमः, कांताय नमः, निजाय नमः, सर्गाय नमः, पवित्राय नमः, सर्ववाहनाय नमः, शृंगिने नमः, शृंगप्रियाय नमः, बभ्रवे नमः, राजराजाय नमः, निरामयाय नमः, अभिरामाय नमः, सुशरणाय नमः, निरामाय नमः, सर्वसाधनाय नमः, ललाटाक्षाय नमः, विश्वदेहाय नमः, हरिणाय नमः, ब्रह्मवर्चसाय नमः, स्थावराणां पत्ये नमः, नियतेन्द्रियवर्तनाय नमः, सिद्धार्थाय नमः, सर्वभूतार्थाय नमः, अचिन्त्याय नमः, सत्याय नमः, शुचिव्रताय नमः, व्रताधिपाय नमः।

0: इति श्रीलिङ्गमहापुराणे पूर्वभागे रुद्रसहस्रनामकथनं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः।
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

विष्टरश्रवसेतुभ्यं नमः सत्यमयाय च सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः। नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय वै नमः। ब्रह्मगाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे ब्रह्मजाय च तपसे ते नमस्त्वीश तपसा फलदायिने। स्तुत्याय स्तुतये नित्यं स्तुतिसंप्रीतचेतसे। श्रुत्याचार प्रसन्नाय श्रुत्याचार प्रियाय च चतुर्विधस्वरूपाय जल

नाह यथेच्छसि तथा कुरु। देवाऊचुः यदि प्रसन्नो देवेश जगदीश्वर शंकर सुरान् विज्ञाय विकला।

नमस्तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्णप्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय।

0: நம சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம்.org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம்.org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: आत्मा उन देह से भिन्न है, ये निश्चय कर लेना चाहिए. यथा जगत प्रवृत्तिनाम आदिकारणमं सुमान पुमांस तथैव देहादि प्रवृत्तो करणम परम. दृष्टांत देकर समझा रहे हैं. जैसे संसार में सभी प्राणियों की प्रवृत्ति का मूल कारण है सूर्य, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में व्याप्त होता है तो सभी प्राणी अपने प्रवृत्ति कर लेते हैं. इसी तरह उसी परमात्मा के शरीर में अनुप्रवेश के पश्चात ही शरीर चेष्टा करता है. सूर्य के प्रकाश में प्राणी अपने अपने कर्म करते हैं, चेष्टा करते हैं. इसी तरह परमात्मा सदाशिव के अनुप्रवेश से ही यह देह चेष्टा करता है. सूर्य के रश्मि से प्राणी सब कुछ करते हुए भी, चाहे वह इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, शास्त्र विहित हो शास्त्र प्रतिषिद्ध हो, चाहे नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे काम्य कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो, चाहे प्रायश्चित कर्म हो, यावत प्रवृत्ति में सूर्य का हेतु है, सूर्य कारण है, प्रकाश कारण है. लेकिन सूर्य के प्रकाश के चलते प्राणी में जैसा भी प्रवृत्ति, उन प्रवृत्तियों से सूर्य को कुछ लेना देना नहीं है, सूर्य असंग है. इसी तरह सदाशिव के परमात्मा के प्रवेश से ही इस शरीर में चेष्टा है, और शरीर चेष्टावान होने के बाद चाहे वह शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, चाहे नित्य करे चाहे नैमित्तिक करे, चाहे काम्य करे चाहे प्रायश्चित करे चाहे निषिद्ध करे, कुछ भी कर्म करे, उस कर्म का प्रेरक उस परमात्मा को इन कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है. नहीं है तो फिर ये जीवात्मा क्यों कर्म बंधन में पड़ता है महाराज? तो बोले जीवात्मा के कर्म बंधन में पड़ने का कारण उसकी अपनी मूर्खता है, ना समझपना है. वो अन्य की चेष्टा को अन्य के रूप में, परक चेष्टा को परमात्मा के उपस्थिति में होने वाले यावत देह और करण आदि की चेष्टा को वह भ्रांति से मानता है कि ये चेष्टा मैं ही करने वाला हूं. चिच्छायापेत, चैतन्य की छाया से युक्त होकर अंतकरण और अंतकरण के तादात्म सन्निधि से, जैसे अग्नि सन्निधि से लोहा जलाने वाला हो जाता है, इसी प्रकार से चिच्छाया सन्निधि से शरीर कर्म करने वाला, चेष्टा करने वाला, इंद्रियां कर्म करने वाले, चेष्टा करने वाले, मन बुद्धि आदि कर्मकर्ता के रूप में उपस्थित होते हैं, वह सन्निधि मात्र से. और भ्रांति ये होती है कि उचित छाया को भ्रांति ये होती है कि मैं ही सब कुछ करता हूं और यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है. ये ठीक है, अंतकरण सन्निधि से चिच्छाया ही कर्म करता है, लेकिन वह चिच्छाया ये कहता कि यही मेरा पारमार्थिक असली स्वरूप है, ये उसकी भ्रांति है. और जो कर्म बंधन की प्राप्ति होती है, वेदांत की सारी प्रक्रिया है, उसी चिच्छाया को होती है. बात समझ गए? चिच्छाया माने चैतन्य का प्रतिबिंब, चिदाभास को होती है. और यदि तुम, हम यदि खाली मेरा स्वरूप ही चिदाभास है, इससे अलावा मेरा स्वरूप नहीं है, मानते हो तो फिर वो कर्म से बंधायमान हो जाओ, लिपायमान हो जाओगे, अन्यथा इन कर्मों से यदि मुक्त होना चाहते हो, इन कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो कर्म रोकने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करते रहने दो, जो करने वाले हैं वो कर्म करेंगे, करते रहने दो। पश्यन सिन्मन स्पृशन जिग्रन नसनन गच्छन स्वपन शोषण प्रलपन विसृजन गृणन उन्मिशन निमिशन नपी इंद्रियान निंद्याधीशु वर्तन्त इति धारय ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिमा। प्रक्रिया बिल्कुल परफेक्ट है गीता में, प्रक्रिया में फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। कर्म से आप मुक्त होने का जो प्रक्रिया गीता में भगवान ने दी है वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। गलत हम हैं क्योंकि हम उस प्रक्रिया को अपना नहीं सकते। 18वें अध्याय में भी भगवान ने कह दिया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम पंचैतानि मानि कारणानि निबोधमे सांख्य कृतांते प्रोक्तानि न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतव। चाहे शास्त्र सम्मत कर्म हो चाहे शास्त्र निषिद्ध कर्म हो, सारे के सारे कर्म करने वाले यही पांच हेतु हैं और इन पांच में तुम्हारा नाम तुम्हारा उपस्थिति कहीं भी नहीं है, इन पांच में से तुम एक भी नहीं हो। पहला कर्मकर्ता शरीर, दूसरा कर्मकर्ता चिदाभास, तीसरा कर्मकर्ता करण इंद्रियां अंतकरण, चौथा कर्मकर्ता पंच प्राण, पांचवा कर्मकर्ता आदिदैव। तुम अपने को क्या मानते हो? शरीर मानते हो कि शरीर से भिन्न मानते हो? तुम अपने को क्या मानते हो? इंद्रिया मानते हो कि इंद्रिय से भिन्न मानते हो? तुम अपने को प्राण मानते हो कि प्राण से भिन्न मानते हो? तुम अपने को चिदाभास मानते हो कि चिदाभास से भिन्न मानते हो? तुम अपने को अधिदैव मानते हो कि अधिदैव से भिन्न मानते हो? यदि तुम इन्हीं पांच में से एक मानते हो तो तुम्हारे मथे में इनके द्वारा किया हुआ कर्म आएगा, यही तुम्हारा कर्म बंधन है। यदि तुम इन पांच से अलग मानते हो तो फिर इनका किया हुआ कर्म से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही कर्म बंध विनिर्मुक्त का ये अवस्था है ये, क्योंकि वेदांत और शास्त्र महापुरुष बार बार कहते हैं तुम बिंब हो प्रतिबिंब नहीं हो। कर्म करने में हेतु प्रतिबिंब है, कर्म करने में हेतु बिंब नहीं है। तुम बिंब हो चिदाभास प्रतिबिंब है। अब दर्पण के अंदर के दिखने वाले दृश्य को कोई भी मूर्ख भी नहीं कहेगा कि मैं दर्पण के अंदर हूं, ये कोई भी नहीं कहता है। कहता है ना? दर्पण के अंदर दिखने वाले शरीर को कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं दर्पण के अंदर हूं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। दर्पण के अंदर दिखता हुआ भी वो अपने आप को निश्चय कर रहा है कि मैं दर्पण के बाहर खड़ा हूं। इसी तरह अंतकरण में चिदाभास के रूप में देखते हुए भी आपको इतने करना निश्चय है कि मेरा असली स्वरूप तो अंतकरण से भिन्न है। इतना ही निश्चय आपका हो जाना है कि असंगता आ जाएगी। और ये अंतकरण संयुक्त जो चिदाभास आदि इस पांच संघात से सम्मिलित रूप से जो भी कर्म होते, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो चाहे न्याय हो न्याययुक्त हो चाहे अन्यायुक्त हो, उससे फिर तुमको कुछ लेना देना नहीं है। यही करें यही भरें, मुझे क्या लेना देना है। यही कर्मबंधन से विनिर्मुक्त होने की दृष्टि है।

0: प्रणम परम। इसी प्रकार के देह आदि, आदि शब्द से प्राण, इंद्रियां, अंतकरण, इन सब में चेष्टा होने में कारण उस परमात्मा का अनुप्रवेश हेतु है। मम देहो अयम इत्येवं स्त्रीवालांधका मन्वते। अरे चार्वाकियों, हमारे वैदिक सनातन धर्म की तो स्त्रियां भी मैं देह हूं नहीं कहती है, मेरा शरीर ये कहती है, और तुम उतनी भी नहीं हो, उससे भी बढ़कर मूर्ख हो गए हो। हमारे वैदिक सनातन धर्म के तो बच्चे भी मेरा शरीर कहते हैं, मैं एक शरीर नहीं कहता है, बच्चा भी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर ये कहता है। वैदिक सनातन धर्म के लोग तो अंधा व्यक्ति भी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर ये कहता है। मम देहो अयम इति एवं स्त्री बाला अंधकाश्च मन्यते। सभी लोग यही मानते हैं कि मेरा शरीर, हाँ तो मैं शरीर नहीं मानती। फिर तुम ही ये गलती क्यों करते फिर रहे हो कि शरीर ही आत्मा है। देहो अम इति ना वेति कदाचित अपि कश्चन। ये सारे के सारे मतभेद उपस्थित हैं। इंद्रियाण्यपि नात्मानः। अब तो शरीर आत्मा नहीं है, ये युक्ति से समझा दिया। अब कोई माने कि इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हो तो उसका भी खंडन कर रहे हैं। इंद्रियाणि नात्मानः, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती है। करणत्वाद प्रदीपवत्, ये इंद्रियां तो साधन हैं, करण हैं, प्रदीपवत दिए की तरह। जैसे अंधकार कमरे में पदार्थ को देखना हो तो दिए को जलाना पड़ता है, और दिए को जलाने के माध्यम बाद दिए के प्रकाश के माध्यम से कमरे के पदार्थों का हमें ज्ञात होता है। जैसे दिया, कोई भी अज्ञानी भी नहीं कहेगा कि यह दिया मैं हूं, कहेगा हा? दीपो हम कहेगा, कोई दिया जो जलता हुआ दिया है वही मैं हूं, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। जैसे दिया करण है वस्तु प्रकाशन का, इसी तरह ये इंद्रियां भी दीपक की तरह वस्तु प्रकाशन के साधन है, करण है। माला को प्रकाशित करना हो तो आंख चाहिए, नमक और चीनी को प्रकाशित करना हो तो जिह्वा चाहिए। इसी प्रकार के शब्द, स्तुति और निंदा का शब्द को प्रकाशित करना हो तो कान चाहिए। इसी प्रकार के सुगंध और दुर्गंध को प्रकाशित करना, कमरे में सुगंध है कि दुर्गंध है यह जानने के लिए दिया जलाने से पता चलेगा कि नहीं है? नहीं चलेगा। फिर क्या जलाना चाहिए? नाक जलाना चाहिए है? कमरे में सुगंध है कि दुर्गंध है? देखो कल सुबह आते ही कितना दुर्गंध था है? फिर तुरंत खिड़की खोलनी पड़ी, स्प्रे करना पड़ा, तो बत्ती तो जल रहे थे ना, तो बत्ती जलने से पता नहीं चलेगा हा? तो नाक जलना चाहिए। जैसे सुगंध दुर्गंध के लिए, जैसे लाल पीले के लिए बत्ती है, कोई भी बत्ती मैं नहीं कहता है, इसी तरह सुगंधी दुर्गंधी को जानने के लिए नाक है। तो फिर नाक को मैं क्यों कहते हो? नाक को मैं कहते हो तो बत्ती को भी मैं कहो है? इंद्रियों को मैं कहते हो तो बत्ती को भी मैं कहो ना। ये तो केवल करण है, पदार्थों को जानने की साधन है, सामग्री है। इंद्रियाणि इंद्रियाण्यपि नात्मानः करणत्वात् प्रदीपवत्। वीणावादनवत् श्रोत्रम् शब्दग्रहण साधनम्। चक्षुस्तेजस्त्रितया रूपग्रहण साधनम्। चक्षु रूप ग्रहण के साधन हैं। जैसे लोक व्यवहार में वस्तु को प्रकाशित करने के साधन सूर्य का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बिजली का प्रकाश आदि हैं, इसी तरह वो प्रकाश को, चंद्रमा को कोई मैं नहीं कहता, दीपक को कोई मैं नहीं कहता, चंद्रमा को, सूर्य को कोई मैं नहीं कहता, टॉर्च को मैं नहीं कहता, तो फिर आंख को मैं क्यों कह रहे हो? ये भी टॉर्च की तरह यंत्र हैं, साधन हैं रूप प्रकाशन के। गंधस्य ग्राहकम घ्राणम पुष्प संपुट का अधिक बद, गंध ग्रहण का साधन नाक है। रसस्य ग्राहिका जिह्वा दधि चोद्रग्रतादिवत, ये दही है, ये दूध है, ये घी है, ये मधु है, ये मीठा है, ये नमक है, इसको जानने का साधन क्या है? रसन इंद्रिया। जैसे लाल, पीला, हरा, नीला जानने के साधन क्या है? दीपक। दीपक को मैं नहीं कहते। इसी प्रकार से मधुर, तीक्त, कटुआ, अम्ला आदि को जानने का साधन रसन इंद्रिया। दीपक से ये खट्टा है कि मीठा है ये पता नहीं चलेगा। दीपक से, सूर्य के रोशनी से खट्टा है कि मीठा है ये पता नहीं चलेगा। यदि सूर्य के रोशनी से खट्टा है कि मीठा है पता चलता तो आम खरीदने वाले कभी धोखे में न पड़ते, देखकर लाए हैं। और घर में जब कहते हैं मालिक, अरे खट्टा आम लेके आए, देख के नहीं लाया? बोले देख के लाया। नौकर कहता भाई देख के लाया, उसने कहा देख के नहीं लाया। मालिक भी मूर्ख और नौकर भी मूर्ख है। चख के नहीं लाया कहता तो तब तो ठीक था, है ये खट्टा आम है थोड़ा चख के नहीं लाया कहता तो ठीक था। मालिक क्या कह रहा है? देख के नहीं लाया। और नौकर क्या कह रहा है? देख कर ही लाया, फिर भी खट्टा कैसे निकला? क्योंकि जिस प्रकाश से तुम आम को देख रहे हो, आम के कलर को तो वो देख सकता है, रस को थोड़ी देख सकता है ये प्रकाश। रस को देखने के लिए तो रसन इंद्रिय चाहिए। मालिक को कहना चाहिए था चख के नहीं लाया। और यदि नौकर कहता कि हम मैंने चख के लाया तो तेरा झूठा खाएंगे हम, वहां भी समस्या है। और चख के नहीं लाया तो फिर अपूरा अधूरा काम किया उसने, बड़ी समस्या है संसार है। रसस्य ग्राहिका जिह्वा दधि चोद्र घृतादिवत, इंद्रियाणि नमे संति मूकोऽस्मि बधिरोऽस्मि हम। कोई बहरा कान न सुनने वाला व्यक्ति हो, वह यही कहता है कि मेरे कान नहीं है, यही ना कहता है, मैं नहीं हूं ये तो नहीं कहता है, कहता है बधिर व्यक्ति, बिल्कुल कान न सुनने वाला व्यक्ति के सामने तुम कुछ बोलो, उसके कान तो नहीं है लेकिन शब्द हैं, तो वो क्या कहता है? हैं? मैं नहीं हूं ऐसा कहता है, कान नहीं है इतनी ना कहता है। और जिसकी वाणी नहीं है, मुंह कहे मैं नहीं हूं तो फिर भी नहीं कहेगा वो, मुख नहीं है, वाणी नहीं है कहेगा वो। कोई गुंगा व्यक्ति को तो क्यों नहीं बोलता है पूछो, कारण बताएगा कि नहीं? गुंगा व्यक्ति को तुम पूछो, कान तो सुनता है लेकिन शब्द नहीं बोल सकता, उस गुंगे से पूछो तू क्यों नहीं बोलता है, तो क्या जवाब देगा बोलो? है वाणी नहीं है बोलकर जवाब देगा वो, तो इशारा करेगा कि मुख नहीं है, या फिर लिख के कहेगा कि वाणी नहीं है, है ना? वाणी नहीं है मेरे, मैं नहीं हूं तो ये तो नहीं कहता है ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? इंद्रिय अलग है, मैं अलग है, आत्मा अलग है। इत्याहोर इंद्रियेर हीना जना किम ते निरात्मका, कि हाथ कटा हुआ व्यक्ति निरात्मक है, वो आत्मरहित है, कि पांव कटा हुआ व्यक्ति निरात्मक है, आत्मरहित है, आंखा नहीं है जो अंधा है, क्या वो निरात्मक है? कान नहीं है बहरा है तो निरात्मक है, वाणी नहीं है गूंगा है तो क्या वो निरात्मा है? ये इंद्रियां तो करण है, करण नहीं है लेकिन आत्मा नहीं है तो नहीं कर सकते हो ना, इनसे अलग आत्मा है ये सिद्ध करना है बस। प्राणोप्यात्मा न भवती ज्ञाना भावा सुसुप्तिषु। बोले ठीक है, आज शरीर भी आत्मा नहीं है, इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, प्राण तो आत्मा है ना, प्राण को तो आत्मा मानना चाहिए। बोले प्राण भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञानाभाव। आत्मा में तो ज्ञान रहता है, आत्मा ज्ञान का पर्यायवाची है, ज्ञान आत्मा का पर्यायवाची है। ज्ञान स्व है वही आत्मा है, आत्मा स्व है वही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा दोनों ही एक ही व्यक्ति का एक ही वस्तु का नाम है, पर्यायवाची मात्र है। ज्ञान कहो और आत्मा ज्ञान है, आत्मा नहीं है कहना मूर्खता है। हाँ, प्राण में ज्ञान नहीं है, प्राण में ज्ञान न होने से क्या सिद्ध हुआ? प्राण आत्मा नहीं है बस। यदि प्राण में ज्ञान होता तो सुषुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा की अवस्था में सारे के सारे प्राण चेष्टा करता हुआ भी बाहर के वातावरण से वह अनभिज्ञ रहता है। गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति के सामने कोई आए कमरे से तो वह पहचानेगा कि नहीं? प्राण तो काम कर रहा है, नाक मुख से जाना आना कर रहा है, वो तो पहचानेगा कि नहीं? नाक जिस समय, प्राण नाक से जिस समय बाहर गया है उस समय तो आपको देख लेगा वो, तो फिर अंदर जाएगा। आपके चले जाने के बाद गहरी निद्रा से सोकर उठा हुआ व्यक्ति को ये भान होना चाहिए ना कि मैं सोया था उस समय तुम आकर चले गए। होता है भान? नहीं होता। क्यों? ज्ञानाभाव। एक महात्मा थे, बैठते हैं, उनके पास बड़ा बढ़िया कंबल था, कहीं यात्रा में गए, भक्तों ने भिक्षा दिया, बढ़िया हाँ आम रस खिला दिया, पूरी और आम रस तो खाए, तो उनको दिन में मध्यान्ह थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, पेड़ के नीचे सो गए एकांत में, तो कंबल बगल में रखा था, ठंडी का मौसम था, ओढ़ के सोए। हाँ, तो एक कोई उचक्का आ गया, उसने देखा बहुत बढ़िया कंबल ओढ़कर सो रहा है ये। हे महात्मा, कौन सो रहा है? कुछ नहीं बोला। अरे कौन सो रहा है? कुछ नहीं बोला। दो तीन बार आवाज लगाया, कुछ नहीं बोला। तो उस उचक्के को पता चला कि यह तो गहरी निद्रा में सोया है। तो कम्बल को खींचा तो पूरा का पूरा कम्बल आ गया, खींचा तो ऊपर से उड़ा था, और उस महात्मा को पता ही नहीं चला कम्बल चला गया, और चोर लेके चला गया कम्बल। थोड़ी देर के बाद महात्मा जब उठे, कम्बल तो है ही नहीं भाई, कहां गया? मैं ओढ़ के सोया था, कहां चला गया? यदि गिरा होता तो बगल में होना, तो बगल में भी नहीं, और आपने आप कमल जा नहीं सकता क्योंकि जड़ है, इतना तो आप भी जानते हो ना, है? अपने आप कमल भाग के जा तो नहीं सकता नहीं क्योंकि जड़ है, इतना तो आप भी जानते हो। फिर भी ये कमल कौन ले गया, कहां चला गया, कौन आया था? विचार करने लगे, मैं तो सो गया था लेकिन मेरा प्राण तो सोया नहीं था, प्राण को तो पता होना चाहिए था कौन आया, कौन खींच के ले जा रहा है, हैं? प्राण को तो पता होना चाहिए था, क्यों नहीं पता चला? इसका मतलब है कि प्राण जड़ है। महात्मा को निश्चय हुआ कि प्राण को कुछ पता नहीं चलता है। आप लोगों को निश्चय हुआ है कि नहीं? अभी तक प्राण जड़ है, प्राण को कुछ पता नहीं चलता है, ये अभी तक पक्का निश्चय हुआ कि नहीं? है? महात्मा को पहली बार निश्चय हुआ कि प्राण जड़ है, यदि जड़ न होता तो उसको पता चलता कि कमल कौन आया, कौन ले गया, किधर किस दिशा में गया, प्राण को कुछ भी पता नहीं, जगता हुआ भी, इसका मतलब प्राण जड़ है। तो महात्मा बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। तो दूसरा व्यक्ति आया तो महात्मा बड़े प्रसन्न, उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा आज तुम बड़े प्रसन्न हो, कारण क्या है? बड़े पूछो नहीं, मुझे आज एक ग्रंथि, एक रहस्य खुल गया, एक भ्रांति मेरी टूट गई, एक भ्रम मेरा टूट गया। जगत में कितनी भ्रम है, कितनी भ्रम है, सभी भ्रम मिलजुल कर मुझे फंसा रहे हैं, उनमें से एक भ्रम आज मेरा टूट गया। कैसे टूटा? बोले मेरा कमल चोरी हो गया। चोरी हो गया तो रोना चाहिए था, तुम हंस रहे हो। बोले उसका कारण तो समझ लो, मैं सो रहा था गहरी निद्रा में, मेरे प्राण जग रहे थे, फिर भी कम्बल कौन ले गया, किधर ले गया, उसको कुछ पता नहीं चला। इससे मुझे पक्का निश्चय हो गया प्राण आत्मा नहीं है, जड़ है, यह निश्चय होना ही मेरी प्रसन्नता का कारण है। कम्बल तो आता है जाता है, यह निश्चय हो जाना। हाँ, देखो इस शरीर आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, अंतःकरण आत्मा नहीं है, इन सबका संघात भी आत्मा नहीं है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास भी आत्मा नहीं है, ये समझ में आ जाना कम उपलब्धि है, है? कम उपलब्धि है, बोलो, यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो महात्मा तो ऐसी उपलब्धि होने पर ही प्रसन्नता व्यक्त करता है, और आप लोग तो इनको महत्व देते नहीं हो, करोड़ दो करोड़ लाभ हो गया तो उसी को महत्व दे, बड़े प्रसन्नता हो जाते हो, और क्या। महात्मा की तरफ जीने सीखो भाई, और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओ
1: Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sakti Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Shiv Bhakt Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Shaktiyar ya Satyar hai. Kaveri Nadi dwara sanchit Tamil Nadu ke Barinchayur mein ek krishak parivar mein Satyar ka janm hua. इनकी भक्ति कट्टरता का भाव लिए हुए थी। यदि कोई व्यक्ति शिव भक्तों के प्रति अपशब्द कह देता तो शक्तियार चिमटे के समान दंडा युधम से पकड़कर उसकी जीवा काट डालते थे। उनकी ऐसी असामान्य और विचित्र सेवा विधि आधुनिक युग में एक आश्चर्यजनक पौराणिक गाथा के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक धर्म के मानने वालों द्वारा दूसरे धर्म की खिल्ली उड़ाना एक पुरानी प्रथा है। तमिल महाकाव्य मणिमेखले और नाटक मुक्त विलास में इसके प्रचुर संकेत मिलते हैं। स्वधर्म में विश्वास प्रशंसनीय है, पर इस विश्वास की भी मर्यादा है। सभी धर्म अतः एक ही ज्योति, एक ही सत्य स्वरूप ईश्वर की ओर जाने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। जब विश्वास अपनी सीमा लांघ जाता है तो दुख और अनिष्ट का कारण बनता है। धर्म आसक्ति और धर्माधता अलग अलग हैं। शक्तियार धर्मार्थ भक्तों की श्रेणी में हैं। अपने धर्म से भिन्न धर्म पर आस्था रखने वाले को कष्ट देना अथवा उसके प्राण हरण करना मानवीय और ईश्वरीय दृष्टि से अक्षम्य है। इनकी क्षमा नहीं होती। इनके बीच युगों से कई रूप में संघर्ष रहा है और हम सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर अत्याचार और अनाचार सामाजिक जीवन का एक विष है। शिव धर्मालंबी शक्तियार शिव अथवा उनके भक्तों के प्रति अपशब्द कहने वालों की जबान खींचकर काट दिया करते थे। गेरी पत्थर भी कुछ ऐसा ही करते थे, पर वे शिव भक्तों को पीड़ित करने वालों को दंडित करते थे। अन्य धर्मावलंबियों की हानि करने की भावना आज भी कुछ धर्मों में पाई जाती है, पर नवयुग की न्याय व्यवस्था, सामाजिक परिवेश और सर्वधर्म संभाव की चिंतन धारा द्वारा कट्टरता को वश में कर पाना आज संभव हो चुका है। इसीलिए शक्तियार जिस युग में थे उस युग में अन्य धर्म वाले जब शिव भक्तों की खिल्ली उड़ाते थे तो शक्तियार उनकी जिब्बा काट डालते थे। ये एक कट्टर वाले शिव भक्त थे। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: அஸ்தி யதிராஜமௌலே பவதாபரணம். முஜ்மே சாரே தோஷ் ஹோனே பர் பி ஆப்கே ஆபரண், ஆப்கே ஆபூஷணோ கே, ஆப்கே உபயோகி கே பாத்ர கே ரூப் மே முஜே ஸ்வீகார் கர்லோ, கஹி ந கஹி தோ மே காம் ஆவுங்கா, சர்வதா பரித்யாக் நஹீ கர்னா மஹாராஜ். பட சுந்தர் பாவ் ஹே இஸ் ஸ்லோக் மே. भगवान से ये प्रार्थना की गई है, आपके द्वारा मैं तिरस्कृत न हूं, मेरा आप तिरस्कार नहीं करना, जिस रूप में प्रयोग करना चाहो कर लो, लेकिन आपके उपयोगी वस्तु के रूप में कम से कम मुझे स्वीकार करो. इसलिए शिव भुजंग स्तोत्रम काश्मीरी शैव जगद्धर भट्ट जी ने एक जगह लिखा यही भाव को. बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है जगद्धर भट्ट ने, इस ऐसे ऐसे भाव को व्यक्त किया. पशुम वेत्सि चिन्माम तमेवाधिरूढ़, पशुम वेत्सि चिन्माम तमेवाधिरूढ़ कलंकीति वा मूर्धनि धत्से तमेव द्विजिह्वा पुनः सोऽपि ते कंठभूषा त्वदंगीकृता सर्व सर्वेपि धन्या. भाव वही है, हे शिवा आप मुझे पशु मानते हो तो वाहन बनाकर मेरी सवारी करो. पशुम वेत्सि, आप मुझे पशु के रूप में जानते हो तो मुझे वाहन के रूप में प्रयोग करो. कलंकीति, यदि आप मुझे कलंकी मानते हो तो मूर्धनि ध्वस्व सिर में धारण करो. द्विजिह्वा, दो प्रकार की बात करने वाला द्विजिह्वा, सर्प का जिह्वा दो होते हैं, द्विजिह्वा माने सर्प. द्विजिह्वा स्नः पुनः सोऽपि ते कंठभूषा, तो यदि मुझे सर्प ही मानते हो, द्विजिह्वे मानते हो. एक महात्मा बता रहे थे ना, महाराज हम तो इंसान है, द्विजिह्वे कहां से है? बोले तुम्हारे दो जिह्वा है. मंदिर में खड़े होते हो तो भगवान को कहते हो तुम्हें माता चपिता तुम्हें वा. अब पत्नी जब नाराज होती है तो उसके सामने खड़े होकर कहते हो तुम्हें वा माता चपिता तुम्हें वा. दो जिह्वा हो गया कि नहीं बोलो. अरे भगवान को तुम्हें माता कहा तो पत्नी को क्यों कहते हो, और पत्नी को कहते हो तो भगवान को क्यों कहते हो? एक ही जीव ऐसे बात करो ना भाई, दो जिह्वा. महात्मा ऐसी व्याख्या कर रहे थे. तो भी तो महाराज कंठभूषा आपके गले के आभूषण तो बन सकता हूं. त्वदंगी कृता, अपने उन लोगों को अंगीकार करके स्वीकार करके वे सब धन्य हो गए. तो वे सब जब धन्य हो सकते हैं तो मुझे भी स्वीकार करो महाराज. हाँ, असुचिम यदि माम अनुमन्य से किमिदम मूर्धनि कपाल दामते. मुझे असुचि अपवित्र मानते हो तो फिर चंद्रमा को सिर में क्यों धारण किया है? क्या वो चंद्रमा मेरे से ज्यादा शुद्ध है और उसको धारण कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं धारण कर सकते? यही भक्ति का भाव है। भक्त भगवान के साथ इस प्रकार के विनोद करता है, भरोसे से भगवान के साथ संवाद करता है, जरूर मुझे भगवान स्वीकार करेंगे। अहम यादृशः, हे महाराज मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं तुम्हारा हूं, मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं, इतने आप ख्याल रखो, मैं तुम्हारा हूं। जो वस्तु अपनी होती है वो जैसा भी होता है ना उसको स्वीकार करना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं बोलो। हमारी समस्या बड़ी जटिल होती है, जब बेटे की शादी करनी होती है तो लड़की को खोजने चलते हैं और लड़कियों को खोजते हैं, उसका फोटो देखते हैं, उनके बात करते हैं, उसके बायोडाटा मंगाते हैं और हजार कमी कमजोरी को खोजते हुए उसका रिजेक्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं, वो काली है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, वो लंबी है, ठीक नहीं है, वो मोटी है, ठीक नहीं है, वो दुबली पतली है, ठीक नहीं है, हजार दोष देखकर हम उसका रिजेक्ट करते हैं। अब जब किसी एक को पसंद करके शादी कर लेते हैं, शादी कर लेने के बाद लंगड़ी हो जाती है तो क्या परित्याग करते हो? शादी के बाद उसका तिरस्कार करते हो? ये लंगड़ी हो गई अब तिरस्कार करे, परित्याग करते हो? बोलो, ये लंगड़ी हो गई अब, किसी कारण से अंधी हो गई तो तिरस्कार करोगे? बोलो ना। अब किसी कारण से थायराइड के चलते बड़ी भारी मोटी हो गई, अब तिरस्कार करोगे? होता है ना, थायराइड के कारण अचानक शरीर में चर्बी चढ़ने लग जाता है, बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, अब परित्याग करोगे उसका? जैसा भी हो, अपना होने के बाद तो जैसा भी हो स्वीकार करना पड़ता है और करते हैं, तिरस्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपना है, पति अपना जैसा भी हो स्वीकार करेंगे, बेटा अपना जैसा भी हो तिरस्कार नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं, मां अपनी जैसी भी हो स्वीकार करते हैं, बाप अपना जैसा भी हो स्वीकार करते हैं, अपना हो गया कि स्वीकार किया। और जब तक अपना नहीं होता है तभी तक हजार नखरे हैं, कोई न कोई बहाना खोजे वो परित्याग करे, बहाना खोजे और परित्याग करे। तो भक्त कहता है भगवान से कि महाराज मैं तुम्हारा हूं। शंकराचार्य जी का वो षटपदी याद कर लो, है सामुद्रोही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तो। हे नाथ, तत्व दृष्टि से, वेदांत दृष्टि से जब हम विचार करते हैं महावाक्यों को आधार बनाकर, तब तुम्हारे में और मेरे में रंच मात्र भी भेद सिद्ध नहीं होता, भेद का अपगम, तत्त्वमसि। जब महावाक्य के द्वारा, उपनिषद के महावाक्यों के द्वारा विचार करते हैं, आपके और मेरे बारे में हम विचार करते हैं, तो तुम्हारा मेरा कोई भेद भिन्न सिद्ध ही नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम हम सह, सत्य भी भेद अपगमा, फिर भी तब अहम, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। तब अहम न मामकी नस्तम, मैं तुम्हारा हूं लेकिन तुम मेरे नहीं हो। अर्थात मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, इसलिए मैं तुम्हारा हूं। लेकिन तुम्हारे होने में मेरे होने न होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं हूं तो भी तुम हो, और मैं न रहूं तो भी तुम, इसलिए तुम्हारे होने में मुझ पर निर्भर नहीं करता। मिट्टी को होने में घड़े पर निर्भर नहीं है, लेकिन घड़े को होने में मिट्टी पर निर्भर है। घड़ा ये कह रहा है, हे मिट्टी, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। क्यों? मेरे न होने पर भी तुम रहते हो। जब घड़ा नहीं बना था तो मिट्टी थी कि नहीं? घड़े के अस्तित्व की जरूरत नहीं है मिट्टी के अस्तित्व के लिए, लेकिन घड़े के अस्तित्व के लिए पहले मिट्टी का अस्तित्व होना जरूरी। इसी तरह परमात्मा के अस्तित्व के लिए जीवात्मा का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवात्मा के अस्तित्व के लिए परमात्मा के अस्तित्व के बिना जीवात्मा का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सामुद्रोही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र, जड़ता पशुता कलंकिता, कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले भवदावरणस्य नास्मि किं पात्रम्। इस श्लोक में दो भाव स्पष्ट दिखता है। एक तो भक्त ये पूरी तरह विश्वस्त है इस श्लोक के भाव से, भक्त पूरी तरह विश्वस्त है कि मैं भगवान का हूं, मैं जैसा भी हूं भगवान मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, इस पर विश्वस्त है वो भक्त। दूसरी बात, भगवान के साथ वह अधिकार पूर्वक जोर लगाकर ये कह रहा है, महाराज मुझे आप हर हालत में स्वीकार करना ही पड़ेगा, मेरे से गए गुजरों को स्वीकार किया है तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, बोलो हैं? मेरे से गए गुजरों को स्वीकार किया है, प्रमाण क्या है? मैंने तुमसे गए गुजरों को स्वीकार किया है, बोले ये प्रमाण है, नंदी मेरे से गया गुजरा है, मृगा मेरे से गया गुजरा है, वह पशु जाति के मैं इंसान जाति का हूं, वो चतुष्पाद है मैं द्विपाद हूं, लियो जी तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, करना ही पड़ेगा। पहले भगवान के साथ इस तरह तुम जब आग्रह करोगे तो भगवान को बाध्य होकर स्वीकार करने में, बात तो तू ठीक कह रहा है, चंद्रमा को स्वीकार कर रहे हो तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, सर्प को स्वीकार करते हो तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, तो ये दो चार उदाहरण देकर तुम आग्रह करोगे तो भगवान को झक मार कर स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? मसान घाट में भी जाकर तुम्हें स्वीकार करेंगे भाई, जहां भी स्वीकार करेंगे, तब तुम्हें भगवान शिव तुम्हारी जब चिता में तुम्हारे बेटे ले जाकर तुमको जलाएंगे, राख बना देंगे। तो भगवान कहेंगे इसने कहा था मुझे तिरस्कार नहीं करना, तो उसी राख को अपने शरीर में लपेटने शुरू करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? जब तुम ये कहोगे महाराज किसी हालत में भी मुझे मेरा परित्याग नहीं करना, तो अग्नि से जलने से राख बनने से बच गया जो खोपड़ी, इसने कहा था मेरा तिरस्कार नहीं करना, तो उसी को उठाकर गले में माला बनाकर पहन लेंगे। ये तो हो गया जड़ शरीर की बात। अब तुम कदाचित अपनी पूर्व वासना, अपनी पूर्व कामना, अपने कर्मों के चलते, तुम्हें नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे, मैं यदि भूत प्रेत बना मरने के बाद, है ना, भूत प्रेत में किससे बनता हूं? मेरी वासना से, मेरे कर्मों से, मेरे संस्कारों से, दूषित वासना, दूषित कर्म, दूषित व्यवहार से मैं भूत प्रेत बनूंगा तो भी भगवान मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। मुझे इतना विश्वास है भाई, मैं भूत भी बनूंगा तो परमात्मा स्वीकार करेंगे अपने गण के रूप में, अपने गण के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रेत भी बनूंगा सहचरा प्रमथगण भूतगण भूतगणादि सेवितम। आहा भक्तो, इंसान बनकर भगवान की सेवा करने का मौका नहीं भी मिला तो चिंता नहीं करना, भूत प्रेत बनोगे सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा, ये भगवान की कृपा है, हो तिरस्कार नहीं करेंगे। भगवान का स्मरण करो, भगवान का होकर जियो बस, तो जिस अवस्था में भी तुम रहोगे भगवान स्वीकार करेंगे, परित्याग नहीं करेंगे। अब जब भूत बनकर भगवान के शरीर में तेल लगाने को मिलेगा, क्या मजा आएगा महाराज, है? जब भूत प्रेत बनकर भगवान के चरण को धोने को मौका मिलेगा, हाहा क्या कहना, केवट को शूद्र जाति के होकर नदी के किनारे में है, केवट बनकर शूद्र जाति का होकर रहने से क्या फर्क पड़ा, भगवान राम का साक्षात चरण को धोने को मिल गया है, और हम ब्राह्मण होकर कर क्या लिया, बोलो कर क्या लिया? तो भगवान का भक्त होना जरूरी है, भगवान के आश्रय में रहना जरूरी है, भगवान परित्याग नहीं करेंगे, ये विश्वास के साथ शंकराचार्य जी ये श्लोक कह रहे हैं। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। जड़ता पशुता कलंकिता अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया वरिवसि तुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे जगद अधिको हृदि राजशेखरोस्ति। अरहसि रहसि, चाहे एकांत में हो चाहे भीड़ में हो, अरहसि माने भीड़, रहस्य माने एकांत। भगवान का भजन, भगवान का ध्यान चाहे एकांत में करो चाहे भीड़ में करो, अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया। स्वतंत्र बुद्धिया माने वृत्ति में, तुम्हारी बुद्धि वृत्ति में विजातीय वस्तु का प्रवेश न हो, स्वतंत्र बुद्धि।

0: प्रसन्न मूर्ति। वरिवसिता ध्यान सेवा पूजा, ये देख लो वरिवसिता वरिवस्या, वरिवस्या माने पूजा आराधना स्वतंत्र। सुलभ प्रसन्न मूर्ति, तो स्वतंत्र बुद्धि होगी तो भगवान की जो प्रसन्न मूर्ति है वह सर्वत्र सुलभ होगी, चाहे भीड़ हो चाहे एकांत हो। बुद्धि जब विषय से विद्ध होती है तो एकांत में भी भगवान की प्रसन्न मूर्ति सुलभ नहीं होगा, वह दुर्लभ होगा। इसलिए बुद्धि विषय विद्ध न होकर शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम क्रियम, यही तो है सुलभ। अगणित फलदायक प्रभुर में, परमात्मा मेरे लिए अगणित फलदायक, कल्प वृक्ष हो जाएंगे। परमात्मा तो मेरे लिए कल्प वृक्ष है, अगणित मैं जो चाहूंगा जितना चाहूंगा, वो फल देने की क्षमता वाले हैं, सामर्थ्यता वाले हैं। मैं प्रभु, मेरे प्रभु मुझे अगणित फलदायक। जगत अधिको हृदि, जगत से अधिक है वो, जगत तो बहुत कम है, बहुत छोटा है, बहुत क्षुद्र है, और मेरे प्रभु मेरे परमात्मा जगत आदि को, और ऐसे परमात्मा हृदि मेरे ही हृदय में हमेशा सुलभ हो जाएंगे। राजशेखर अस्ति, राजाओं का भी सिर मोर भगवान शिव मेरे लिए सर्वत्र सुलभ होंगे। यह ध्यान की भक्ति के साथ साथ ध्यान की प्रक्रिया है, उसी ध्यान को अब आगे 71वें श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी और स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: देखिए पतिव्रता स्त्री में इतना सामर्थ है कि सूर्य को भी स्तंभित कर सकती है, रोक सकती है। यह पातित व्रत का प्रभाव है। तो यदि हम जहां भी चाहे वहां पर चैतन्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर तीव्र भावना चाहिए। तीव्र भावना हो तो आप माता पिता के पिंड से, पति के पिंड से, या जो है पाषाण खंड से भी भगवान को अभिव्यक्त कर लेते हैं। प्रहलाद जी की ऐसी तीव्र भावना थी कि तीव्र भावना के होने के कारण उसी परमात्मा को नरसिंहाकार रूप से पाषाण से अभिव्यक्त होना पड़ा। इसलिए यहां पर कह दिया

0: कि जो सगुण साकार है वो सभी के द्वारा स्तुत्य है, बंद है, और उसमें सबका मन लग जाता है, बुद्धि लग जाती है। निर्गुण निराकार में भले ही सबकी बुद्धि न लगे, परंतु सगुण साकार में सबकी बुद्धि लग ही जाती है। ये संसार जो आप देख रहे हैं सब सगुण साकार परमात्मा का ही स्वरूप है। विश्वास न होता हो तो आप अजमा सकते हैं। यदि जिसको आप बहुत प्रिय मानते हैं उस प्रिय से आत्म ज्योति निकल जाए तो वह प्रिय प्रिय नहीं होता है, प्रिया प्रिया नहीं होती है। आप इसको कर दे कि मिट्टी का ढेर हो गया, संसार में ले जाओ। प्रत्यक्ष सिद्ध है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा संसार ब्रह्म है, ब्रह्म का ही ये समझिए कि विस्तार है। जब ब्रह्म का विस्तार है जहां पर तो ज्योति जैसी है उसको वैसा समझना यथार्थ ज्ञान कहलाता है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है और मिथ्या ज्ञान के नाश से मुक्त होता है। यदि हम सर्वत्र भगवत दृष्टि करें तो निश्चित ही भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है, और जब तक वह तत्व है तभी तक संसार का सारा व्यवहार चल रहा है। चाहे हम किसी को माताजी कहें, पिताजी कहें, या पुत्र कहें, प्यारे कहें, कुछ भी शब्द का प्रयोग करें, उसी चैतन्य के होने से सारा प्रयोग हो रहा है। यदि आप किसी को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन के अंदर वही चैतन्य है, वही चैतन्य आपको दुश्मन रूप से दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार ये कहीं धरती, आकाश, पाताल, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, यदि आपने खेत में नींबू का बीज लगाया तो खट्टा फल होगा, आम का बीज लगाएंगे तो मीठा पौधा होगा। अंतर खेत में या सूर्य के रोशनी में नहीं, बीज में अंतर है। जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा, वैसा ही फल होगा। इसी प्रकार से सबके अंदर एक ही चैतन्य होने पर भी सबके संस्कार, वासना, प्रारब्ध कर्म के अलग अलग होने से अलग अलग प्रतीतियां होती हैं। ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये औपाधिक दोष है। उपाधि को हटा दे सब तो चैतन्यमय ही है। परंतु यहाँ पर पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं, जो दूसरे श्लोक का प्रतिपाद विषय है, कि निर्गुण ब्रह्म में आसानी से किसी का मन बाणी नहीं लगता है। इसको गीता ही बतलाया है, अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्नम मनन्ति माम अबुद्धय। और दूसरी जगह कहा कि अव्यक्त तत्व को पाना देहवद्भिर देहधारियों के द्वारा बड़ा कठिन है। भले ही निर्गुण निराकार ब्रह्म साक्षात्कार अनुभूति में न आए, फिर भी उसकी महिमा इसी महिमन में ज्यादा गाई है। जिस प्रकार विद्यालय में, हाई स्कूल तक जो विद्यालय होते हैं, वहां पर जो टीचर विद्यार्थियों को खेल कूद सिखाता है, क्रिकेट है, टेनिस, बैडमिंटन है, उसको विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। परंतु जो अध्यापक अनुशासित करता हो, गणित पढ़ाता हो या विज्ञान पढ़ाता हो, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि जरा कठिन विषय है, उसमें मन बुद्धि को जबरन लगाना पड़ता है, या जो है अध्यापक के भय से विज्ञान या गणित की तैयारी करनी पड़ती है। परंतु खेल कुछ स्वाभाविक है, उसके सारे तारीफ करते हैं। ये तो हो गए विद्यार्थी की दृष्टि, परंतु विद्यालय के दृष्टि से उसके नियमानुसार जो विद्यालय का खेल कूद का टीचर है उसको कमजोर मानते हैं, उसका वेतन भी सबसे कम होता है, परंतु विद्यार्थी की दृष्टि से वही श्रेष्ठ है, और विद्यालय के दृष्टि से विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान ज्ञानी के दृष्टि से निर्गुण निराकार ब्रह्म को यहाँ पर श्रेष्ठता प्रदान किया है, और अज्ञानियों के दृष्टि से बतलाया कि भाई तुम निर्गुण निराकार को समझ नहीं सकते, इसलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म की भावना करके कहीं से भी चैतन्य को अभिव्यक्त कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर कई दृष्टांत को देकर समझाया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा श्लोक उच्चारण कर लें। मधुस्फीता वाच परमम अमृतम निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुर गुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतं वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामेत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तीसरे श्लोक में बतला रहे हैं कि ये जो मैं स्तुति कर रहा हूं, स्तुति क्यों कर रहा हूं? जब आप मन वाणी के विषय नहीं है निर्गुण निराकार रूप से और सगुण साकार रूप से सब कुछ आप ही हैं, तो स्तुति क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए? यहां बतला रहे हैं कि मैं आपके गुण कथन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। मधुस्फीता वाच, मधुस्फीता वाच का अर्थ, वाच बोलते हैं वेद को, आपने ही मधु से सने हुए वेद वाणी को जो सर्वोत्कृष्ट है उसको आपने उत्पन्न किया, जिसकी अध्येता अमृत तत्व को उपलब्ध होते हैं। इसलिए हे ब्रह्मन, आपको सुर गुरु बोलते हैं बृहस्पति को, देवताओं के गुरु बृहस्पति की वाणी भी, स्तुति भी आपको आश्चर्यचकित नहीं कर सकती है, फिर मैं मुझ जैसे क्षुद्र व्यक्ति की स्तुति आपको कैसे आश्चर्य में डाल सकती है? मम त्वेतां वाणी, ये जो हमारी वाणी है, भवतः आपके गुण कथन पुण्येन पुनामी, गुणों का कथन करके पवित्र कर रहा हूँ अपने बुद्धि को, अपनी वाणी को गुणगान के द्वारा मैं केवल पवित्र कर रहा हूँ। हे पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता, और हमारी बुद्धि आप में लगी रहे इस प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार से तीसरे में सार्थकता बदलाया कि हम क्यों जो है भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य का अंधकार दूर नहीं होता, प्रत्युत हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारे शुद्ध भाव उदित होते हैं। इसी प्रकार से मैं भी स्तुति के द्वारा अपने वाणी को, मन को, बुद्धि को पवित्र कर रहा हूँ, क्योंकि शुद्ध मन के द्वारा ही आपका दर्शन होता है। अब चौथा श्लोक देख ले। तवैश्वर्यं यत्तद् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत् त्रयीवस्तु व्यस्तम् तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीया मरमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधिय। तवैश्वर्यम्, तव हे परमेश्वर, आपके ऐश्वर्य कैसे हैं? तो बतला रहे हैं जिस ऐश्वर्य से जगत का उदय, उदय बोलते उत्पत्ति, और रक्षा पालन और प्रलय होता है। जिस प्रकार से एक ही परमाणु से, न्यूक्लियर जो आजकल चल रहा है ना, बहुत बड़ा विचार है, एक ही परमाणु से हमारे आजीविका के संसाधन विद्युत ऊर्जा भी तैयार होती है, और उसी के द्वारा हमारे जीवन के, समाज के, देश को विनष्ट करने वाले एटम बम, परमाणु बम भी तैयार होते हैं। दोनों है, आप उससे आजीविका के संसाधन भी तैयार कर सकते हैं और साथ में रक्षा की संसाधन ही बना सकते हैं और विनाशक हथियार भी, एक ही ऊर्जा है। इसी प्रकार से आपके ऐश्वर्य से संसार की उत्पत्ति होती है, रक्षा होता है, और आपके ही कोप से संसार का प्रलय होता है। एक बार महर्षि पिपलाद की बचपन की घटना है, जब पिपलाद 12 वर्ष के थे तो उनके मामा ने कहा कि तू बार बार अपने नाना को पिताजी क्यों कहता है, क्योंकि पिपलाद के पिताजी का शरीर बचपन में छूट गया था। शरीर छूटने के बाद पिपलाद अपनी माँ के साथ मामा के घर रहते थे, तो छोटी अवस्था थी और हमेशा जो है अपने नाना को पिताजी पिताजी कह करके पुकारते थे। जब मामा ने इस प्रकार से कहा कि तू अपने नाना को पिताजी पिताजी क्यों कहता है, तो अपनी माँ से पूछे कि माँ तू सच बता कि हमारे मामा लोग हमें क्यों फटकारते हैं, बार बार क्यों समझाते हैं कि तू इनको नाना जी कह, तेरे पिताजी नहीं है, तो आखिर हमारे पिताजी कौन है। माँ ने कहा कि जब तू 5 वर्ष का था तभी तेरे पिता देवताओं के हित के लिए अपने शरीर को त्याग कर दिए। दधीची ऋषि अपने शरीर को त्याग कर दिए, उसके द्वारा वज्र बना। अब इस बात को सुनने के बाद पिपलाद को बहुत क्रोध हुआ, बोले देवता इतने स्वार्थी कि अपने स्वार्थ के लिए हमारे पिता के शरीर को याचना में मांग लिया और उससे जो है अस्त्रों शस्त्रों को तैयार किया, मैं तपस्या करके देवताओं को नष्ट कर दूंगा। माँ ने बहुत समझाया ये काम तेरा ठीक नहीं, वह छोटी अवस्था 12 वर्ष की, माने नहीं। माँ से भगवान शंकर की उपासना की पद्धति सीखा, सीखने के बाद सीधा कैलाश पर्वत गए, वहां जाकर घनघोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद कहा तू वरदान मांग, यही वरदान मांगा कि आप जिस शक्ति से संसार को नष्ट करते हैं, महाप्रलय मचाते हैं, वही शक्ति हमें प्रदान करो। भगवान शंकर ने कहा तू शक्ति लेके क्या करेगा। पिपलाद ने कहा कि मैं देवताओं को नष्ट करना चाहता हूं। भगवान शंकर पूछे देवताओं को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, बोले कि देवताओं ने हमारे पिता को अपने स्वार्थ के लिए जो है इनका शरीर जो है नष्ट करके अस्त्र शस्त्र का तैयार किया, इसलिए मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं। महादेव ने बहुत समझाया कि तेरी यातना ठीक नहीं है, इससे तेरा ही नाश होगा, परंतु माने नहीं। तो महादेव ने कहा ठीक, ऐसा करो कि तुम आंख बंद कर बैठ जाओ, मैं तुझे पहले थोड़ी शक्ति देता हूं, इसका प्रयोग करके देखना। भगवान शंकर के सामने पिपलाद बैठ गए आंख बंद करके। भगवान शंकर ने कहा तू तैयार हो जा, मैं तुझे अपनी संहारक शक्ति देता हूं जिससे मैं दुनिया का संहार करता हूं। बस जैसे पिपलाद आंख बंद किए, जब देवताओं का नाश करना है, सबसे पहले सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर जो इंद्र का नष्ट करना है, बस नष्ट करने की भावना आई कि उनकी आंखें जलने लगी, कान जो फटने लगे, पूरा शरीर टूटने लगा, जोर से चिल्लाए बचाओ बचाओ। महादेव ने कहा क्या हुआ, तू तो संहारक शक्ति ले रहा था, इतने से घबरा गया। पिपलाद ने पूछा कि मैं तो आपसे संहारक शक्ति मांग रहा था, जैसे आप संहार करते हैं, आप तो उल्टा हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा यह जो तेरी आंख है, इस तेरी आंख के समष्टि देवता भगवान सूर्य हैं। ये जो तेरा कान है, इस कान की समष्टि दिक् देवता है। तेरे हाथ के समष्टि देवता इंद्र हैं। तो जब तू उनको नष्ट करेगा तो तू कहां बचेगा, उसी समष्टि का अंश तेरी आंख नाक कान त्वचा हस्त पाद पायु उपस्थ है। पिपलाद ने पूछा तो फिर आप कैसे संसार का नाश करते हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं दृष्टि भाव में नहीं रहता हूं, जैसे मैं समष्टि भाव में हूं वैसे तू भी समष्टि भाव में हो जाएगा तो सब कुछ कर सकता है। पहले तो व्यष्टि भाव को त्याग, व्यष्टि मन लगी यह मैं हूं, इसका नाम व्यष्टि भाव है। समष्टि का अर्थ सर्वात्म भाव, तो पहले तो व्यष्टि भाव को छोड़ कि मैं यह पिपलाद ऋषि हूं, इस भाव को छोड़ने के बाद समष्टि भाव को प्राप्त करेगा तब जाकर यह शक्ति तू पचा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग व्यष्टि में जीना चाहते हैं और व्यष्टि के द्वारा उस सर्वात्म भाव की अनुभूति असंभव है। व्यष्टि का तात्पर्य है कि सीमित अहंता, जो अपने आप को हम लोग मैं मानकर चल रहे हैं, ये जब तक हमारे अंदर मैं मन ले कि मैं जो है अमुक भाई हूँ, अमुक लाल हूँ, ये जो नाम रूप का व्यष्टि भावना है, तब तक समष्टि का भूमा सर्वात्म सुख की अनुभूति असंभव है। हालांकि सुसुप्ति में कुछ समय के लिए व्यष्टि भाव नष्ट हो जाता है, विलय हो जाता है, तो विलय होने के बाद उस समय समष्टि सुख सर्वात्म सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य बतला रहे हैं, उसी भगवान के ऐश्वर्य शक्ति को लेकर संसार का सृजन पालन संहार होता है। त्रयी वस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नाशु तनुषु, त्रयी बोलते हैं वेद को, हालांकि वेद चार हैं, पर वेद के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये वेद तीन ही था, बाद में अथर्ववेद हुआ, पर बिल्कुल ये जो है ना नासमझी व्याख्यान है, क्योंकि त्रयी शब्द का तात्पर्य त्रय प्रतिपादकत्वात् त्रयी पदेन वेद उच्यते। इस प्रकार से वेद की व्याख्याता सायण ने व्याख्यान किया है। त्रय मल्लय की कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इन तीनों का वेद व्याख्याता है, इसलिए वेद को त्रयी शब्द से कहा जाता है। तो त्रयी मल्लय की वेद में आग का स्वरूप व्यस्तम का अर्थ है अनेक रूप से प्रतिपादित है। अनेक रूप से तात्पर्य है कि आप ही इंद्र बनकर शासन करते हैं, सूर्य बनकर के प्रकाश करते हैं, चंद्रमा बनकर औषधियों का पोषण करते हैं, इस प्रकार से आप का स्वरूप वेद में तरह तरह से प्रतिपादित है। तीसरी सुगुण भिन्नाश तनुषु, और तीनों गुणों के द्वारा अनेक स्वरूप आपके हैं। सत्व प्रधान देवता है, रजस प्रधान मनुष्य है, तमस प्रधान दैत्य हैं, तो इन सब में आपका ही स्वरूप अभिव्यक्त होता है। अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयाम रमणीम विहंतुम व्याक्रोशीम विदधत इहैके जडधिय। अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयाम अभव्यानाम अरमणीम विहंतुम व्याक्रोशीम जडधिय इहैके विदधत, ऐसा में करना कि आपका जो बहुत सुंदर रमणीय कमनीय स्वरूप है, उस कमनीय रमणीय स्वरूप में भी कुछ भाग्यहीन, अभव्य बोलते भाग्यहीन, भाग्यहीन मनुष्य विहंतुम व्याक्रोशीम, जो जड बुद्धि वाले हैं, उसका खंडन करना चाहते हैं, निराकरण करते हैं। इसलिए निराकरण करते हैं कि जो परमात्मा का दो स्वरूप निर्गुण निराकार अपरिच्छिन्न है, और दूसरा है परिच्छिन्न सगुण साकार। यदि हम किसी के सामने अपरिच्छिन्न निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करें, तो कहता है कि हमें समझ में नहीं आता है, अनुभूति के पथ में नहीं आता है। और यदि आप सगुण साकार का वर्णन करो तो बोलता है कि इसमें तो सारे दोषी दोष है, हम में इनमें क्या अंतर। लोग कहते हैं ना सीधा, सबके अंदर दोष दिखाई पड़ेगा। तो सगुण साकार के अंदर तो आपको दोष दिखाई पड़ेगा कि जैसे मैं वैसे ये भगवान है, और निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता है, तो आखिर में किस प्रकार उपदेश करें। तो जो जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जड़ बुद्धि वाले, उस कमनीय रमणीय भगवान भी दोष दर्शन किया करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो राम कृष्ण को अवतारी न मानकर सिर्फ महापुरुष मानते हैं, ऐसी मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, कहते हैं कि जैसे हम वैसे राम और कृष्ण हुए, और उन्होंने भी अपना कार्य किया, हमने भी किया, इतना अंतर कि हमसे उनमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य और शक्ति थी। विचार कीजिए, अपरिच्छिन्न रूप को तो समझ नहीं सके, और वही अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न रूप से बनकर समझाने आया, उसमें भी गुण दोष बुद्धि हो जाने कारण से सन्मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए कहा कि हे बरद, बरद मतलब कि सबको आप वरदान देने वाले हैं। बरद केवल यहाँ पर भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया। बरम ददाति बरद, बरद बोलते श्रेष्ठ, जो हमेशा श्रेष्ठ अच्छी चीज को प्रदान करे उसका नाम है बरद। आप भगवान शंकर की थोड़ी उपासना करो, कुछ भी मांग लो, भोले बाबा कोई विचार भी नहीं करते कि मैं जो है किसको क्या दे रहा हूं। भस्मासुर, भगवान शंकर की बहुत उपासना की। उपासना के बाद जब भगवान शंकर ने कहा तू वरदान मांग, तो क्या मांगा, जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वह जलकर राख हो जाए। भगवान कविय तथास्तु। वरदान पाने के बाद कुछ क्षण तक विचारता रहा कि भगवान शंकर संसार में पूज्य क्यों है, क्योंकि इनके पास पार्वती जी है। यदि मैं इनको भस्म करके पार्वती को अपना लूं तो मैं भी जगत बंदी हो जाऊंगा, जगत में पूजित हो जाऊंगा। भगवान शंकर की तरफ दौड़ा कि भोले बाबा ऐसे है ना कि विचार नहीं करते किसको क्या देना, इसलिए बरद कह दिया। रमणीयम अरमणीम बुद्धि विदता जडधिय। एक बुढ़िया माता थी, उसने भगवान शंकर की उपासना की। उपासना करने के बाद उसने वरदान में भगवान शंकर से कुछ चीज मांगी। भगवान शंकर ने कहा देख तेरी उपासना थोड़ी है, तू एक वाक्य में एक ही वरदान केवल मांग सकती है। बुढ़िया माँ ने कहा यार समय दीजिए विचारने का, विचार कर बताऊंगी। भगवान शंकर एक दिन का पूरा समय दे दिए। एक दिन तक विचारती रहे कि एक ही वाक्य में क्या वरदान मांगे। सबसे परामर्श किया, दूसरे दिन गई। भगवान शंकर ने कहा कि तू विचार कर आ गई, तुझे क्या मांगना है बता। बुढ़िया माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक ही वरदान मांगती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरी में दूध भात खाता हुआ देखूं। सब मांग लिया। पोता बिना पुत्र के पोता नहीं होगा, मतलब कि वो दूसरी पीढ़ी मांग ली। और बिना धन के सोना का कटोरी कहाँ से आएगा, अब बिना गाय के दूध भात नहीं मिलेगा। देखिए गोधन मांग लिया, सुवर्ण द्रव्य सुवर्ण धन मांग लिया, आंख भी मांग लिया और पुत्र पौत्री मांग लिया। ये समझो वाक चातुरी है। परंतु भगवान शंकर भोले हैं, अगर धानी कुछ भी सबको दे देते हैं, स्वयं तो शमशान में रखते हैं, पास में कुछ नहीं। इसलिए नहीं रखते हैं पास में क्योंकि अर्थो ही अनर्थाय भवती, शास्त्र का वचन है। ये जितना भी अर्थ है ना, इस अर्थ की परिणति अंत में अनर्थाय। इसलिए भगवान शंकर हमेशा शमशान में निर्विषयक हैं, परंतु प्रार्थना करने वाले को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान शंकर अवरदानी हैं। फिर भी ऐसे दिव्य कमनीय स्वरूप का भी ये जड़ बुद्धि वाले उसका निराकरण खंडन तरह तरह से किया करते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्रुति कहती है कि उनके लिए हमें खेद है, क्योंकि श्रुति माता के समान है। जैसे माता चाहे कैसा ही पुत्र हो, माता का हृदय बहुत कोमल होता है, अपने पुत्र का कभी माँ अनिष्ट नहीं चाहती है। पुत्र हमेशा माँ को डांटता है, फटकारता है, कड़वाल बोलता है, फिर भी माँ सह लेती है। माँ को ही पता है कि पुत्र को इतना बड़ा बनाने में कितनी तकलीफ कितनी तपस्या करनी पड़ती है। बेटे तो तुरंत कह देते माँ से तूने तो अपना कर्तव्य का पालन किया। पिता को भी बोल देते हैं कि पिता आप तो केवल 500 महीना कमाते थे, देखो मैं आज 1,00,000 महीना कमा रहा हूं। आजकल के बेटे ऐसा आरोप करते हैं ना, पर वास्तव में उस पिता ने 500 रुपया महीना कमाकर कितनी तपस्या करके तुम्हें पढ़ाया, पढ़ा करके आज तुम्हें इतना योग्य बना कि आप 1,00,000 महीना कमा रहे, इस बात को तो बिल्कुल सोचता ही नहीं। इतनी जड़ बुद्धि हो गई कि माता पिता के उस कृतज्ञता को बिल्कुल भूल जाता है, उल्टे उलाहना देता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। ऐसे ही ये जो संसार है, भगवान संकट उत्पन्न हुए वही पालन किए, रक्षा कर रहे हैं, पर जड़ बुद्धि वाले कहते कि बस मंदिर में पाषाण की तरह बैठे हैं, ये तो जड़ है, इसकी पूजा करने से क्या होता है। इसलिए उनको यहाँ पर जड़ दिया उस दंताचार्य जी ने कहा है। अब आगे जो है कि जगत के विषय में दार्शनिक चिंतन आएगा, कल से ये ऐतिहासिक विषय कम है, अधिक दार्शनिक होगा, इसलिए कल से जरा सावधान से सुनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 12.

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Samhita Vatsal Mayi Matao Sneyavai Vahino Atma Sarup Bandhu. Taittiriya Upanishad ko lekar ke prasang chal raha hai, jiske antargat ye sanket kiya rishi ne ki jin purv acharyon ne, purv rishiyon ne उस वेदांत के सार को, वेदांत के रहस्य को पद वाक्य प्रमाणों के द्वारा हमको बतलाया या हमसे कहा, ऐसे उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उनको नमस्कार करते हैं। ये संकेत किया, आज आप लोग नव वर्ष का प्रारंभ मानते हो। नव वर्ष क्या है तो आप जानते हो, नव शब्द संख्या का वाचक लें तो नौ हो जाएगा, और नूतनता का वाचक जब लेते हैं तो नयापन। और वर्ष शब्द का अर्थ क्या है तो पुराणों में आप देखते हो भारत वर्ष, और वहीं कहा भारत खंड। वर्ष शब्द का अर्थ होता है खंड। वर्ष शब्द का अर्थ क्या है? खंड। तो अब नव माने नया, और उस वर्ष शब्द का अर्थ ले लें खंड, तो नया खंड। खंड माने क्या है? दूसरी तरफ आपको क्या बोलते हो? अखंड। क्या बोलते हो? अखंड माने जिसमें कोई विभाग नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई खंड नहीं, उसे क्या कहते हो? अखंड। जो सदा एक रस रहने वाला है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, उसे आप कहते हो अखंड। और जो परिवर्तनीय है, परिवर्धनीय है, संवर्धनीय है, उसे क्या कहते हो? खंड कहते हो। तो अब जो है नया खंड, नया वर्ष, और वो नया खंड परवर्धित हो, संवर्धित हो, है? इसके लिए आप लोग क्या करते हो? नव वर्ष को मनाते हो। तो अब जो है नव वर्ष का हमारा प्रारंभ कैसा हो? तो कहने लगे जिसमें नवता हो, नवीनता हो, नूतनता हो। और नवीनता क्या है? कहां रहती है नवीनता? ये नूतनता कहां रहती? तो नूतनता के लिए यदि शास्त्र के अनुसार विचार करें तो शास्त्र कहता है तदेव रूपम रमणीयताया। कहने लगे कौन सा रूप या कौन सा पदार्थ रमणीय है जिसमें रमणीयता हो? तो कैसे? तो और संकेत उसमें जोड़ा, क्षणं क्षणं यद् नवताम् उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण प्रतिक्षण जिसमें एक नूतनता की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? का उसी को रमणीय कहते हैं, नव कहते हैं, नूतन कहते हैं और सुंदर कहते हैं। हम बोलते तो हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब जो है ये नव वर्ष, यह रमणीयता हमें प्राप्त हो और प्रतिक्षण प्राप्त हो। क्या होना चाहिए? प्रतिक्षण जहां पर हमें नवीनता प्राप्त हो, रमणीयता प्राप्त हो, तो उसे कहते हैं क्या? नवो। रमणीयता का मतलब क्या? रमण करने योग्य, जहां पर प्रतिक्षण हमें हमारा जहां पर नवीन नवीन रमण हो, नवीन नवीन रति उसमें हो, उसे कहते हैं नवो। ये साहित्यकारों ने इस लक्षण किया। तो अब नव वर्ष हमारा रमणीय कैसे हो, नूतन कैसे हो, संवर्धित परवर्धित कैसे हो, तो इस पर जब विचार करोगे तो ये कैसे होगा। तो है तो वर्ष, हमने उसे खंड कर लिया, और खंड किसका है, तो खंड हमने किया है काल का। किसका खंड किया है, काल का, जो हमारा यहां अभिप्रेत काल को हमने खंड करके देखा है। रात कह दी, दिन कह दिया, मास कह दिया, और मास के समुदाय को हमने वर्ष कह दिया, और वर्ष के भी समुदाय को फिर संवत्सर आदि कह देते। इस प्रकार से क्रम से आप चलते हो तो इनमें तो सब में जितने भी आप खंड हो तो खंड परिवर्तित भी होते हैं, संवर्धित भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थल है जहां पर इसका खंड किया जा, तो वो कौन है, तो जिसको सामान्य शब्द में काल कह देते हो। इसलिए नैयायिकों ने लक्षण किया कि जितना भी ये खंड सह संसार है, जगत है, उस जगत का आधार क्या है, उस जगत का आश्रय क्या है। तो क्या संकेत किया, जन्या नाम जनको काला, जितने भी पदार्थ जन्य हैं, उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का आधार क्या है, आश्रय क्या है, तो कहने लगे काल। हम भूतों की दृष्टि से विचार करते हैं तो पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश। लेकिन यहां कह रहे नहीं, आकाश से भी सूक्ष्म है, कौन है, काल। काल जो है वो क्या है, आकाश से भी सूक्ष्म है। क्यों, क्योंकि आकाश के लिए तो पंचभूत में उसकी गणना करते हुए संकेत किया कि आकाश भी उत्पन्न हुआ। आप श्रुति में सुनते हो, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः। और नैयायिकों ने लक्षण कर दिया कि जन्या नाम जनको काला, काला जगदाधारः, काल जो है सारे जगत का आधार है, आश्रय है, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो किसी न किसी काल में ही तो हुआ। आकाश हुआ उस समय कोई काल था कि नहीं, तो काल जो है वो क्या है, आकाश से भी सूक्ष्म। अब उस काल को जो सबका आश्रय है, जितना भी जगत है उस सबका आश्रय, तो सारा जगत कहां होने वाला है, तो सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय कहां हो रहा है, काल के आश्रय में हो रहा है। लय भी काल में, स्थिति भी काल में, और उसका उत्पन्न होना भी काल। अब जिस समय स्थिति नहीं है, उत्पत्ति नहीं है और लय नहीं है, उस समय काल है कि नहीं, काल तो है, काल का अभाव नहीं, उसमें सब काल है। तो हमारी जागृत अवस्था भी कब है, तो किसी समय में ही तो है। एक काल विशेष की हमने परिगणना कर दी और उसमें व्यवहार विशेष की परिगणना कर दी, उसका नाम क्या रखा, जागृत अवस्था। और जहां पर उस जागृत का व्यवहार नहीं हो रहा है तो उसका अभाव भी है, तो वहां हमने क्या कह दिया, स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था भी किसी काल विशेष में, और जहां पर हमने जागृत स्वप्न दोनों का लय मान लिया, जिसे हमने सुसुप्ति कह दिया, तो वो भी सुसुप्ति काल है, वो भी एक अवस्था, इसलिए कहलाई। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि भी जिसके अंतर्गत विद्यमान है, उत्पत्ति स्थिति लय भी जिसके अंदर विद्यमान, वो कौन है? कहा काल। काल ही सबका आश्रय है, लेकिन हम उस काल को सर्वांगीण रूप से जानते नहीं। कैसे जानते हैं? हम खंड से जानते हैं, रात के रूप में, दिन के रूप में, उत्पत्ति का काल है, स्थिति का काल, और जो है लय का काल। स्थिति का काल, हम इतने वर्ष के हो गए, ये सब बोलते हो। फिर नहीं तो उसको जो है हमने भूतकाल में कर दिया, माने उसके में जो है वो भूत हो गया। भूत हो गया का मतलब अब जिसकी प्रतीति नहीं रह गई, जिसकी सत्ता नहीं रहेगी, ये सब बोलते हो। तो अब यहां पर ये विचार करना है कि सबका आश्रय जो काल, और उस काल को ही हम नवीन रूप देना चाहते हैं, उसके नए रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन काल के नए रूप को तो देखना चाहते हैं, लेकिन उसके एक अंश को लेकर, उसका विभाग करके, उसका खंड करके, तब तो नव वर्ष कहोगे, तो वर्ष शब्द का अर्थ खंड है। तो अब जो है यहां विचार करो कि इसमें जो खंड है, इस खंड में भी वह नूतनता आ जाए, वह नवीनता आ जाए। नवीनता आ जाए तो नवीनता का अर्थ कर दिया कि जो सदा रमणीय रहे, और जो सदा रमणीय होगा वो सुखद होगा कि दुखद होगा? सुखद होगा, अर्थात जो सदा हमारे को सुख का संवर्धन करता रहे, जिसमें हमारे में कभी भी जो है दुख ना आए, यही लक्ष्य है। तो ऐसा नव वर्ष हो, अब वो नव वर्ष कब नव होगा, कब नया होगा? केवल जो है उसकी समाप्ति और उत्पत्ति मान लेने से उसमें नवीनता नहीं आएगी, केवल उसके परिसमापन और शुरुआत को लेकर के इतना ही हम मान के चलेंगे तो उसमें नवीनता या रमणीयता नहीं है। वो सदा रमणीय वो काल हमारा बना रहे, उस काल में कभी भी जो है दुख की स्थिति न आवे, सुखद वह काल बना रहे। तो जो भी हमारा खंड है, जो भी हमारा काल है, वो सुखद रहे। तो उसे सुखद बनाने के लिए क्या उपाय, और उसी के उपाय करने के लिए हम सब लोग हैं, शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं, शुभकामना करते हैं कि हमारा जो काल है वो कैसा हो, सुखद हो, सुख देने वाला हो। तो ये सुख देने वाला कब होगा, विचार ये करना है। ये हमारे लिए काल जो है सुखद हो, हमारे जीवन में दुख न आए, अर्थात हमारे वर्ष में दुख न आए, हमारा वर्ष जो है साधनों से संपन्न रहे, और साधनों के द्वारा संपन्नता को लेकर के हम सुख की शांति की अनुभूति करते हैं। ये तात्पर्य, वो कब होगा तब विचार करना होगा। इसके लिए खंड में भी हमें उस अखंड का विचार करना होगा। जब तक हम अखंड के विचार को नहीं करेंगे, तब तक हम खंड को सुखद बना सकते नहीं, नूतन बना सकते नहीं। और अखंड का यदि विचार कर लिया जाए, अखंड को पहचान लिया जाए, तो हमारा खंड भी क्या हो जाएगा? कहा खंड भी हमारा जो है आनंद देने वाला हो जाएगा, सुख देने वाला हो जाएगा। अब आप देखो, हमने एक खंड अपने जीवन का क्या किया, जागृत अवस्था, एक खंड किया स्वप्न अवस्था, और एक खंड किया सुसुप्ति अवस्था। ये क्या है? ये हमारे जीवन के खंड हैं। जागृत अवस्था एक खंड, विभाग कर दिया, विभाजन कर दिया, एक तो जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है, तीसरी सुसुप्ति। सुसुप्ति जागृत नहीं है, जागृत सुसुप्ति नहीं, दोनों को अलग कर दिया। अब जो है स्वप्न इसी प्रकार से। तो अब हम चाहते ये है कि जागृत भी सुखरूप हो, स्वप्न भी सुखरूप हो और सुसुप्ति भी सुखरूप। और यदि सुखरूप हो गई तब तो हमारी नव वर्ष जो है सुखद हो गई। अब कैसे होगी, तो क्या विचार करना होगा, इसके लिए विचार ये करना होगा। और श्रुतियों में इसके विचार आए, याज्ञवल्क जनक आदि का प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा ग्रहणीय है, वहां पर भी ये सारी चर्चा उन्होंने इन अवस्थाओं को लेके की। तो अब आप विचार करो कि जागृत में क्या स्थिति है, कहा हमारा मैं, और फिर उस मैं को लेकर के है मम आदि सारे और संकल्प विकल्प आदि ये सब जो है होते हैं, और उसको लेकर के कहीं पर सुख होता है कहीं पर दुख होता है। स्वप्न के अंतर्गत भी भले ही अविद्यात्मक स्थिति हो लेकिन वहां पर भी एक नवीन मैं होता है, और वहां भी क्या होता, संकल्प विकल्प आदि वहां भी होते और सुख दुख वहां भी होता। लेकिन वहीं पर जो अवस्था तीसरी है सुसुप्ति की, वहां क्या होता, जागृत में पाप भी है, जागृत में पुण्य भी है, शुभ अशुभ है, ये सब है। स्वप्न में भी पाप पुण्य और शुभ अशुभ की स्थिति होती है, लेकिन वहीं पर सुसुप्ति के अंतर्गत कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है, क्या दुख है और क्या सुख है, वहां पर जो है आप देखेंगे तो वहां पर कोई सुख भी नहीं है और कोई दुख भी, जिसे हमने सुख समझा हो जागृत का जो सुख हमारा, तो वो ऐसा वहां सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं, पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं, चोर भी नहीं है और अचोर भी नहीं है। सुसुप्ति जागृत में ये सब दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी ये संभव है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत चोर अचोर पाप पुण्य सुख दुख शत्रु मित्र है पिता पुत्र गुरु शिष्य भाई भाई, ये कोई भी धर्म है वहां क्या, सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत ये कुछ भी नहीं। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में क्या होता, संप्रसाद उसे बृहदारण्यक में कहा, वो अवस्था को नाम क्या रख दिया, संप्रसाद, माने वहां पर सम्यक प्रसाद है। सम्यक प्रसाद माने जैसा प्रसाद होना चाहिए वैसा प्रसाद, ठीक प्रसाद, यथा प्रसाद, और प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता सुख, यही मानना पड़ेगा। तो अब जो है वहां पर ये सब है, लेकिन कब है, तो क्या कहोगे, ये वहां तब है जहां हमने जो खंड किए थे उन खंडों का वहां अभाव है। अहम तुम है मेरा तेरा, ये कोई खंड नहीं, पाप पुण्य शुभ अशुभ चोर अचोर शत्रु मित्र, ये जो हमने विभाजन किया था वो सुसुप्ति के अंदर कोई भी विभाजन नहीं। और ये शरीर तो है, ये शरीर है कि नहीं, जो जागृत में शरीर था जो स्वप्न में शरीर था वो शरीर वहां है अथवा नहीं, तो कहने लगे जागृत का शरीर तो वहां है लेकिन शरीर होते हुए जागृत के शत्रु वहां नहीं है, जागृत के मित्र वहां नहीं है। और तो जाने दो, एक व्यक्ति जिसका ऑपरेशन कर दिया गया और उस ऑपरेशन के कारण उसको भयंकर पीड़ा हो रही और उसे सहन नहीं हो रहा, ये कब का, जागृत अवस्था। लेकिन जब उसको निद्रा आ गई सुसुप्ति में चला गया तो शरीर है वो घाव भी है लेकिन जिस दर्द का अनुभव हो रहा था, जिस दर्द को लेके व्याकुल हो रहा था, क्या सुसुप्ति में वह व्याकुल हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? शरीर तो है, वह घाव भी है, तो दर्द होना चाहिए, उससे उसे दुखी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? यही कहोगे कि वहां पर जो मैं था वो जागृत का जो मैं था वो मैं नहीं, लेकिन मैं है वहां, लेकिन कौन सा मैं नहीं है?

वस्त्र से होने वाला कार्य भी समाप्त, लेकिन वस्त्र को धारण करने वाला जो था वो वहां है कि नहीं? वो तो है, जिसने वस्त्र को धारण किया था वो वहां विद्यमान है, और वो विद्यमान है तो उसमें क्या स्थिति है? कहने लगे उसमें न शुभ है और उसमें न अशुभ है, न उसमें शत्रुता है न उसमें मित्रता है। ये हम सभी लोग अहर्निश अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव करते हुए भी उस अनुभव का जो है अपने में निश्चय नहीं कर पाते। फर्क क्या है? अनुभव करते हैं लेकिन अनुभव के अनुकूल हमारा निश्चय नहीं होता। उस अनुभव के अनुकूल यदि जागृत में निश्चय हो जाए तो जागृत में भी वह नूतनता आ जाएगी, शत्रु में भी नूतनता रहेगी, मित्र में भी नूतनता रहेगी, चोर अचोर में भी नूतनता आ जाएगी, है ना? लेकिन वह अनुभव जो है वो हमारे निश्चय में आता नहीं। जब तक अनुभव निश्चय में नहीं आता है तब तक जो है हमारे लिए क्या रहे, यह नवीनता यह रमणीयता हमारे लिए आना कठिन है। अब हम गीता को लेकर के बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने है, ये किसके किस समय के लिए कहा? जागृत अवस्था के लिए तो कहा है, व्यावहारिक स्थिति में ही तो कहा है। तो अब जो है ये समत्व हमारा आ जाए, कहा ये समत्व क्या है? समत्व ये नहीं है जैसा आज लोग हम करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सभी ब्रह्म हैं, सभी आत्मा हैं, लेकिन यही कह करके वो फिर भेद खड़ा कर लेते हैं, ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है। सुसुप्ति में कोई ज्ञानी अज्ञानी दिखाई देता? कोई भेद नहीं। तो क्या है वहां? वहां पर जो है एक जो है समक का नाम जो गीता में भगवान ने और स्पष्ट कर दिया, समो ही ब्रह्म। सम क्या है? कहा ब्रह्म है। तो वहां एक आत्मसत्ता के अतिरिक्त, ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई निश्चय वहां है नहीं, अन्य कोई दृष्टि है वहां नहीं। तब वहां पर क्या होता? तो वहां शत्रुता भी नहीं है और मित्रता भी नहीं। लेकिन हमारी ये दृष्टि क्या उस गौ में बनती है, क्या उस हाथी में बनती है? नहीं बन पाती। कहने लगे ये बनेगी कैसे? हाथी हाथी होता है, गौ गौ होती, बनेगी? उसके बनने का उपाय क्या? उसके बनने का उपाय ये है कि जो हमने चर्चा की ईसावास में आपने पढ़ा होगा, अंधम तमा प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश करते। कौन? तो अविद्यायां, जो अविद्या की उपासना करते हैं या अविद्या में रत रहते हैं, अविद्या में रमणीयता है जिनकी, अविद्या में व्यवहार हो रहा है जिनका, यह तो वो क्या है? का अंधकार में ही प्रवेश करते। ये सब कह दिया और फिर बाद में क्या कह दिया? कहने लगे वो भी है तमो। कौन? कहा जो विद्यायां रता, जो विद्या में रत है, कहा वो भी अंधकार में। ये क्या मतलब? और फिर क्या कहा? यस तम वेदो उभय सब, विद्या और अविद्या को दोनों को जो एक साथ जानता है, ध्यान देना, विद्या को और अविद्या को जो एक साथ जानने वाला है, तो कहने लगे वो क्या कर लेता है? तो कह देंगे अविद्या के द्वारा मृत्यु के पार हो जाता और विद्या के द्वारा का अमृत का स्नान करता। संकेत किया वह। तो अब जो है ये दोनों को एक साथ जानने वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अविद्या और एक विद्या, एक माता और एक विमाता, क्या कह दो,
एक माता और एक

0: विमाता। माता का कर्तव्य क्या है और विमाता का कर्तव्य क्या है? मान लीजिए जहां पर माता भी है विमाता भी है लेकिन पुत्र एक ही है, और वहां पुत्र किसका होगा? तो माता का ही होगा। अब जो माता का पुत्र होगा लेकिन दोनों का कार्य क्या है? विद्या विद्या का वो संकेत करने के लिए, जैसे विमाता जो है वो क्या करेगी, उस पुत्र को उसके मनोनुकूल पदार्थ देगी, है? उसे प्रसन्न रखना चाहेगी कि ये प्रसन्न रहेगा तो हमारा होकर के रहेगा, उसे जो उसके लिए हानिकारक है और हानिकारक पदार्थ भी उसे वो दे देगी। क्यों? यदि वो चाहता है उससे खुश होता है तो उसे खुश रखने के लिए वो हानिकारक पदार्थ भी उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकर नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रदान कर दे। लेकिन यदि स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है और माता से वो पदार्थ मांगेगा तो माता देगी? नहीं देगी। माता उसका निषेध कर दे, माता उस पदार्थ को उसे देगी नहीं, तो यही विद्या विद्या की बात।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Brahma Abrahma, Brahma Napumsak hai, Brahma Pulling hai, Brahma Brahmano Brahmana Pulling hai. Yaad rakhna. Yo Brahmanam Vidadhati Purvam, Yo Vai Vedansa Prahinati Tasmai. उत्पन्न ब्रह्मा को पैदा करके जो वेद ज्ञान उसको स्थापना किया, इसी बात को भागवत में पहले आता है। जन्माद्यश जतु अन्नयाद इतरत अर्थेशु अभिज्ञसरा तेने ब्रह्मा ऋजा आदि कवये मुह्यंति जसुर। तेने विस्तार करते हैं ब्रह्मा, आदि कवये आदि कवि आनी बात, आदि कवये आदि कवि कौन है? कहो के वाल्मीकि है, यह बोलते ना रामायण में मुह्यं तेजा तो सूरया। देवता लोग जहां से मोहित हो जाते हैं, तो मतलब कहने का ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। तो ब्रह्मा यो ब्रह्मा विदुषादि पूर्वम विद ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभव, देवताओं से सबसे पहले ब्रह्मादि उत्पन्न हुए ब्रह्मा। तो ब्रह्म के अंदर जो है ना, इस ब्रह्म से पहले भी कोई यार पूर्व पहले था, पहले कोई था। तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे भगवान विष्णु के नाभि कमल से। तो भगवान विष्णु कहां से पैदा हुए? नहीं नहीं, देखो आप देवी भागवत पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव है, आनी बाप त्रिदेव है, ये तीनों देव आनी बाप जब अकेला अकेला रहा, किसी ने 3 लाख वर्ष तपस्या किया, किसी ने 3.5 लाख वर्ष तपस्या किया, किसी ने 5 लाख वर्ष तपस्या किया, लक्ष्मी ने 1 लाख तपस्या किया, दुर्गा ने 1 लाख तपस्या किया, सरस्वती ने 1 लाख तपस्या किया, तब जाकर के पद मिला इन लोगों को। बात ये त्रिदेव है और तीनों ने विचार किया हम कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, कैसे आया, तो आकाशवाणी होती है। हाँ, हाँ? नहीं तब करो, नहीं आकाशवाणी होती है वो तुम मणि क्या मणिभद्रन पूरा सा गुस्सा है उसमें चले जाओ, तुमको पता चलेगा तुम कौन हो। तो तीनों एक विमान में बैठ करके चले गए, विमान आया उनके सामने, तो विमान में बैठ करके गया, जाते जाते जाते एक जगह में गया जहां जाने के बाद तीनों के तीनों स्त्री हो गया, ब्रह्मा विष्णु और तीनों स्त्री बन गया, तीनों स्त्री। हाँ तो वहां रहा तो देवी ने उनको उपदेश किया, उपदेश करके बोले तुमको पैदा करने वाला मैं ही हूं, तुमको पैदा करने वाला मैं ही हूं, तुम हमारी शक्ति से शक्तिमान होकर जीते। वह तीनों को तीन लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा दिया तीनों को, और तीनों लेकर के चला। हाँ फिर पुरुष बन गया, तीनों जाओ तुम लोग सृष्टि रचना करो, तुम पालन करो, आ तीनों को दिया, ये तुम्हारा सहायक बनेगा लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा। ये त्रिदेव है, ये त्रिदेव से परे एक देव है, वो शाश्वत देव है, ये कर्मदेव है, ये सब कर्म के द्वारा साधन के द्वारा देवत्व को प्राप्त किया। वो त्रिदेव रहेगा, ये तीनों चला जाएगा, कर्म फल भोग समाप्त हो जाए। जैसे अभी आप सुनते हो कि ब्रह्मा जी की आयु कितना है, 100 वर्ष, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो ब्रह्मा जी की आयु का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उनका पतन हो जाएगा। ऐसे इसके बाद में भगवान विष्णु की आयु 100 वर्ष है, तो भगवान विष्णु का आयु समाप्त हो जाए, फिर रुद्र का आयु, शंकर जी का आयु 100 वर्ष है, इनका भी आयु समाप्त हो जाएगा तीनों का, तो फिर महान सृष्टि के क्रम आएगा। इनके भी त्रिदेव भी कर्म के अनुसार ही है, त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु है, इसीलिए तीनों झगड़ा करते हैं ना, तीनों के घर में झगड़ा है, शंकर के घर में भी बेटा बेटी लेकर के पत्नी को लेकर के झगड़ा है, वो इधर जाता है वो इधर जाता है उधर, ऐसा भगवान विष्णु की या लक्ष्मी चली जाती है घोड़े के घर में चली जाती है। लक्ष्मी एक बार देख रहे थे उनका भाई जो है ना आ रहा था, वो उसमें बैठ करके वो अश्व अश्व है ना क्या नाम उनका, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी लक्ष्मी ओ लक्ष्मी 2 बार 3 बार चिल्लाया तो सुनी नहीं, वो आपने घोड़ा की तरफ देख रहा था, तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा तुमको घोड़ा प्रेम प्रिय लगता है, मैं प्रिय नहीं लगता हूं, मेरी बात सुनते नहीं, जाओ घोड़ा के शरीर में चले जाओ। अभी जब लक्ष्मी को तो लक्ष्मी घोड़ी का स्वरूप बना, तो लक्ष्मी रोने लगी हमारे मुक्ति कैसे होगी, हम तो ऐसी कुदृष्टि से नहीं देगा, मेरा भाई है आने बात क्या नाम उसका अश्व का नाम समुद्र के समुद्र से मंथन से निकलो उच्च श्रवा उच्च श्रवा। फिर जो है ना तो कहते तुम्हारी मुक्ति होगी जब तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा होगा, तो भगवान विष्णु ने इसका अभिशाप दिया, लक्ष्मी चली गई कुरुक्षेत्र के मैदान में घोड़ी बनकर रहने लगा, तपस्या करने लगे भगवान शंकर की, तो शंकर प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, बोले लक्ष्मी तू अपने पति को छोड़कर हमारे क्यों तपस्या कर रहे साधन कर रहे, पति का पत्नी का काम है पति का सेवा करना पति की आराधना करना, बोले यही तो बात है इसीलिए तो मैं आपको सेवा बुला रहा हूं, बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे हमको अभिशाप दिया मैं अब इससे मुक्त कैसे हूं। वो बोलता है कि तेरे गर्भ से पैदा होगा बच्चा पैदा होगा तब जाकर तेरी मुक्ति होगी अश्व शरीर से, तो वो तो वैकुंठ में रहता मैं तो कुरुक्षेत्र में रहता मर्त्यलोक में दोनों के संगम कैसे होगा, तो भगवान शंकर ने कहा जा मैं उनको प्रेरणा देता हूं, तो भगवान विष्णु जो अश्वमन करके वहां गया तो उसमें जो पैदा हुआ हयग्रीव पैदा हुआ था लक्ष्मी, तो देखो झगड़ा आएगी नहीं वहां। इसीलिए पुराणों की कथा ऐसे बहुत आती है, एक नहीं दो नहीं। तो कहने का मतलब त्रिदेव कर्म के अधीन है, ये जो त्रिदेव है ना ये कर्म, भगवान विष्णु है, भगवान रुद्र है, भगवान ये ब्रह्मा जी है, ये तीन देव तीनों गुणों के अंदर है। हाँ वो तीन गुण है ना, सत्वगुण रजगुण तमगुण, ये त्रिदेव त्रिगुण के अंदर है, इसीलिए कर्म गुण उसको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपके लिए तो बता रहे हैं ना, ये जो आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओगे तो कर्म तुमको बांधेगा नहीं, न इष्ट कर्म बांधेगा न पूर्त कर्म बांधेगा। उन लोग तो वो अधिकार के लिए तपस्या किया था, वो अधिकार हमको मिले। वैसे हमारे आश्रम में समझो मंडलेश्वर जी है, फिर उसके चेला है, शिष्य है, तो शिष्यों में होड़ लगते रहते, हमको कब मिलेगा पद, कोठारी पद मिलेगा, फलाना पद मिलेगा, उसके लिए मंडलेश्वर के आगे पीछे दौड़ता है कि नहीं, घूमता है कि नहीं घूमता है, हाँ आगे पीछे घूमता रहता है, हमको खुश होगा तो हमको मिलेगा पद, है नहीं बात। तो ऐसे जो पद के लिए तपस्या करता है तो उसको पद मिलता है, साधना करते हैं तो मिलता है, तुम साधना करो तुमको वो पद मिलेगा, पर लाखों लाखों वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष ने 1,00,000 वर्ष बैठ करके तपस्या किया था, भगवान ब्रह्मा जो है ना उनको दर्शन दिए, 1,00,000 वर्ष, हाँ वो देवता के हिसाब से बोलते हमारे हिसाब से नहीं, तो लाख वर्ष यहाँ तो एक दिन एक घंटा नहीं बैठा जाता है, सवाद पूरा हो गया, अरे आवे तो फिर तो ये 1,00,000 वर्ष की बात ही है। चलिए तो इसीलिए नहीं के पूर्तम अक्षिपत, पूर्तम माने पूर्त कर्म, तो पूर्त कर्म उपलक्षित इष्ट कर्म भी समझ लेना, पूर्त नहीं बांधेगा तो इष्ट बांधेगा ऐसा नहीं समझ लेना, क्यों ज्ञान के अंदर शक्ति है अज्ञान को मिटाने का, जो अज्ञान नाश हो जाता है तो तुम्हारा संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, तीनों प्रकार के कर्म भस्मीभूत हो जाएगा। तो तुमको पद की जरूरत नहीं है, तुमको मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो संसार के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से आने वाले छुटकारा चाहते हो तो ज्ञान का आश्रय लो, इनका कहने का तात्पर्य ही है। तत्र ध्वनिम कुरुस्व निष्ठाम कुरुस्व समाधिम कुरुस्व, वहां पर तुम समाधि करो निष्ठा करो, कहा ज्ञान में, वो पूर्व ब्रह्म में, जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है ना उसका सब कर्म समाप्त हो जाता है। जथे जांग्री समिद्योग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, तो ज्ञान अग्नि जो है ना सभी कर्मों को जला करके भस्म कर देता है, तो उसके लिए न पूर्त कर्म रहता है, न संचित कर्म, न क्रियमान कर्म, न प्रारब्ध कर्म, न इष्ट कर्म, कोई भी कर्म नहीं रहता, सब कर्म भस्म होता है। तो सब कर्मों को एक साथ भस्म करने के लिए, अगर यदि तुम कहो कि मैंने भोग से कर्म समाप्त करूं, ये संभव नहीं है, ये अनंत जन्मों का कर्म, अनंत जन्म तुमको भोगना पड़ेगा, तो जब अनंत जन्म भोगोगे तो नया कर्म भी हो जाएगा, फिर क्रियामान कर्म हो जाएगा, फिर जन्म होता जाएगा, जन्म होता जाएगा, कर्म होता जाएगा, जन्म कर्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, करना ही पड़ेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। हाँ चलिए, एवं कुर्वतो मम किम ततो भवति, शिष्य प्रश्न करते महाराज ऐसा करने से मेरे को क्या होगा, क्या मिलेगा, मिलना चाहिए ना कुछ। कैत्याहन नहीं इति ते नहीं ते, वो इस मंत्र में जो आया उसका प्रतिगुण है। नहीं ते पूर्त स्मार्त कर्म इष्टम श्रोतम स कर्म अक्षिपन न पुनर्भोग हेतोर बदनाती। देखा, भोग के लिए तुमको कर्म बंधेगा नहीं, न कर्म बद्धते, कर्मणा बद्धते संतो विद्या से विमुच्यते, कर्म के द्वारा बन जाता है। तो कल ऐसा करने से तुमको कर्म बंधेगा नहीं, कैसा करने से, ये जो यहां बता रहा है, देखा नहीं। नहीं चेति, नहीं ते पूर्तम स्मार्तम कर्म इष्टम श्रोतम स, श्रोत कर्म स्मार्त कर्म, इष्ट कर्म पूर्त कर्म, ये दोनों कर्म क्या नहीं करेगा, अक्षिफन न पुनर्भोग हेतु हो, पुनर्भोग देने के लिए आनी बात, फिर आगे जन्म लेने के लिए तुमको नहीं बंधेगा। न बदनाते ही, क्यों न बदनाता है, क्यों नहीं बंधेगा, ज्ञान अग्नि न सविजेश्य, सविजेश्य दग्धत्वा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तमाह पंडितम बुधा, आया कि नहीं। तो ज्ञान रूपी अग्नि जो है सबीज, सबीज समझ लेना, बीज के साथ, बीज वो अविद्या अज्ञान, तो अज्ञान का जब नाश करेगा तो कर्म किसके आश्रम में रहेगा। देखो विद्या अविद्या नियंती तेज सिमिर संगवत, विद्या अविद्या को नाश करेगा, जब अविद्या नाश हो जाएगा, अविद्या के आश्रम में रहने वाला इष्ट कर्म पूर्त कर्म श्रोत कर्म स्मार्त कर्म रहेगा, क्यों, कारण नाशात कार्य नाश। जब तंतु को तुमने जला दिया तो तंतु के आश्रम में रहने वाला जो वस्त्र, वस्त्र किसके आश्रम में रहेगा, जब तुमने धागे को जला दिया बसरा रहेगा धागे के आश्रम में क्या? नहीं समझे, रस्सी को जला दिया सर पर रह जाएगा ना। तो कहते कारण है क्या, अविद्या, अविद्या निवृत्ति मुक्षः, मुक्ति की अविद्या की अज्ञान की निवृत्ति का नाम। तो अविद्या को तुमने नाश कैसे किया, विद्या के द्वारा, विद्या अविद्या निहंती है, विद्या अविद्या को हनन करेगा, नाश करेगा, जलाएगा, भस्म करेगा। तो विद्या जो अविद्या को जला दिया तो अविद्या के आश्रम में रहने वाला शुभ शुभ कर्म, इष्ट पूर्त कर्म, श्रोत स्मार्त कर्म, बड़े बड़े कर्म, छोटे छोटे कर्म, कोई भी कर्म क्यों ना हो, अनिवार्य वो कर्म किसके आश्रम में रहेगा, जब कारण नाश हो गया तो कार्य किसके आश्रम में रहेगा, कहना बाप मर गया और बेटा सब अनाथ हो गया, अनाश्रय हो गया, इनको आश्रय कौन देगा, तो सब धारण देता है इसका आश्रय तो केवल भगवान ही है, बोलता है कि नहीं, इसका आश्रय भगवान ही है। ऐसे तो जब तुमने अविद्या को नाश कर दिया तो अविद्या है तो भगवान है ना, इसीलिए हमारे पंचदशी में वहां प्रसंग आता है, माया का दो बेटा है, एक ईश्वर है एक जीव है, माया का दो बेटा है, जीव और ईश्वर है, आनी बात, जीव और ईश्वर जो है माया का बेटा है, परंतु एक माया, माया का अविद्या, अविद्या प्रधान है, एक माया प्रधान है, आनी बात, माया में पड़ा हुआ जो ब्रह्म का प्रतिबिंब वो ईश्वर बना, और अविद्या में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वो जीव बना, मायावश न जीवेश करोति, माया से अविद्या से स्वयं भवति, माया अवश्य जीव ईश्वर बना देता है, माया, माया के जो अविद्या या प्रधान है ना, तम प्रधान अविद्या है, तो उसमें जो पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनेगा जीव, और माया में पड़ा हुआ जो सीधावास वो बनेगा ईश्वर। हाँ, एक ही उपाधि, सत्ता प्रधान उपाधि और तम प्रधान उपाधि, तम प्रधान आने बात कैसे देखो, एक घड़ा है, घड़ा कांच से बना हुआ है, कांच से जमलते हैं ना शीशा, और एक घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, दो घड़ा है, तो दोनों घड़ा में तुमने दिया रखा, रखा कि नहीं, दीपक तो दोनों में रखा, परंतु एक घड़ा का प्रकाश बाहर जाता है, दूसरा घड़ा का दीपक या बाहर नहीं जाता, क्या कारण है? आवरण तो है, एक सत्य प्रधान आवरण है, माने कांस प्रधान स्वच्छ उपाधि है, प्रकाश जो है बाहर जाता है, स्वच्छ प्रधान जो उपाधि है, स्वच्छ उपाधि है कि नहीं, कांस का जो घड़ा है स्वच्छ उपाधि है, उसका प्रकाश बाहर जाता है, और जो मलिन मलिन उपाधि है कौन, मिट्टी, तो मिट्टी में रहा हुआ जो घड़ा है उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता है, ऐसे मलिन उपाधि वाला हुआ कौन, अविद्या, मलिन उपाधि हुआ अविद्या, अविद्या में पड़ा हुआ जो चिदाभास वह है जीव, वो अपने को नहीं जानता है, और स्वतः प्रधान जो है ना माया, तो माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो क्या है, ईश्वर बना, तो ईश्वर माया को अपने बस कर लेता है और जीव अपने अविद्या की बस में हो जाता, बस इतने अंतर है। माया उपाधि वाला होगा परिचिन या व्यापक, माया उपाधि है ना, नहीं बेटा, नहीं बेटा, माया जो है ना कांस के घड़ा के सामने जगह, और जो है ना घड़ा मिट्टी का घड़ा जो है ना अविद्या के अंदर है, तो अविद्या में भी पड़ा हुआ चिदाभास और कांस के घड़ा में हुआ भी चिदाभास पड़ा, परंतु दोनों का प्रकाश बाहर जाता है कि नहीं जाता है? क्यों, किसका जाता है, कांस वाला जाता है और मिट्टी घड़ा वाला नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, क्यों, जड़ उपाधि है, मलिन उपाधि है, और वो तो स्वच्छ उपाधि कांस के घड़ा में पड़ा हुआ जो चिदाभास, वो चिदाभास ने क्या किया, कांस के घड़ा को अपने बस करके अपने प्रकाश को बाहर फेंक दिया, वो स्वयं आनी बात माया उपाधि वाला ईश्वर बन गया, और जो मलिन उपाधि वाला अविद्या के अंदर जो पड़ा हुआ जो चिदाभास वो मिट्टी के घड़ा के जगह में, उसने क्या किया, अविद्या के गुण को अपने में धारण के लिए अहमता कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि सब कैसे जाए, अविद्या का अविद्या का कार्य को अपने में मान करके सुखी दुखी संसारी बन गया, और ईश्वर जो है माया का गुण समझ करके उससे स्वतंत्र हो गया, तो माया आदि से हुआ ईश्वर, अविद्या आदि हुआ कौन, जी हानी बात, इसीलिए बोलते हैं चिदानंद माया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित तमोरज सत्य गुणा प्रकृति द्विविधा ससा, ब्रह्म कैसा है, स्वतचित सद स्वत माने स्वतंत्र रहेगा, अपने आप रहेगा, तो चित रहेगा, चैतन्य घना सदघना चित घन आनंद घन रहेगा, माया विशिष्ट हो गया तो अंतर्जामी बनेगा, माया विशिष्ट होकर के अंतर्जामी बनेगा, कोई जो सदघन चित घन आनंद घन ब्रह्म है परमात्मा है वो प्रकृति के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ता है, प्रकृति में प्रतिबिंब पड़ने से प्रकृति दो भाग में बांट जाती है, एक का नाम अविद्या एक का नाम माया, तो माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनता है ईश्वर, अविद्या में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनता है जीव, तो चिदाभास दोनों में ही है, दोनों चिदाभास। तो माया आभास ही न जीवेश करोती, माया आभास के द्वारा जीव भी बनाता है और ईश्वर भी बनाता है, और दोनों क्या है, माया का बेटा है। हाँ, ब्रह्म इससे परे है, इसीलिए संत लोग दृष्टान्त। अरे हो गया समय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
4: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

अर्दनाय नमः अभिवाद्याय नमः महाकर्मणे नमः तपस्विने नमः भूतधारणाय नमः उन्मत्तवेशाय नमः प्रच्छन्नाय नमः सर्वलोकाय नमः प्रजापतये नमः महारूपाय नमः महाकायाय नमः सर्वरूपाय नमः महायशसे नमः महात्मने नमः सर्वभूताय नमः विरूपाय नमः वामनाय नमः नराय नमः लोकपालाय नमः अन्तर्हितात्मने नमः प्रसादाय नमः अभयदाय नमः विभवे नमः पवित्राय नमः महते नमः नियताय नमः नियताश्रयाय नमः स्वयंभुवे नमः सर्वकर्मणे नमः आदये नमः आदिकराय नमः निधये नमः सहस्राक्षाय नमः विशालाक्षाय नमः सोमाय नमः नक्षत्रसाधकाय नमः।

सुवक्त्राय नमः, उदग्राय नमः, विनताय नमः, दीर्घाय नमः, हरिकेशाय नमः, सुतीर्थाय नमः, कृष्णाय नमः, शृगालरूपाय नमः, सर्वार्थाय नमः, मुण्डाय नमः, सर्वशुभंकराय नमः, सिंहशार्दूलरूपाय नमः, गंधकारिणे नमः, कपर्दिने नमः, ऊर्ध्वरेतसे नमः, ऊर्ध्वलिंगिने नमः, ऊर्ध्वशायिने नमः, नभसे नमः, तलाय नमः, त्रिजटिने नमः, चीरवाससे नमः, रुद्राय नमः,

आपाशाय नमः, नित्याय नमः, गिरिचराय नमः, अमताय नमः, सहस्रहस्ताय नमः, विजयाय नमः, व्यवसायाय नमः, आनन्दिताय नमः, अमर्षणाय नमः।

न्यग्रोधाय नमः विश्वकर्मणे नमः विश्वभुजे नमः तीक्ष्णाय नमः अपायाय नमः हर्यश्वाय नमः सहायाय नमः कर्मणे नमः कालविदे नमः विष्णवे नमः प्रसादिताय नमः।

नित्याय नमः वादसनाय नमः नित्याय नमः आश्रम पूजिताय नमः ब्रह्मचारिणे नमः लोकचारिणे नमः सर्वचारिणे नमः सुचारविदे नमः ईशानाय नमः ईश्वराय नमः कालाय नमः

नित्याय नमः, अनीशाय नमः, शुद्धात्मने नमः, शुद्धाय नमः, मानाय नमः, गतये नमः, हविषे नमः, प्रासादाय नमः, बलाय नमः, दर्पाय नमः, दर्पणाय नमः, हव्याय नमः, इन्द्रजिते नमः, वेदकाराय नमः, सूत्रकाराय नमः, विदुषे नमः, परमर्दनाय नमः, महामेघनिवासिने नमः, महाघोराय नमः, वशिने नमः, कराय नमः।

सारंगाय नमः, भूतचक्रांकाय नमः, केतुमालिने नमः, सुवेधकाय नमः, भूतालयाय नमः, भूपतये नमः, अहोरात्राय नमः, अमलाय नमः, मलाय नमः, वसुभृते नमः, सर्वभूतात्मने नमः, निश्चलाय नमः, सुविदवे नमः, बुधाय नमः, सर्वभूतानामसुहृते नमः, निश्चलाय नमः, चलविदे नमः, बुधाय नमः, अमोघाय नमः, संयमाय नमः, हृष्टाय नमः, भोजनाय नमः, प्राणधारणाय नमः, धृतिमते नमः, मतिमते नमः, त्र्यक्षाय नमः, सुकृताय नमः।

त्रिविष्टपाय नमः, निर्वाणाय नमः, हृदयाय नमः, ब्रह्मलोकाय नमः, परागतये नमः, देवासुर विनिर्मात्रे नमः, देवासुर परायण

0: इति श्री लिंग महापुराणे पूर्वभागे रुद्र सहस्रनाम कथनम नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नमस्तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्ण प्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय सद्योजाताय ते नमः वामदेवाय रुद्राय तदाप्यपुरुषाय च अघोराय सुसेव्याय भक्ताधीनाय ते नमः ईशानाय वरेण्याय भक्तानन्दप्रदायिने रक्ष रक्ष महादेव भीतान्न सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Atma un deh se bhinn hai, ye nischay kar lena chahiye. Yatha jagat pravritti naam adikaranam suman pumans tathaiva dehadi pravritto karanam param. दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जैसे संसार में सभी प्राणियों की प्रवृत्ति का मूल कारण है सूर्य, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में व्यक्त होता है तो सभी प्राणी अपने प्रवृत्ति कर लेते हैं। इसी तरह उसी परमात्मा के शरीर में अनुप्रवेश के पश्चात ही शरीर चेष्टा करता है। सूर्य के प्रकाश में प्राणी अपने अपने कर्म करते हैं, चेष्टा करते हैं। इसी तरह परमात्मा सदाशिव के अनुप्रवेश से ही यह देह चेष्टा करता है। सूर्य के रश्मि से प्राणी सब कुछ करते हुए, भी चाहे वह इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, शास्त्र विहित हो शास्त्र प्रतिषिद्ध हो, चाहे नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे काम्य कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो, चाहे प्रायश्चित कर्म हो,

यावत प्रवृत्ति में सूर्य का हेतु है, सूर्य कारण है, प्रकाश कारण है। लेकिन सूर्य के प्रकाश के चलते प्राणी में जैसा भी प्रवृत्ति, उन प्रवृत्तियों से सूर्य को कुछ लेना देना नहीं है, सूर्य असंग है। इसी तरह सदाशिव के परमात्मा के प्रवेश से ही इस शरीर में चेष्टा है, और शरीर चेष्टावान होने के बाद चाहे वह शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, चाहे नित्य करे चाहे नैमित्तिक करे, चाहे काम्य करे चाहे प्रायश्चित करे चाहे निषिद्ध करे, कुछ भी कर्म करे, उस कर्म का प्रेरक उस परमात्मा को इन कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं है तो फिर ये जीवात्मा क्यों कर्म बंधन में पड़ता है महाराज? तो बोले जीवात्मा के कर्म बंधन में पड़ने का कारण उसकी अपनी मूर्खता है, ना समझपना है। वो अन्य की चेष्टा को अन्य के रूप में, परक चेष्टा को परमात्मा के उपस्थिति में होने वाले यावत देह और करण आदि की चेष्टा को वह भ्रांति से मानता है कि ये चेष्टा मैं ही करने वाला हूं। चिच्छाया पेद, चैतन्य की छाया से युक्त होकर अंतकरण और अंतकरण के तादात्म सन्निधि से, जैसे अग्नि सन्निधि से लोहा जलाने वाला हो जाता है, इसी प्रकार से चिच्छाया सन्निधि से शरीर कर्म करने वाला, चेष्टा करने वाला, इंद्रियां कर्म करने वाले, चेष्टा करने वाले, मन बुद्धि आदि कर्मकर्ता के रूप में उपस्थित होते हैं, वह सन्निधि मात्र से। और भ्रांति ये होती है कि उचित छाया को भ्रांति ये होती है कि मैं ही सब कुछ करता हूं और यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है। ये ठीक है, अंतकरण सन्निधि से चिच्छाया ही कर्म करता है, लेकिन वह चिच्छाया ये कहता है कि यही मेरा पारमार्थिक असली स्वरूप है, ये उसकी भ्रांति है। और जो कर्म बंधन की प्राप्ति होती है, वेदांत की सारी प्रक्रिया है उसी चिच्छाया को होती है। बात समझ गए? चिच्छाया माने चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास को होती है। और यदि तुम हम यदि खाली मेरा स्वरूप ही चिदाभास है, इससे अलावा मेरा स्वरूप नहीं है मानते हो, तो फिर वो कर्म से बंधायमान हो जाओ, लिपायमान हो जाओगे। अन्यथा इन कर्मों से यदि मुक्त होना चाहते हो, इन कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो कर्म रोकने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करते रहने दो, जो करने वाले हैं वो कर्म करेंगे, करते रहने दो। पश्यन सिन्वन स्पृशन जिग्रन नसनन गच्छन स्वपन शोषण प्रलपन विसृजन गृणन उन्मिशन निमिशन नपी इंद्रिया निंद्रियाधीशु वर्तन्त इति धारय ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमा। प्रक्रिया बिल्कुल परफेक्ट है गीता में, प्रक्रिया में फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। कर्म से आप मुक्त होने का जो प्रक्रिया गीता में भगवान ने दी है वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। गलत हम हैं क्योंकि हम उस प्रक्रिया को अपना नहीं सकते। 18वें अध्याय में भी भगवान ने कह दिया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम पंचैतानिमानी कारणानि निबोधमे सांख्य कृतांते प्रोक्तानि न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवा। चाहे शास्त्र सम्मत कर्म हो चाहे शास्त्र निषिद्ध कर्म हो, सारे के सारे कर्म करने वाले यही पांच हेतु हैं, और इन पांच में तुम्हारा नाम, तुम्हारा उपस्थिति कहीं भी नहीं है। इन पांच में से तुम एक भी नहीं हो। पहला कर्मकर्ता शरीर, दूसरा कर्मकर्ता चिदाभास, तीसरा कर्मकर्ता करण इंद्रियां अंतकरण, चौथा कर्मकर्ता पंच प्राण, पांचवां कर्मकर्ता आदि दैव,
तुम अपने को क्या मानते हो? शरीर मानते हो कि शरीर से भिन्न मानते हो? तुम अपने को क्या मानते हो? इंद्रियां मानते हो कि इंद्रिय से भिन्न मानते हो? तुम अपने को प्राण मानते हो कि प्राण से भिन्न मानते हो? तुम अपने को चिदाभास मानते हो कि चिदाभास से भिन्न मानते हो? तुम अपने को अधिदैव मानते हो कि अधिदैव से भिन्न मानते हो? यदि तुम इन्हीं पांच में से एक मानते हो तो तुम्हारे मथे में इनके द्वारा किया हुआ कर्म आएगा, यही तुम्हारा कर्म बंधन है। यदि तुम इन पांच से अलग मानते हो तो फिर इनका किया हुआ कर्म से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही कर्म बंध विनिर्मुक्त का ये अवस्था है ये। क्योंकि वेदांत और शास्त्र महापुरुष बार बार कहते हैं तुम बिंब हो, प्रतिबिंब नहीं हो। कर्म करने में हेतु प्रतिबिंब है, कर्म करने में हेतु बिंब नहीं है। तुम बिंब हो, चिदाभास प्रतिबिंब है। अब दर्पण के अंदर के दिखने वाले दृश्य को कोई भी मूर्ख भी नहीं कहेगा कि मैं दर्पण के अंदर हूं, ये कोई भी नहीं कहता। कहता है ना? दर्पण के अंदर दिखने वाले शरीर को कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं दर्पण के अंदर हूं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। दर्पण के अंदर दिखता हुआ भी वो अपने आप को निश्चय कर रहा है कि मैं दर्पण के बाहर खड़ा हूं। इसी तरह अंतकरण में चिदाभास के रूप में देखते हुए भी आपको इतने करना निश्चय है कि मेरा असली स्वरूप तो अंतकरण से भिन्न है। इतना ही निश्चय आपका हो जाना है कि असंगता आ जाएगी। और ये अंतकरण संयुक्त जो चिदाभास आदि से इस पांच संघात से सम्मिलित रूप से जो भी कर्म होते, चाहे पाप कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे न्याय हो, न्याययुक्त हो, चाहे अन्याययुक्त हो, उससे फिर तुमको कुछ लेना देना नहीं है। यही करें, यही भरें, मुझे क्या लेना देना है? यही कर्मबंधन से विनिर्मुक्त होने की दृष्टि है।

0: अरणम परम। इसी प्रकार के देह आदि, आदि शब्द से प्राण, इंद्रियां, अंतकरण, इन सब में चेष्टा होने में कारण उस परमात्मा का अनुप्रवेश हेतु है। मम देहो अयम इत्येवं स्त्रीवालांधकाः मन्वते। अरे चार्वाकियो, हमारे वैदिक सनातन धर्म की तो स्त्रियां भी मैं देह हूं नहीं कहती है, मेरा शरीर है कहती है, और तुम उतनी भी नहीं हो, उससे भी बढ़कर मूर्ख हो गए हो। हमारे वैदिक सनातन धर्म के तो बच्चे भी मेरा शरीर कहते हैं, मैं एक शरीर नहीं कहता है, बच्चा भी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है कहता है। वैदिक सनातन धर्म के लोग तो अंधा व्यक्ति भी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है कहता है। मम देहो अयम इति एवं स्त्री बाला अंधकाश्च मन्यते। सभी लोग यही मानते हैं कि मेरा शरीर, हाँ तो मैं शरीर नहीं मानती। फिर तुम ही ये गलती क्यों करते फिर रहे हो कि शरीर ही आत्मा है। देहो अम इति ना वेति कदाचित अपि कश्चन। ये सारे के सारे मतभेद उपस्थित हैं। इंद्रियाण्यपि नात्मानः। अब तो शरीर आत्मा नहीं है, ये युक्ति से समझा दिया। अब कोई माने कि इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हो तो उसका भी खंडन कर रहे हैं। इंद्रियाणि नात्मानः, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती है। करणत्वाद प्रदीपवत्, ये इंद्रियां तो साधन हैं, करण हैं, प्रदीपवत् दिए की तरह। जैसे अंधकार कमरे में पदार्थ को देखना हो तो दिए को जलाना पड़ता है, और दिए को जलाने के माध्यम बाद दिए के प्रकाश के माध्यम से कमरे के पदार्थों का हमें ज्ञात होता है। जैसे दिया, कोई भी अज्ञानी भी नहीं कहेगा कि ये दिया मैं हूं, कहेगा हा? दीपो हम कहेगा कोई दिया, जो जलता हुआ दिया है वही मैं हूं, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। जैसे दिया करण है वस्तु प्रकाशन का, इसी तरह ये इंद्रियां भी दीपक की तरह वस्तु प्रकाशन के साधन हैं, करण हैं। माला को प्रकाशित करना हो तो आंख चाहिए, नमक और चीनी को प्रकाशित करना हो तो जिह्वा चाहिए। इसी प्रकार के शब्द, स्तुति और निंदा का शब्द को प्रकाशित करना हो तो कान चाहिए। इसी प्रकार के सुगंध और दुर्गंध को प्रकाशित करना, कमरे में सुगंध है कि दुर्गंध है ये जानने के लिए दिया जलाने से पता चलेगा कि नहीं है? नहीं चलेगा। फिर क्या जलाना चाहिए? नाक जलाना चाहिए है? कमरे में सुगंध है कि दुर्गंध है? देखो कल सुबह आते ही कितना दुर्गंध था है? फिर तुरंत खिड़की खोलनी पड़ी, स्प्रे करना पड़ा, तो बत्ती तो जल रहे थे ना, तो बत्ती जलने से पता नहीं चलेगा हा? तो नाक जलना चाहिए। जैसे सुगंध दुर्गंध के लिए, जैसे लाल पीले के लिए बत्ती है, कोई भी बत्ती मैं नहीं कहता है, इसी तरह सुगंधी दुर्गंधी को जानने के लिए नाक है, तो फिर नाक को मैं क्यों कहते हो? नाक को मैं कहते हो तो बत्ती को भी मैं कहो है? इंद्रियों को मैं कहते हो तो बत्ती को भी मैं कहो ना। ये तो केवल करण है, पदार्थों को जानने की साधन है, सामग्री है। इंद्रियाणि इंद्रियाण्यपि नात्मानः करणत्वात् प्रदीपवत् वीणावादनवत् श्रोत्रम् शब्दग्रहण साधनम् चक्षुस्तेजस्त्रितया रूपग्रहण साधनम्। चक्षु रूप ग्रहण के साधन हैं। जैसे लोक व्यवहार में वस्तु को प्रकाशित करने के साधन सूर्य का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बिजली का प्रकाश आदि हैं, इसी तरह वो प्रकाश को, चंद्रमा को कोई मैं नहीं कहता, दीपक को कोई मैं नहीं कहता, चंद्रमा को, सूर्य को कोई मैं नहीं कहता, टॉर्च को मैं नहीं कहता, तो फिर आंख को मैं क्यों कह रहे हो? ये भी टॉर्च की तरह यंत्र हैं, साधन हैं रूप प्रकाशन के। गंधस्य ग्राहकम घ्राणम पुष्प संपुटकादिक बद, गंध ग्रहण का साधन नाक है, रसस्य ग्राहिका जिह्वा दधी चोद्रघृतादिवत, ये दही है, ये दूध है, ये घी है, ये मधु है, ये मीठा है, ये नमक है, इसको जानने का साधन क्या है? रसन इंद्रिया। जैसे लाल पीला हरा नीला जानने के साधन क्या है? दीपक। दीपक को मैं नहीं कहते। इसी प्रकार से मधुर, तीक्त, कटुआ, अम्ला आदि को जानने का साधन रसन इंद्रिया। दीपक से ये खट्टा है कि मीठा है ये पता नहीं चलेगा। दीपक से, सूर्य के रोशनी से ये खट्टा है कि मीठा है ये पता नहीं चलेगा। यदि सूर्य के रोशनी से खट्टा है कि मीठा है पता चलता तो आम खरीदने वाले कभी धोखे में न पड़ते, देखकर लाए हैं। और घर में जब कहते हैं मालिक के, अरे खट्टा आम लेके आए, देख के नहीं लाया? बोले देख के लाया। नौकर कहता भाई देख के लाया, उसने कहा देख के नहीं लाया। मालिक भी मूर्ख और नौकर भी मूर्ख है। चख के नहीं लाया कहता तो तब तो ठीक था, है ये खट्टा आम है थोड़ा चख के नहीं लाया कहता तो ठीक था। मालिक क्या कह रहा है? देख के नहीं लाया। और नौकर क्या कह रहा है? देख कर ही लाया, फिर भी खट्टा कैसे निकला? क्योंकि जिस प्रकाश से तुम आम को देख रहे हो, आम के कलर को तो वह देख सकता है, रस को थोड़ी देख सकता है ये प्रकाश। रस को देखने के लिए तो रसन इंद्रिय चाहिए। मालिक को कहना चाहिए था चख के नहीं लाया। और यदि नौकर कहता कि हम मैंने चख के लाया तो तेरा झूठा खाएंगे हम, वहां भी समस्या है। और चख के नहीं लाया तो फिर अपूरा अधूरा काम किया उसने, बड़ी समस्या है संसार है। रसस्य ग्राहिका जिह्वादधिक्षोद्र घृतादिवत, इंद्रियाणि नमे सन्ति मूकोऽस्मि बधिरोऽस्मि हम। कोई बहरा कान न सुनने वाला व्यक्ति हो, वह यही कहता है कि मेरे कान नहीं है, यही ना कहता है, मैं नहीं हूं ये तो नहीं कहता है, कहता है बधिर व्यक्ति, बिल्कुल कान न सुनने वाला व्यक्ति के सामने तुम कुछ बोलो, उसके कान तो नहीं है लेकिन शब्द हैं, तो वो क्या कहता है? हैं? मैं नहीं हूं ऐसा कहता है, कान नहीं है इतना ही ना कहता है। और जिसकी वाणी नहीं है, मुंह कहे मैं नहीं हूं तो फिर भी नहीं कहेगा वो, मुख नहीं है वाणी नहीं है कहेगा वो। कोई गुंगा व्यक्ति को तो क्यों नहीं बोलता है पूछो, कारण बताएगा कि नहीं? गुंगा व्यक्ति को तुम पूछो, कान तो सुनता है लेकिन शब्द नहीं बोल सकता, उस गुंगे से पूछो तू क्यों नहीं बोलता है, तो क्या जवाब देगा बोलो? है वाणी नहीं है बोलकर जवाब देगा वो, तो इशारा करेगा कि मुख नहीं है, या फिर लिख के कहेगा कि वाणी नहीं है, है ना? वाणी नहीं है मेरे, मैं नहीं हूं तो ये तो नहीं कहता है ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? इंद्रिय अलग है, मैं अलग है, आत्मा अलग है। इत्याहोर इंद्रियेरहीना जना किम ते निरात्मका, कि हाथ कटा हुआ व्यक्ति निरात्मक है, वो आत्मरहित है, कि पांव कटा हुआ व्यक्ति निरात्मक है आत्मरहित है, आंखा नहीं है जो अंधा है क्या वो निरात्मक है? कान नहीं है बहरा है तो निरात्मक है, वाणी नहीं है गूंगा है तो क्या वो निरात्मा है? ये इंद्रियां तो करण है, करण नहीं है लेकिन आत्मा नहीं है तो नहीं कर सकते हो ना, इनसे अलग आत्मा है ये सिद्ध करना है बस। प्राणोप्यात्मा न भवती ज्ञाना भावा सुसुप्तिषु। बोले ठीक है, आज शरीर भी आत्मा नहीं है, इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, प्राण तो आत्मा है ना, प्राण को तो आत्मा मानना चाहिए। बोले प्राण भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञानाभाव। आत्मा में तो ज्ञान रहता है, आत्मा ज्ञान का पर्यायवाची है, ज्ञान आत्मा का पर्यायवाची है। ज्ञान स्व है वही आत्मा है, आत्मा स्व है वही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा दोनों ही एक ही व्यक्ति का एक ही वस्तु का नाम है, पर्यायवाची मात्र है। ज्ञान कहो और आत्मा ज्ञान है, आत्मा नहीं है कहना मूर्खता है। प्राण में ज्ञान नहीं है, प्राण में ज्ञान न होने से क्या सिद्ध हुआ? प्राण आत्मा नहीं है बस। यदि प्राण में ज्ञान होता तो सुषुप्ति अवस्था में गहरी निद्रा की अवस्था में सारे के सारे प्राण चेष्टा करता हुआ भी बाहर के वातावरण से वह अनभिज्ञ रहता है। गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति के सामने कोई आए कमरे से तो वह पहचानेगा कि नहीं? प्राण तो काम कर रहा है, नाक मुख से जाना आना कर रहा है, वो तो पहचानेगा कि नहीं? नाक जिस समय प्राण नाक से जिस समय बाहर गया है उस समय तो आपको देख लेगा वो, तो फिर अंदर जाएगा। आपके चले जाने के बाद गहरी निद्रा से सोकर उठा हुआ व्यक्ति को ये भान होना चाहिए ना कि मैं सोया था उस समय तुम आकर चले गए। होता है भान? नहीं होता। क्यों? ज्ञानाभाव। एक महात्मा थे, बैठते हैं उनके पास बड़ा बढ़िया कंबल था, कहीं यात्रा में गए, भक्तों ने भिक्षा दिया, बढ़िया आम रस खिला दिया, पूरी और आम रस तो खाए, तो उनको दिन में मध्यान्ह थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, पेड़ के नीचे सो गए एकांत में, तो कंबल बगल में रखा था, ठंडी का मौसम था, ओढ़ के सोए। हाँ तो एक कोई उचक्का आ गया, उसने देखा बहुत बढ़िया कंबल ओढ़कर सो रहा है ये, हे महात्मा कौन सो रहा है? कुछ नहीं बोला। अरे कौन सो रहा है? कुछ नहीं बोला। दो तीन बार आवाज लगाया, कुछ नहीं बोला। तो उस उचक्के को पता चला कि ये तो गहरी निद्रा में सोया है, तो इस कम्बल को खींचा तो पूरा का पूरा कम्बल आ गया, खींचा तो ऊपर से उड़ा था और उस महात्मा को पता ही नहीं चला कम्बल चला गया और चोर लेके चला गया कम्बल। थोड़ी देर के बाद महात्मा जब उठे, कम्बल तो है ही नहीं भाई, ये कहां गया? मैं ओढ़ के सोया था, कहां चला गया? यदि गिरा होता तो बगल में होना, तो बगल में भी नहीं, और आपने आप कमल जा नहीं सकता क्योंकि जड़ है, इतना तो आप भी जानते हो ना, है? अपने आप कमल भाग के जा तो नहीं सकता नहीं क्योंकि जड़ है, इतना तो आप भी जानते हो। फिर भी ये कमल कौन ले गया, कहां चला गया, कौन आया था? विचार करने लगे, मैं तो सो गया था लेकिन मेरा प्राण तो सोया नहीं था, प्राण को तो पता होना चाहिए था कौन आया, कौन खींच के ले जा रहा है, हैं? प्राण को तो पता होना चाहिए था, क्यों नहीं पता चला? इसका मतलब है कि प्राण जड़ है। महात्मा को निश्चय हुआ कि प्राण को कुछ पता नहीं चलता है। आप लोगों को निश्चय हुआ है कि नहीं? अभी तक प्राण जड़ है, प्राण को कुछ पता नहीं चलता है, यह अभी तक पक्का निश्चय हुआ कि नहीं? है? महात्मा को पहली बार निश्चय हुआ कि प्राण जड़ है, यदि जड़ न होता तो उसको पता चलता कि कम्बल कौन आया, कौन ले गया, किधर किस दिशा में गया, प्राण को कुछ भी पता नहीं, जगता हुआ भी, इसका मतलब प्राण जड़ है। तो महात्मा बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। तो दूसरा व्यक्ति आया तो महात्मा बड़े प्रसन्न, उस व्यक्ति ने पूछा महात्मा आज तुम बड़े प्रसन्न हो, कारण क्या है? बड़े पूछो नहीं, मुझे आज एक ग्रंथि एक रहस्य खुल गया, एक भ्रांति मेरी टूट गई, एक भ्रम मेरा टूट गया। जगत में कितनी भ्रम है, कितनी भ्रम है, सभी भ्रम मिलजुल कर मुझे फंसा रहे हैं, उनमें से एक भ्रम आज मेरा टूट गया। कैसे टूटा? बोले मेरा कमल चोरी हो गया। चोरी हो गया तो रोना चाहिए था, तुम हंस रहे हो। बोले उसका कारण तो समझ लो, मैं सो रहा था गहरी निद्रा में, मेरे प्राण जग रहे थे, फिर भी कम्बल कौन ले गया, किधर ले गया, उसको कुछ पता नहीं चला। इससे मुझे पक्का निश्चय हो गया प्राण आत्मा नहीं है, जड़ है। यह निश्चय होना ही मेरी प्रसन्नता का कारण है। कम्बल तो आता है जाता है, यह निश्चय हो जाना। हाँ, देखो इस शरीर आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, अंतःकरण आत्मा नहीं है, इन सबका संघात भी आत्मा नहीं है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास भी आत्मा नहीं है। ये समझ में आ जाना कम उपलब्धि है, है? कम उपलब्धि है बोलो, यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो महात्मा तो ऐसी उपलब्धि होने पर ही प्रसन्नता व्यक्त करता है, और आप लोग तो इनको महत्व देते नहीं हो। करोड़ दो करोड़ लाभ हो गया तो उसी को महत्व दे, बड़े प्रसन्नता हो जाते हो, और क्या। महात्मा की तरफ जीना सीखो भाई, और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओ
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sakti Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankar Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Shiv Bhakt Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Shaktiyar ya Satyar hai. कावेरी नदी द्वारा संचित तमिलनाडु के बरिंचयू में एक कृषक परिवार में सत्यार का जन्म हुआ। इनकी भक्ति कट्टरता का भाव लिए हुए थी। यदि कोई व्यक्ति शिव भक्तों के प्रति अपशब्द कह देता तो सत्यार चिमटे के समान दंडा युधम से पकड़कर उसकी जीवा काट डालते थे। उनकी ऐसी असामान्य और विचित्र सेवा विधि आधुनिक युग में एक आश्चर्यजनक पौराणिक गाथा के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक धर्म के मानने वालों द्वारा दूसरे धर्म की खिल्ली उड़ाना एक पुरानी प्रथा है। तमिल महाकाव्य मणिमेखले और नाटक मुक्तविलास में इसके प्रचुर संकेत मिलते हैं। स्वधर्म में विश्वास प्रशंसनीय है, पर इस विश्वास की भी मर्यादा है। सभी धर्म अतः एक ही ज्योति, एक ही सत्य स्वरूप ईश्वर की ओर जाने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। जब विश्वास अपनी सीमा लांघ जाता है तो दुख और अनिष्ट का कारण बनता है। धर्म आसक्ति और धर्माधता अलग अलग हैं। सत्यार्थ धर्मार्थ भक्तों की श्रेणी में है। अपने धर्म से भिन्न धर्म पर आस्था रखने वाले को कष्ट देना अथवा उसके प्राण हरण करना मानवीय और ईश्वरीय दृष्टि से अक्षम्य है। इनकी क्षमा नहीं होती। इनके बीच युगों से कई रूप में संघर्ष रहा है और हम सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर अत्याचार और अनाचार सामाजिक जीवन का एक विष है। शिव धर्मालंबी सत्यार शिव अथवा उनके भक्तों के प्रति अपशब्द कहने वाले की जबान खींच कर काट दिया करते थे। गेरी पत्थर भी कुछ ऐसा ही करते थे, पर वे शिव भक्तों को पीड़ित करने वालों को दंडित करते थे। अन्य धर्मावलंबियों की हानि करने की भावना आज भी कुछ धर्मों में पाई जाती है, पर नवयुग की न्याय व्यवस्था, सामाजिक परिवेश और सर्वधर्म संभाव की चिंतन धारा द्वारा कट्टरता को वश में कर पाना आज संभव हो चुका है। इसीलिए शक्तियार जिस युग में थे उस युग में अन्य धर्म वाले जब शिव भक्तों की खिल्ली उड़ाते थे तो शक्तियार उनकी जिब्वा काट डालते थे। ये एक कट्टर वाले शिव भक्त थे। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय।
5: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
4: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்டா டார்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்தகிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நமசிவாய.
1: அஸ்தி யதி ராஜமௌலே பவதாபரணம். முஜ்மே சாரே தோஷ் ஹோனே பர் பி ஆப்கே ஆபரண், ஆப்கே ஆபூஷணோ கே, ஆப்கே உபயோகி கே பாத்திர கே ரூப் மே முஜே ஸ்வீகார் கர் லோ, கஹி ந கஹி தோ மே காம் ஆவுங்கா, சர்வதா பரித்யாக் நஹி கர்னா மஹாராஜ். பட சுந்தர் பாவ் ஹை இஸ் ஸ்லோக் மே. भगवान से ये प्रार्थना की गई है, आपके द्वारा मैं तिरस्कृत न हूं, मेरा आप तिरस्कार नहीं करना, जिस रूप में प्रयोग करना चाहो कर लो, लेकिन आपके उपयोगी वस्तु के रूप में कम से कम मुझे स्वीकार करो. इसलिए शिव भुजंग स्तोत्रम काश्मीरी शैव जगद्धर भट्ट जी ने एक जगह लिखा यही भाव को. बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है जगद्धर भट्ट ने, इस ऐसे ऐसे भाव को व्यक्त किया. पशुम वेत्सि चिन्माम तमेवाधिरूढ़, पशुम वेत्सि चिन्माम तमेवाधिरूढ़ कलंकीति वा मूर्धनि धत्से तमेव द्विजिह्वा पुनः सोऽपि ते कंठभूषा त्वदंगीकृता सर्व सर्वेपि धन्या. भाव वही है, हे शिवा आप मुझे पशु मानते हो तो वाहन बनाकर मेरी सवारी करो. पशुम वेत्सी, आप मुझे पशु के रूप में जानते हो तो मुझे वाहन के रूप में प्रयोग करो. कलंकीति, यदि आप मुझे कलंकी मानते हो तो मूर्धनि ध्वस्व सिर में धारण करो. द्विजिह्वा, दो प्रकार की बात करने वाला द्विजिह्वा, सर्प का जिह्वा दो होते हैं, द्विजिह्वा माने सर्प. द्विजिह्वा स्नः पुनः सोऽपि ते कंठभूषा, तो यदि मुझे सर्प ही मानते हो, द्विजिह्वे मानते हो. एक महात्मा बता रहे थे ना, महाराज हम तो इंसान है, द्विजिह्वे कहां से? बोले तुम्हारे दो जिह्वा है, मंदिर में खड़े होते हो तो भगवान को कहते हो तुम्हें माता चपिता तुम्हें वा. अब पत्नी जब नाराज होती है तो उसके सामने खड़े होकर कहते हो तुम्हें वा माता चपिता तुम्हें वा. दो जिह्वा हो गया कि नहीं बोलो? अरे भगवान को तुम्हें माता कहा तो पत्नी को क्यों कहते हो, और पत्नी को कहते हो तो भगवान को क्यों कहते हो? एक ही जीव से बात करो ना भाई, दो जिह्वा. महात्मा ऐसी व्याख्या कर रहे थे. तो भी तो महाराज कंठभूषा आपके गले के आभूषण तो बन सकता हूं. त्वदंगी कृता, अपने उन लोगों को अंगीकार करके स्वीकार करके वे सब धन्य हो गए. तो वे सब जब धन्य हो सकते हैं तो मुझे भी स्वीकार करो महाराज. हाँ, असुचिम यदि माम अनुमन्य से किमिदम मूर्धनि कपाल दामते. मुझे असुचि अपवित्र मानते हो तो फिर चंद्रमा को सिर में क्यों धारण किया है? क्या वो चंद्रमा मेरे से ज्यादा शुद्ध है और उसको धारण कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं धारण कर सकते? यही भक्ति का भाव है। भक्त भगवान के साथ इस प्रकार के विनोद करता है, भरोसे से भगवान के साथ संवाद करता है, जरूर मुझे भगवान स्वीकार करेंगे। अहम यादृशः, हे महाराज मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं तुम्हारा हूं, मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं, इतने आप ख्याल रखो, मैं तुम्हारा। जो वस्तु अपनी होती है वो जैसा भी होता है ना, उसको स्वीकार करना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं बोलो? हमारी समस्या बड़ी जटिल होती है। जब बेटे की शादी करनी होती है तो लड़की को खोजने चलते हैं और लड़कियों को खोजते हैं, उसका फोटो देखते हैं, उनके बात करते हैं, उसके बायोडाटा मंगाते हैं और हजार कमी कमजोरी को खोजते हुए उसका रिजेक्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं? वो काली है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, वो लंबी है, ठीक नहीं है, वो मोटी है, ठीक नहीं है, वो दुबली पतली है, ठीक नहीं है। हजार दोष देखकर हम उसका रिजेक्ट करते हैं। अब जब किसी एक को पसंद करके शादी कर लेते हैं, शादी कर लेने के बाद लंगड़ी हो जाती है तो क्या परित्याग करते हो? शादी के बाद उसका तिरस्कार करते हो? ये लंगड़ी हो गई अब तिरस्कार करे, परित्याग करते हो? बोलो, ये लंगड़ी हो गई अब, किसी कारण से अंधी हो गई तो तिरस्कार करोगे? बोलो ना। अब किसी कारण से थायराइड के चलते बड़ी भारी मोटी हो गई, अब तिरस्कार करोगे? होता है ना, थायराइड के कारण अचानक शरीर में चर्बी चढ़ने लग जाता है, बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, अब परित्याग करोगे उसका? जैसा भी हो, अपना होने के बाद तो जैसा भी हो स्वीकार करना पड़ता है, और करते हैं, तिरस्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपना है, पति अपना जैसा भी हो स्वीकार करेंगे, बेटा अपना जैसा भी हो तिरस्कार नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं, मां अपनी जैसी भी हो स्वीकार करते हैं, बाप अपना जैसा भी हो स्वीकार करते हैं। अपना हो गया कि स्वीकार किया, और जब तक अपना नहीं होता है तभी तक हजार नखरे हैं, कोई न कोई बहाना खोजे वो परित्याग करे, बहाना खोजे और परित्याग करे। तो भक्त कहता है भगवान से कि महाराज मैं तुम्हारा हूं। शंकराचार्य जी का वो षटपदी याद कर लो, हैं? सामुद्रोही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तु। हे नाथ, तत्व दृष्टि से, वेदांत दृष्टि से जब हम विचार करते हैं महावाक्यों को आधार बनाकर, तब तुम्हारे में और मेरे में रंच मात्र भी भेद सिद्ध नहीं होता। भेद का अपगम, तत्त्वमसि, जब महावाक्य के द्वारा, उपनिषद के महावाक्यों के द्वारा विचार करते हैं, आपके और मेरे बारे में हम विचार करते हैं, तो तुम्हारा मेरा कोई भेद भिन्न सिद्ध ही नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सोहम हम सह, सत्य भी वेद अपगमा, फिर भी तवा अहम, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। तवा अहम न मामकी नस्तम, मैं तुम्हारा हूं लेकिन तुम मेरे नहीं हो। अर्थात मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, इसलिए मैं तुम्हारा हूं। लेकिन तुम्हारे होने में मेरे होने न होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं हूं तो भी तुम हो, और मैं न रहूं तो भी तुम, इसलिए तुम्हारे होने में मुझ पर निर्भर नहीं करता। मिट्टी को होने में घड़े पर निर्भर नहीं है, लेकिन घड़े को होने में मिट्टी पर निर्भर है। घड़ा ये कह रहा है, हे मिट्टी, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। क्यों? मेरे न होने पर भी तुम रहते हो। जब घड़ा नहीं बना था तो मिट्टी थी कि नहीं? घड़े के अस्तित्व की जरूरत नहीं है मिट्टी के अस्तित्व के लिए, लेकिन घड़े के अस्तित्व के लिए पहले मिट्टी का अस्तित्व होना जरूरी। इसी तरह परमात्मा के अस्तित्व के लिए जीवात्मा का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवात्मा के अस्तित्व के लिए परमात्मा के अस्तित्व के बिना जीवात्मा का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सामुद्रो ही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र, जड़ता पशुता कलंकिता, कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले भवदावरणस्य नास्मि किं पात्रम्। इस श्लोक में दो भाव स्पष्ट दिखता है। एक तो भक्त ये पूरी तरह विश्वस्त है इस श्लोक के भाव से, भक्त पूरी तरह विश्वस्त है कि मैं भगवान का हूं, मैं जैसा भी हूं भगवान मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, इस पर विश्वस्त है वो भक्त। दूसरी बात, भगवान के साथ वह अधिकार पूर्वक जोर लगाकर ये कह रहा है, महाराज मुझे आप हर हालत में स्वीकार करना ही पड़ेगा, मेरे से गए गुजरों को स्वीकार किया है तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, बोलो हैं? मेरे से गए गुजरों को स्वीकार किया है, प्रमाण क्या है? मैंने तुमसे गए गुजरों को स्वीकार किया है, बोले ये प्रमाण है, नंदी मेरे से गया गुजरा है, मृगा मेरे से गया गुजरा है, वह पशु जाति के मैं इंसान जाति का हूं, वो चतुष्पाद है मैं द्विपाद हूं, लो जी तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, करना ही पड़ेगा। पहले भगवान के साथ इस तरह तुम जब आग्रह करोगे तो भगवान को बाध्य होकर स्वीकार करने, बात तो तू ठीक कह रहा है, चंद्रमा को स्वीकार कर रहे हो तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, सर्प को स्वीकार करते हो तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो, तो ये दो चार उदाहरण देकर तुम आग्रह करोगे तो भगवान को झक मार कर स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? मसान घाट में भी जाकर तुम्हें स्वीकार करेंगे भाई, जहां भी स्वीकार करेंगे, तब तुम्हें भगवान शिव तुम्हारी जब चिता में तुम्हारे बेटे ले जाकर तुमको जलाएंगे, राख बना देंगे। तो भगवान कहेंगे इसने कहा था मुझे तिरस्कार नहीं करना, तो उसी राज को अपने शरीर में लपेटने शुरू करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? जब तुम ये कहोगे महाराज किसी हालत में भी मुझे मेरा परित्याग नहीं करना, तो अग्नि से जलने से राग बनने से बच गया जो खोपड़ी, इसने कहा था मेरा तिरस्कार नहीं करना, तो उसी को उठाकर गले में माला बनाकर पहन लेंगे। ये तो हो गया जड़ शरीर की बात। अब तुम कदाचित अपनी पूर्व वासना, अपनी पूर्व कामना, अपने कर्मों के चलते, तुम्हें नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे, मैं यदि भूत प्रेत बना मरने के बाद, है ना, भूत प्रेत में किससे बनता हूं? मेरी वासना से, मेरे कर्मों से, मेरे संस्कारों से। दूषित वासना, दूषित कर्म, दूषित व्यवहार से मैं भूत प्रेत बनूंगा तो भी भगवान मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे इतना विश्वास है भाई मैं भूत भी बनूंगा तो परमात्मा स्वीकार करेंगे अपने गण के रूप में, अपने गण के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रेत भी बनूंगा सहचरा प्रमथगण भूतगण भूतगणादि सेवितम। आहा भक्तो, इंसान बनकर भगवान की सेवा करने का मौका नहीं भी मिला तो चिंता नहीं करना, भूत प्रेत बनोगे सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा, ये भगवान की कृपा है, हो तिरस्कार नहीं करेंगे। भगवान का स्मरण करो, भगवान का होकर जियो बस, तो जिस अवस्था में भी तुम रहोगे भगवान स्वीकार करेंगे, परित्याग नहीं करेंगे। अब जब भूत बनकर भगवान के शरीर में तेल लगाने को मिलेगा क्या मजा आएगा महाराज, है? जब भूत प्रेत बनकर भगवान के चरण को धोने को मौका मिलेगा, हाहा क्या कहना, केवट को शूद्र जाति के होकर नदी के किनारे में है, केवट बनकर शूद्र जाति का होकर रहने से क्या फर्क पड़ा, भगवान राम का साक्षात चरण को धोने को मिल गया है, और हम ब्राह्मण होकर कर क्या लिया, बोलो कर क्या लिया? तो भगवान का भक्त होना जरूरी है, भगवान के आश्रय में रहना जरूरी है, भगवान परित्याग नहीं करेंगे, ये विश्वास के साथ शंकराचार्य जी ये श्लोक कह रहे हैं। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। जड़ता पशुता कलंकिता अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसि तुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोस्ति। अरहसि रहसि, चाहे एकांत में हो चाहे भीड़ में हो, अरहसि माने भीड़, रहस्य माने एकांत। भगवान का भजन, भगवान का ध्यान चाहे एकांत में करो चाहे भीड़ में करो, अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया। स्वतंत्र बुद्धिया माने वृत्ति में, तुम्हारी बुद्धि वृत्ति में विजातीय वस्तु का प्रवेश न हो, स्वतंत्र बुद्धि। सजातीय प्रवाह हो, विजातीय विषय का प्रवेश न हो। विषय का प्रवेश हो गया तो पारतंत्र बुद्धि हो गई, स्वतंत्र बुद्धि। स्वतंत्र बुद्धि माने विषय से अविद्ध, विषयविद्ध बुद्धि पारतंत्र बुद्धि, विषय अविद्ध बुद्धि स्वतंत्र बुद्धि। बुद्धि जब स्वतंत्र होती है, विषय अविद्ध होती है, तब चाहे एकांत हो चाहे भीड़ भड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया, वरिवसि तुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति। वरिवसिता ध्यान, सेवा पूजा, ये देख लो। वरिवसिता, वरिवस्या, वरिवस्या माने पूजा आराधना, स्वतंत्र सुलभ प्रसन्न मूर्ति। तो स्वतंत्र बुद्धि होगी तो भगवान की जो प्रसन्न मूर्ति है वह सर्वत्र सुलभ होगी, चाहे भीड़ हो चाहे एकांत हो। बुद्धि जब विषय से विद्ध होती है तो एकांत में भी भगवान की प्रसन्न मूर्ति सुलभ नहीं होगा, वह दुर्लभ होगा। इसलिए बुद्धि विषय विद्ध न होकर शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम क्रियम, यही तो है सुलभ। अगणित फलदायक प्रभुर में, परमात्मा मेरे लिए अगणित फलदायक, कल्प वृक्ष हो जाएंगे। परमात्मा तो मेरे लिए कल्प वृक्ष है, अगणित, मैं जो चाहूंगा जितना चाहूंगा वो फल देने की क्षमता वाले हैं, सामर्थ्यता वाले हैं। मैं प्रभु, मेरे प्रभु मुझे अगणित फल दायक। जगत अधिको हृदि, जगत से अधिक है वो, जगत तो बहुत कम है, बहुत छोटा है, बहुत क्षुद्र है, और मेरे प्रभु मेरे परमात्मा जगत आदि को, और ऐसे परमात्मा हृदि मेरे ही हृदय में हमेशा सुलभ हो जाएंगे। राजशेखर वस्ती, राजाओं का भी सिर मोर भगवान शिव मेरे लिए सर्वत्र सुलभ होंगे। यह ध्यान की, भक्ति के साथ साथ ध्यान की प्रक्रिया है, उसी ध्यान को अब आगे 71वें श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी और स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: देखिए पतिव्रता स्त्री में इतना सामर्थ्य है कि सूर्य को भी स्तंभित कर सकती है, रोक सकती है। यह पातित व्रत का प्रभाव है। तो यदि हम जहां भी चाहे वहां पर चैतन्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर तीव्र भावना चाहिए। तीव्र भावना हो तो आप माता पिता के पिंड से, पति के पिंड से या जो है पाषाण खंड से भी भगवान को अभिव्यक्त कर लेते हैं। प्रहलाद जी की ऐसी तीव्र भावना थी कि तीव्र भावना के होने के कारण उसी परमात्मा को नरसिंहाकार रूप से पाषाण से अभिव्यक्त होना पड़ा। इसलिए यहां पर कह दिया कि जो सगुण साकार है वह सभी के द्वारा स्तुत है, बंद है और उसमें सबका मन लग जाता है, बुद्धि लग जाती है। निर्गुण निराकार में भले ही सबकी बुद्धि न लगे परंतु सगुण साकार में सबकी बुद्धि लग ही जाती है। ये संसार जो आप देख रहे हैं सब सगुण साकार परमात्मा का ही स्वरूप है। विश्वास न होता हो तो आप अजमा सकते हैं। यदि जिसको आप बहुत प्रिय मानते हैं उस प्रिय से आत्म ज्योति निकल जाए तो वह प्रिय प्रिय नहीं होता है, प्रिया प्रिया नहीं होती है। आप इसको कर दे कि मिट्टी का ढेर हो गया, शमशान में ले जाए।

का साक्षात्कार होता है और जब तक वह तत्व है तभी तक संसार का सारा व्यवहार चल रहा है। चाहे हम किसी को माताजी कहें, पिताजी कहें या पुत्र कहें, प्यारे कहें, कुछ भी शब्द का प्रयोग करें, उसी चैतन्य के होने से सारा प्रयोग हो रहा है। यदि आप किसी को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन के अंदर वही चैतन्य है, वही चैतन्य आपको दुश्मन रूप से दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार ये कहीं धरती, आकाश, पाताल, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, यदि आपने खेत में नींबू का बीज लगाया तो खट्टा फल होगा, आम का बीज लगाएंगे तो मीठा पौधा होगा। अंतर खेत में या सूर्य के रोशनी में नहीं, बीज में अंतर है। जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा, वैसा ही फल होगा। इसी प्रकार से सबके अंदर एक ही चैतन्य होने पर भी सबके संस्कार, वासना, प्रारब्ध कर्म के अलग अलग होने से अलग अलग प्रतीतियां होती हैं। ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये औपाधिक दोष है। उपाधि को हटा दे, सब तो चैतन्यमय ही है। परंतु यहाँ पर पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं, जो दूसरे श्लोक का प्रतिपाद्य विषय है, कि निर्गुण ब्रह्म में आसानी से किसी का मन बाणी नहीं लगता है। इसको गीता ने बतलाया है, अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्नम मनन्ति माम अबुद्धयः। और दूसरी जगह कहा कि अव्यक्त तत्व को पाना देवद्भिर देहधारियों के द्वारा बड़ा कठिन है। भले ही निर्गुण निराकार ब्रह्म साक्षात्कार अनुभूति में न आए, फिर भी उसकी महिमा इसी महिमन में ज्यादा गाई है। जिस प्रकार विद्यालय में, हाई स्कूल तक जो विद्यालय होते हैं, वहां पर जो टीचर विद्यार्थियों को खेल कूद सिखाता है, क्रिकेट है, टेनिस, बैडमिंटन है, उसको विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। परंतु जो अध्यापक अनुशासित करता हो, गणित पढ़ाता हो या विज्ञान पढ़ाता हो, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि जरा कठिन विषय है, उसमें मन बुद्धि को जबरन लगाना पड़ता है, या जो है अध्यापक के भय से विज्ञान या गणित की तैयारी करनी पड़ती है। परंतु खेल कुछ स्वाभाविक है, उसके सारे तारीफ करते हैं। ये तो हो गए विद्यार्थी की दृष्टि, परंतु विद्यालय के दृष्टि से उसके नियमानुसार जो विद्यालय का खेल कूद का टीचर है उसको कमजोर मानते हैं, उसका वेतन भी सबसे कम होता है, परंतु विद्यार्थी की दृष्टि से वही श्रेष्ठ है। और विद्यालय की दृष्टि से विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान ज्ञानी के दृष्टि से निर्गुण निराकार ब्रह्म को यहाँ पर श्रेष्ठता प्रदान किया है। और अज्ञानियों के दृष्टि से बतलाया कि भाई तुम निर्गुण निराकार को समझ नहीं सकते, इसलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म की भावना करके कहीं से भी चैतन्य को अभिव्यक्त कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर कई दृष्टांत को देकर समझाया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा श्लोक उच्चारण कर ले। मधुस्फीतावाच परममृतम निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुर गुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतं वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तीसरे श्लोक में बतला रहे हैं कि ये जो मैं स्तुति कर रहा हूँ, स्तुति क्यों कर रहा हूँ? जब आप मन वाणी के विषय नहीं है निर्गुण निराकार रूप से, और सगुण साकार रूप से सब कुछ आप ही हैं, तो स्तुति क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए? यहाँ बतला रहे हैं कि मैं आपके गुण कथन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। मधुस्फीता वाचः,

0: स्फीता वाचः का अर्थ, वाचः बोलते हैं वेद को, आपने ही मधु से सने हुए वेद वाणी को जो सर्वोत्कृष्ट है उसको आपने उत्पन्न किया, जिसकी अध्येता अमृत तत्व को उपलब्ध होते हैं। इसलिए हे ब्रह्मन, आपको सुर गुरु बोलते हैं बृहस्पति को, देवताओं के गुरु बृहस्पति की वाणी भी स्तुति भी आपको आश्चर्यचकित नहीं कर सकती है, फिर मैं मुझ जैसे क्षुद्र व्यक्ति की स्तुति आपको कैसे आश्चर्य में डाल सकती है। मम त्वेतां वाणी, ये जो हमारी वाणी है, भवतः आपके गुण कथन पुण्येन पुनामि, गुणों का कथन करके पवित्र कर रहा हूँ, अपने बुद्धि को अपनी वाणी को गुणगान के द्वारा मैं केवल पवित्र कर रहा हूँ। हे पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता, और हमारी बुद्धि आप में लगी रहे इस प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार से तीसरे में सार्थकता बदलाया कि हम क्यों जो है भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य का अंधकार दूर नहीं होता, प्रत्युत हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारे शुद्ध भाव उदित होते हैं। इसी प्रकार से मैं भी स्तुति के द्वारा अपने वाणी को मन को बुद्धि को पवित्र कर रहा हूँ, क्योंकि शुद्ध मन के द्वारा ही आपका दर्शन होता है। अब चौथा श्लोक देख ले। तवैश्वर्यं यत्तद् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत् त्रैवस्तु व्यस्तम् तिसृषु गुण भिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिम् विदधत इहैके जडधिय। तवैश्वर्यम्, तव हे परमेश्वर, आपके ऐश्वर्य कैसे हैं तो बतला रहे हैं, जिस ऐश्वर्य से जगत का उदय, उदय बोलते उत्पत्ति, और रक्षा पालन और प्रलय होता है। जिस प्रकार से एक ही परमाणु से, न्यूक्लियर जो आजकल चल रहा है ना, बहुत बड़ा विचार है, एक ही परमाणु से हमारे आजीविका के संसाधन विद्युत ऊर्जा भी तैयार होती है, और उसी के द्वारा हमारे जीवन के समाज के देश को विनष्ट करने वाले एटम बम परमाणु बम भी तैयार होते हैं, दोनों है। आप उससे आजीविका के संसाधन भी तैयार कर सकते हैं और साथ में रक्षा के संसाधन ही बना सकते हैं और विनाशक हथियार भी, एक ही ऊर्जा है। इसी प्रकार से आपके ऐश्वर्य से संसार की उत्पत्ति होती है, रक्षा होता है, और आपके ही कोप से संसार का प्रलय होता है। एक बार महर्षि पिपलाद की बचपन की घटना है, जब पिपलाद 12 वर्ष के थे तो उनके मामा ने कहा कि तू बार बार अपने नाना को पिताजी क्यों कहता है, क्योंकि पिपलाद के पिताजी का शरीर बचपन में ही छूट गया था। शरीर छूटने के बाद पिपलाद अपने माँ के साथ मामा के घर रहते थे, तो छोटी अवस्था थी और हमेशा जो है अपने नाना को पिताजी पिताजी कह करके पुकारते थे। जब मामा ने इस प्रकार से कहा कि तू अपने नाना को पिताजी पिताजी क्यों कहता है, तो अपनी माँ से पूछे कि माँ तू सच बता, ये हमारे मामा लोग हमें क्यों फटकारते हैं बार बार, क्यों समझाते हैं कि तू इनको नाना जी कह, तेरे पिताजी नहीं है, तो आखिर हमारे पिताजी कौन है। माँ ने कहा कि जब तू 5 वर्ष का था तभी तेरे पिता देवताओं के हित के लिए अपने शरीर को त्याग कर दिए, दधीची ऋषि अपने शरीर को त्याग कर दिए, उसके द्वारा वज्र बना। अब इस बात को सुनने के बाद पिपलाद को बहुत क्रोध हुआ, बोले देवता इतने स्वार्थी कि अपने स्वार्थ के लिए हमारे पिता के शरीर को को याचना में मांग लिया और उससे जो है अस्त्र शस्त्रों को तैयार किया। मैं तपस्या करके देवताओं को नष्ट कर दूंगा। मां ने बहुत समझाया ये काम तेरा ठीक नहीं, पर छोटी अवस्था 12 वर्ष की माने नहीं। मां से भगवान शंकर की उपासना की पद्धति सीखा। सीखने के बाद सीधा कैलाश पर्वत गए, वहां जाकर घनघोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद कहा तू वरदान मांग। यही वरदान मांगा कि आप जिस शक्ति से संसार को नष्ट करते हैं, महाप्रलय मचाते हैं, वही शक्ति हमें प्रदान करो। भगवान शंकर ने कहा तू शक्ति लेके क्या करेगा। पिपलाद ने कहा कि मैं देवताओं को नष्ट करना चाहता हूं। भगवान शंकर पूछे देवताओं को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। वो लेकिन देवताओं ने हमारे पिता को अपने स्वार्थ के लिए जो है इनका शरीर जो है नष्ट करके अस्त्र शस्त्र का तैयार किया, इसलिए मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं। महादेव ने बहुत समझाया कि तेरी यातना ठीक नहीं है, इससे तेरा ही नाश होगा, परंतु माने नहीं। तो महादेव ने कहा ठीक, ऐसा करो कि तुम आंख बंद कर बैठ जाओ, मैं तुझे पहले थोड़ी शक्ति देता हूं, इसका प्रयोग करके देखना। भगवान शंकर के सामने पिपलाद बैठ गए आंख बंद करके। भगवान शंकर ने कहा तू तैयार हो जा, मैं तुझे अपनी संहारक शक्ति देता हूं जिससे मैं दुनिया का संहार करता हूं। बस जैसे पिपलाद आंख बंद किए, जब देवताओं का नाश करना है, सबसे पहले सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर जो इंद्र का नष्ट करना है, बस नष्ट करने की भावना आई कि उनकी आंखें जलने लगी, कान जो फटने लगे, थोड़ा शरीर टूटने लगा, दो से चिल्लाए बचाओ बचाओ। महादेव ने कहा क्या हुआ, तू तो संहारक शक्ति ले रहा था, इतने से घबरा गया। पिपलाद ने पूछा कि मैं तो आपसे संहारक शक्ति मांग रहा था, जैसे आप संहार करते हैं, आप तो उल्टा हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा यह जो तेरी आंख है, इस तेरी आंख के समष्टि देवता भगवान सूर्य हैं। ये जो तेरा कान है, इस कान की समष्टि दिक् देवता है। तेरे हाथ के समष्टि देवता इंद्र हैं। तो जब तू उनको नष्ट करेगा तो तू कहां बचेगा। उसी समष्टि का अंश तेरी आंख, नाक, कान, त्वचा, हस्त, पाद, पायु उपस्थित है। पिपलाद ने पूछा तो फिर आप कैसे संसार का नाश करते हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं व्यष्टि भाव में नहीं रहता हूं, जैसे मैं समष्टि भाव में हूं वैसे तू भी समष्टि भाव में हो जाएगा तो सब कुछ कर सकता है। पहले तो व्यष्टि भाव को त्याग, व्यष्टि मन लगी यह मैं हूं, इसका नाम व्यष्टि भाव है। समष्टि का सर्वात्म भाव, तो पहले तो व्यष्टि भाव को छोड़ कि मैं यह पिपलाद ऋषि हूं, इस भाव को छोड़ने के बाद समष्टि भाव को प्राप्त करेगा, तब जाकर यह शक्ति तू पचा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग व्यष्टि में जीना चाहते हैं और व्यष्टि के द्वारा उस सर्वात्म भाव की अनुभूति असंभव है। व्यष्टि का तात्पर्य है कि सीमित अहंता, जो अपने आप को हम लोग मैं मानकर चल रहे हैं, कि जब तक हमारे अंदर मैं मन लगे कि मैं जो है अमुक भाई हूं, अमुक लाल हूं, ये जो नाम रूप का व्यष्टि भावना है, तब तक समष्टि का भूमा सर्वात्म सुख की अनुभूति असंभव है। हालांकि सुसुप्ति में कुछ समय के लिए व्यष्टि भाव नष्ट हो जाता है, विलय हो जाता है, तो विलय होने के बाद उस समय समष्टि सुख सर्वात्म सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य बतला रहे हैं उसी भगवान के ऐश्वर्य शक्ति को लेकर संसार का सृजन पालन संहार होता है। त्रैवस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु। त्रय बोलते वेद को, हालांकि वेद चार हैं, पर वेद के लिए त्रय शब्द का प्रयोग होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये वेद तीन ही था, बाद में अथर्ववेद हुआ, पर बिल्कुल ये जो है ना नासमझी व्याख्यान है, क्योंकि त्रयी शब्द का तात्पर्य त्रय प्रतिपादकत्वात् त्रयी पदेन वेद उच्यते। इस प्रकार से वेद की व्याख्याता सायण ने व्याख्यान किया है। त्रय मल्लय की कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इन तीनों का वेद व्याख्याता है, इसलिए वेद को त्रयी शब्द से कहा जाता है। तो त्रयी मल्लय की वेद में आग का स्वरूप व्यस्तम का अर्थ है, अनेक रूप से प्रतिपादित है। अनेक रूप से तात्पर्य है कि आप ही इंद्र बनकर शासन करते हैं, सूर्य बनकर के प्रकाश करते हैं, चंद्रमा बनकर औषधियों का पोषण करते हैं। इस प्रकार से आप का स्वरूप वेद में तरह तरह से प्रतिपादित है। तीसरी सुगुण भिन्नास तनुषु, और तीनों गुणों के द्वारा अनेक स्वरूप आपके हैं। सत्य प्रधान देवता है, रजस प्रधान मनुष्य है, तमस प्रधान दैत्य है, तो इन सब में आपका ही स्वरूप अभिव्यक्त होता है। अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयाम रमणीम विहंतुम व्याक्रोशीम विदधत इहैके जडधिय। अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयाम अभव्यानाम अरमणीम विहंतुम व्याक्रोशीम जडधिय इह एके विदधत, ऐसा में करना कि आपका जो बहुत सुंदर रमणीय कमनीय स्वरूप है, उस कमनीय रमणीय स्वरूप में भी कुछ भाग्यहीन, अभव्य बोलते भाग्यहीन मनुष्य विहंतुम व्याक्रोशीम, जो जड बुद्धि वाले हैं उसका खंडन करना चाहते हैं, निराकरण करना करते हैं। इसलिए निराकरण करते हैं कि जो परमात्मा का दो स्वरूप निर्गुण निराकार अपरिच्छिन्न है, और दूसरा है परिच्छिन्न सगुण साकार। यदि हम किसी के सामने अपरिच्छिन्न निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करें तो कहता है कि हमें समझ में नहीं आता है, अनुभूति के पथ में नहीं आता है, और यदि आप सगुण साकार का वर्णन करो तो बोलता है कि इसमें तो सारे दोष ही दोष है, हमें इनमें क्या अंतर। लोग कहते हैं ना सीधा सबके अंदर दोष दिखाई पड़ेगा, तो सगुण साकार के अंदर तो आपको दोष दिखाई पड़ेगा कि जैसे मैं वैसे ये भगवान है, और निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता है तो आखिर में किस प्रकार से उपदेश करें। तो जो जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जड़ बुद्धि वाले, उस कमनीय रमणीय भगवान भी दोष दर्शन किया करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो राम कृष्ण को अवतारी न मानकर सिर्फ महापुरुष मानते हैं, ऐसी मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, कहते हैं कि जैसे हम वैसे राम और कृष्ण हुए, और उन्होंने भी अपना कार्य किया, हमने भी किया, इतना अंतर कि हमसे उनमें बहुत ज्यादा सामर्थ और शक्ति थी। विचार कीजिए, अपरिच्छिन्न रूप को तो समझ नहीं सके, और वही अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न रूप से बनकर समझाने आया, उसमें भी गुण दोष बुद्धि हो जाने के कारण से सन्मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए कहा कि हे बरद, बरद मतलब कि सबको आप वरदान देने वाले हैं। बरद केवल यहाँ पर भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया, वरम ददाति वरद, वर बोलते श्रेष्ठ, जो हमेशा श्रेष्ठ अच्छी चीज को प्रदान करे उसका नाम है वरद। आप भगवान शंकर की थोड़ी उपासना करो, कुछ भी मांग लो, भोले बाबा कोई विचार भी नहीं करते कि मैं जो है किसको क्या दे रहा हूं। भस्मासुर भगवान शंकर की बहुत उपासना की, उपासना के बाद जब भगवान शंकर ने कहा तू वरदान मांग, तो क्या मांगा, जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वह जलकर राख हो जाए। भगवान कहे तथास्तु। वरदान पाने के बाद कुछ क्षण तक विचारता रहा कि भगवान शंकर संसार में पूज्य क्यों है, क्योंकि इनके पास पार्वती जी हैं। यदि मैं इनको भस्म करके पार्वती को अपना लूं तो मैं भी जगत बंदी हो जाऊंगा, जगत में पूजित हो जाऊंगा। भगवान शंकर की तरफ दौड़ा,
1: तो ये भोले बाबा ऐसे है ना कि विचार नहीं करते किसको क्या देना, इसलिए बरद कह दिया। रमणीयम अरमणीम बुद्धि विदता जडधिय। एक बुढ़िया माता थी, उसने भगवान शंकर की उपासना की। उपासना करने के बाद उसने वरदान में भगवान शंकर से कुछ चीज मांगी। भगवान शंकर ने कहा देख तेरी उपासना थोड़ी है, तू एक वाक्य में एक ही वरदान केवल मांग सकती है। बुढ़िया माँ ने कहा यार समय दीजिए विचारने का, विचार कर बताऊंगी। भगवान शंकर एक दिन का पूरा समय दे दिए, एक दिन तक विचारती रहे कि एक ही वाक्य में क्या वरदान मांगे। सबसे परामर्श किया, दूसरे दिन गई, भगवान शंकर ने कहा कि तू विचार कर आ गई, तुझे क्या मांगना है बता। बुढ़िया माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक ही वरदान मांगती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरी में दूध भात खाता हुआ देखूं। सब मांग लिया। पोता बिना पुत्र के पोता नहीं होगा, मतलब कि वो दूसरी पीढ़ी मांग ली। और बिना धन के सोना का कटोरी कहाँ से आएगा, अब बिना गाय के दूध भात नहीं मिलेगा। देखिए गोधन मांग लिया, सुवर्ण द्रव्य सुवर्ण धन मांग लिया, आंख भी मांग लिया और पुत्र पौत्री मांग लिया। ये समझो वाक चातुरी है। परंतु भगवान शंकर भोले हैं, अवगढ़ दानी कुछ भी सबको दे देते हैं, स्वयं तो शमशान में रखते हैं पास में कुछ नहीं। इसलिए नहीं रखते पास में क्योंकि अर्थो ही अनर्थाय भवती, शास्त्र का वचन है। ये जितना भी अर्थ है ना, इस अर्थ की परिणति अंत में अनर्थाय। इसलिए भगवान शंकर हमेशा शमशान में निर्विषयक हैं, परंतु प्रार्थना करने वाले कुछ सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान शंकर अवहरदानी हैं। फिर भी ऐसे दिव्य कमनीय स्वरूप का भी ये जड़ बुद्धि वाले उसका निराकरण खंडन तरह तरह से किया करते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्रुति कहती है कि उनके लिए हमें खेद है, क्योंकि श्रुति माता के समान है। जैसे माता चाहे कैसा ही पुत्र हो, माता का हृदय बहुत कोमल होता है, अपने पुत्र का कभी माँ अनिष्ट नहीं चाहती है। पुत्र हमेशा माँ को डांटता है, फटकारता है, कड़वाल बोलता है, फिर भी माँ सह लेती है। माँ को ही पता है कि पुत्र को इतना बड़ा बनाने में कितनी तकलीफ कितनी तपस्या करनी पड़ती है। बेटे तो तुरंत कह देते माँ से तूने तो अपना कर्तव्य का पालन किया। पिता को भी बोल देते हैं कि पिता आप तो केवल 500 महीना कमाते थे, देखो मैं आज 1,00,000 महीना कमा रहा हूँ। आजकल के बेटे ऐसा आरोप करते हैं ना, पर वास्तव में उस पिता ने 500 रुपया महीना कमाकर कितनी तपस्या करके तुम्हें पढ़ाया, पढ़ा करके आज तुम्हें इतना योग्य बना कि आप 1,00,000 महीना कमा रहे, इस बात को तो बिल्कुल सोचता ही नहीं। इतनी जड़ बुद्धि हो गई कि माता पिता के उस कृतज्ञता को बिल्कुल भूल जाता है, उल्टे उलाहना देता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। ऐसे ही ये जो संसार है, भगवान शंकर से उत्पन्न हुए, वही पालन किए, रक्षा कर रहे हैं। पर जड़ बुद्धि वाले कहते कि बस मंदिर में पाषाण की तरह बैठे, ये तो जड़ है, इसकी पूजा करने से क्या होता है। इसलिए उनको यहाँ पर जडधिया दंताचार्य ने कहा है। अब आगे जो है ये जगत के विषय में दार्शनिक चिंतन आएगा, कल से ये ऐतिहासिक विषय कम है, अधिक दार्शनिक होगा, इसलिए कल से जरा सावधान से सुनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 12.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Bhakti Shakti Samhita Vatsal Mahi Matao Snevai Veheno Atma Sarup Bandhu. Taittiriya Upanishad ko lekar ke prasang chal raha hai, jiske antargat ye sanket kiya rishi ne कि जिन पूर्व आचार्यों ने, पूर्व ऋषियों ने उस वेदांत के सार को, वेदांत के रहस्य को पद वाक्य प्रमाणों के द्वारा हमको बतलाया या हमसे कहा, ऐसे उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उनको नमस्कार करते हैं। ये संकेत किया। आज आप लोग नव वर्ष का प्रारंभ मानते हो। नव वर्ष क्या है तो आप जानते हो, नव शब्द संख्या का वाचक लें तो नौ हो जाएगा, और नूतनता का वाचक जब लेते हैं तो नयापन। और वर्ष शब्द का अर्थ क्या है तो पुराणों में आप देखते हो भारत वर्ष, और वहीं कहा भारत खंड। वर्ष शब्द का अर्थ होता है खंड। वर्ष शब्द का अर्थ क्या है? खंड। तो अब नव माने नया, और उस वर्ष शब्द का अर्थ ले लें खंड तो नया खंड। खंड माने क्या है? दूसरी तरफ आपको क्या बोलते हो? अखंड। क्या बोलते हो? अखंड माने जिसमें कोई विभाग नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई खंड नहीं, उसे क्या कहते हो? अखंड। जो सदा एक रस रहने वाला है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, उसे आप कहते हो अखंड। और जो परिवर्तनीय है, परिवर्धनीय है, संवर्धनीय है, उसे क्या कहते हो? खंड कहते हो। तो अब जो है नया खंड, नया वर्ष, और वो नया खंड परवर्धित हो, संवर्धित हो, इसके लिए आप लोग क्या करते हो? नव वर्ष को मनाते हो। तो अब जो है नव वर्ष का हमारा प्रारंभ कैसा हो तो कहने लगे, जिसमें नवता हो, नवीनता हो, नूतनता हो। और नवीनता क्या है? कहां रहती है नवीनता? ये नूतनता कहां रहती? तो नूतनता के लिए यदि शास्त्र के अनुसार विचार करें तो शास्त्र कहता है तदेव रूपम रमणीयताया। कहने लगे कौन सा रूप या कौन सा पदार्थ रमणीय है, जिसमें रमणीयता हो? तो कैसे? तो और संकेत उसमें जोड़ा, क्षणं क्षणं यद् नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण प्रतिक्षण जिसमें एक नूतनता की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? कहा उसी को रमणीय कहते हैं, नव कहते हैं, नूतन कहते हैं और सुंदर कहते हैं। हम बोलते तो हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब जो है ये नववर्ष, यह रमणीयता हमें प्राप्त हो और प्रतिक्षण प्राप्त हो। क्या होना चाहिए? प्रतिक्षण जहां पर हमें नवीनता प्राप्त हो, रमणीयता प्राप्त हो, तो उसे कहते हैं क्या? नवो। रमणीयता का मतलब क्या? रमण करने योग्य। जहां पर प्रतिक्षण हमें हमारा जहां पर नवीन नवीन रमण हो, नवीन नवीन रति उसमें हो, उसे कहते हैं नवो। इस साहित्यकारों ने इसे लक्षण किया। तो अब नव वर्ष हमारा रमणीय कैसे हो, नूतन कैसे हो, संवर्धित प्रवर्धित कैसे हो, तो इस पर जब विचार करोगे तो ये कैसे होगा? तो है तो वर्ष, हमने उसे खंड कर लिया, और खंड किसका है? तो खंड हमने किया है काल का। किसका खंड किया है? काल का, जो हमारा यहां अभिप्रेत। काल को हमने खंड करके देखा है? रात कह दी, दिन कह दिया, मास कह दिया, और मास के समुदाय को हमने वर्ष कह दिया, और वर्ष के भी समुदाय को फिर संवत्सर आदि कह देते। इस प्रकार से क्रम से आप चलते हो तो इनमें तो सब में जितने भी आप खंड हो तो खंड परिवर्तित भी होते हैं, संवर्धित भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थल है जहां पर इसका खंड किया जा, तो वो कौन है? तो जिसको सामान्य शब्द में काल कह देते हो। इसलिए नैयायिकों ने लक्षण किया कि जितना भी ये खंड सह संसार है, जगत है, उस जगत का आधार क्या है, उस जगत का आश्रय क्या है? तो क्या संकेत किया? जन्या नाम जनको काला। जितने भी पदार्थ जन्य हैं, उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का आधार क्या है, आश्रय क्या है? तो कहने लगे काल। हम भूतों की दृष्टि से विचार करते हैं तो पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश। लेकिन यहां कह रहे नहीं, आकाश से भी सूक्ष्म है। कौन है? काल। काल जो है वो क्या है? आकाश से भी सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि आकाश के लिए तो पंचभूत में उसकी गणना करते हुए संकेत किया कि आकाश भी उत्पन्न हुआ। आप श्रुति में सुनते हो, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः। और नैयायिकों ने लक्षण कर दिया कि जन्या नाम जनको काला। काला जगदाधारः। काल जो है सारे जगत का आधार है, आश्रय है, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो किसी न किसी काल में ही तो हुआ। आकाश हुआ उस समय कोई काल था कि नहीं? तो काल जो है वो क्या है? आकाश से भी सूक्ष्म। अब उस काल को जो सबका आश्रय है, जितना भी जगत है उस सबका आश्रय, तो सारा जगत कहां होने वाला है? तो सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय कहां हो रहा है? काल के आश्रय में हो रहा है। लय भी काल में, स्थिति भी काल में, और उसका उत्पन्न होना भी काल। अब जिस समय स्थिति नहीं है, उत्पत्ति नहीं है और लय नहीं है, उस समय काल है कि नहीं? का काल तो है, काल का भाव नहीं, उसमें सब काल है। तो हमारी जागृत अवस्था भी कब है? तो किसी समय में ही तो है। एक काल विशेष की हमने परिगणना कर दी और उसमें व्यवहार विशेष की परिगणना कर दी, उसका नाम क्या रखा? जागृत अवस्था। और जहां पर उस जागृत का व्यवहार नहीं हो रहा है तो उसका अभाव भी है, तो वहां हमने क्या कह दिया? स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था भी किसी काल विशेष में, और जहां पर हमने जागृत स्वप्न दोनों का लय मान लिया, जिसे हमने सुसुप्ति कह दिया, तो वो भी सुसुप्ति काल है, वो भी एक अवस्था, इसलिए कहलाई। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि भी जिसके अंतर्गत विद्यमान है, उत्पत्ति स्थिति लय भी जिसके अंदर विद्यमान, वो कौन है? कहा काल। काल ही सबका आश्रय है, लेकिन हम उस काल को सर्वांगीण रूप से जानते नहीं। कैसे जानते हैं? हम खंड से जानते हैं, रात के रूप में, दिन के रूप में, उत्पत्ति का काल है, स्थिति का काल, और जो है लय का काल। स्थिति का काल, हम इतने वर्ष के हो गए, ये सब बोलते हो। फिर नहीं तो उसको जो है हमने भूतकाल में कर दिया, माने उसके में जो है वो भूत हो गया। भूत हो गया का मतलब अब जिसकी प्रतीति नहीं रह गई, जिसकी सत्ता नहीं रहेगी, ये सब बोलते हो। तो अब यहां पर ये विचार करना है कि सबका आश्रय जो काल, और उस काल को ही हम नवीन रूप देना चाहते हैं, उसके नए रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन काल के नए रूप को तो देखना चाहते हैं, लेकिन उसके एक अंश को लेकर, उसका विभाग करके, उसका खंड करके, तब तो नव वर्ष कहोगे, तो वर्ष शब्द का अर्थ खंड है। तो अब जो है यहां विचार करो कि इसमें जो खंड है, इस खंड में भी वह नूतनता आ जाए, वह नवीनता आ जाएगी। नवीनता आ जाए तो नवीनता का अर्थ कर दिया कि जो सदा रमणीय रहे, और जो सदा रमणीय होगा वो सुखद होगा कि दुखद होगा? सुखद होगा, अर्थात जो सदा हमारे को सुख का संवर्धन करता रहे, जिसमें हमारे में कभी भी जो है दुख ना आए, यही लक्ष्य है। तो ऐसा नव वर्ष हो, अब वो नव वर्ष कब नव होगा, कब नया होगा? केवल जो है उसकी समाप्ति और उत्पत्ति मान लेने से उसमें नवीनता नहीं आएगी, केवल उसके परिसमापन और शुरुआत को लेकर के इतना ही हम मान के चलेंगे तो उसमें नवीनता या रमणीयता नहीं है। वो सदा रमणीय वह काल हमारा बना रहे, उस काल में कभी भी जो है दुख की स्थिति न आवे, सुखद वह काल बना रहे। तो जो भी हमारा खंड है, जो भी हमारा काल है, वो सुखद रहे। तो उसे सुखद बनाने के लिए क्या उपाय, और उसी के उपाय करने के लिए हम सब लोग हैं, शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं, शुभकामना करते हैं कि हमारा जो काल है वो कैसा हो? सुखद हो, सुख देने वाला हो। तो ये सुख देने वाला कब होगा, अब विचार ये करना है। ये हमारे लिए काल जो है सुखद हो, हमारे जीवन में दुख ना आए, अर्थात हमारे वर्ष में दुख ना आए, हमारा वर्ष जो है साधनों से संपन्न रहे, और साधनों के द्वारा संपन्नता को लेकर के हम सुख की शांति की अनुभूति करते हैं। तात्पर्य वो कब होगा, तब विचार करना होगा। इसके लिए खंड में भी हमें उस अखंड का विचार करना होगा। जब तक हम अखंड के विचार को नहीं करेंगे, तब तक हम खंड को सुखद बना सकते नहीं, नूतन बना सकते नहीं। और अखंड का यदि विचार कर लिया जाए, अखंड को पहचान लिया जाए, तो हमारा खंड भी क्या हो जाएगा? कहा खंड भी हमारा जो है आनंद देने वाला हो जाएगा, सुख देने वाला हो जाएगा। अब आप देखो, हमने एक खंड अपने जीवन का क्या किया? जागृत अवस्था, एक खंड किया स्वप्न अवस्था, और एक खंड किया सुसुप्ति अवस्था। ये क्या है? ये हमारे जीवन के खंड हैं। जागृत अवस्था एक खंड, विभाग कर दिया, विभाजन कर दिया। एक तो जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है, तीसरी सुसुप्ति। सुसुप्ति जागृत नहीं है, जागृत सुसुप्ति नहीं, दोनों को अलग कर दिया। अब जो है स्वप्न इसी प्रकार से, तो अब हम चाहते ये हैं कि जागृत भी सुखरूप हो, स्वप्न भी सुखरूप हो और सुसुप्ति भी सुखरूप। और यदि सुखरूप हो गई तब तो हमारी नव वर्ष जो है सुखद हो गई। अब कैसे होगी, तो क्या विचार करना होगा, इसके लिए विचार ये करना होगा और श्रुतियों में इसके विचार आए। याज्ञवल्क जनक आदि का प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा ग्रहणीय है, वहां पर भी ये सारी चर्चा उन्होंने इन अवस्थाओं को लेके की। तो अब आप विचार करो कि जागृत में क्या स्थिति है, कहा हमारा मैं, और फिर उस मैं को लेकर के है मम आदि सारे और संकल्प विकल्प आदि ये सब जो है होते हैं, और उसको लेकर के कहीं पर सुख होता है कहीं पर दुख होता है। स्वप्न के अंतर्गत भी भले ही अविद्यात्मक स्थिति हो लेकिन वहां पर भी एक नवीन मय होता है, और वहां भी क्या होता, संकल्प विकल्प आदि वहां भी होते और सुख दुख वहां भी होता। लेकिन वहीं पर जो अवस्था तीसरी है सुसुप्ति की, वहां क्या होता, जागृत में पाप भी है, जागृत में पुण्य भी है, शुभ अशुभ है, ये सब है। स्वप्न में भी पाप पुण्य और शुभ अशुभ की स्थिति होती है, लेकिन वहीं पर सुसुप्ति के अंतर्गत कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है, क्या दुख है और क्या सुख है, वहां पर जो है आप देखेंगे तो वहां पर कोई सुख भी नहीं है और कोई दुख भी, जिसे हमने सुख समझा हो जागृत का जो सुख हमारा, तो वो ऐसा वहां सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं, पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं, चोर भी नहीं है और अचोर भी नहीं, कि है सुसुप्ति। जागृत में ये सब दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी ये संभव है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत चोर अचोर पाप पुण्य सुख दुख शत्रु मित्र है पिता पुत्र गुरु शिष्य भाई भाई, ये कोई भी धर्म है वहां क्या, सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत ये कुछ भी नहीं। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में क्या होता, संप्रसाद उसे बृहदारण्यक में कहा, वो अवस्था को नाम क्या रख दिया, संप्रसाद, माने वहां पर सम्यक प्रसाद है। सम्यक प्रसाद माने जैसा प्रसाद होना चाहिए वैसा प्रसाद, ठीक प्रसाद यथा प्रसाद, और प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता सुख, यही मानना पड़ेगा। तो अब जो है वहां पर ये सब है लेकिन कब है, तो क्या कहोगे, ये वहां तब है जहां हमने जो खंड किए थे उन खंडों का वहां अभाव, अहम तुम है मेरा तेरा, ये कोई खंड नहीं, पाप पुण्य शुभ अशुभ चोर अचोर शत्रु मित्र, ये जो हमने विभाजन किया था वो सुसुप्ति के अंदर कोई भी विभाजन नहीं। और ये शरीर तो है, ये शरीर है कि नहीं, जो जागृत में शरीर था जो स्वप्न में शरीर था वो शरीर वहां है अथवा नहीं, तो कहने लगे जागृत का शरीर तो वहां है लेकिन शरीर होते हुए जागृत के शत्रु वहां नहीं है, जागृत के मित्र वहां नहीं है। और तो जाने दो, एक व्यक्ति जिसका ऑपरेशन कर दिया गया और उस ऑपरेशन के कारण उसको भयंकर पीड़ा हो रही और से सहन नहीं हो रहा, ये कब का, जागृत अवस्था, लेकिन जब उसको निद्रा आ गई, सुसुप्ति में चला गया, तो शरीर है, वो घाव भी है, लेकिन जिस दर्द का अनुभव हो रहा था, जिस दर्द को लेके व्याकुल हो रहा था, क्या सुसुप्ति में वह व्याकुल हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? शरीर तो है, वो घाव भी है, तो दर्द होना चाहिए, उससे उसे दुखी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? यही कहोगे कि वहां पर जो मैं था वो जागृत का जो मैं था वो मैं नहीं, लेकिन मैं है वहां, लेकिन कौन सा मैं नहीं है? जागृत का जो मैं था वो जागृत का मैं नहीं। अब जागृत का मैं नहीं तो कौन सा मैं? सत्ता रूप मैं तो वो जागृत वाला ही है, लेकिन आरोपित जो मैं जागृत का था वो मैं वहां नहीं है। ये मैं भी क्या है? मैं भी एक वस्त्र है, मैं एक वस्त्र है, और इसको धारण कर लिया, लेकिन इस मैं रूपी वस्त्र को जब उतार दिया तो उस मैं रूपी वस्त्र से होने वाला कार्य भी समाप्त हो गया। लेकिन वस्त्र को धारण करने वाला जो था वो वहां है कि नहीं? वो तो है। जिसने वस्त्र को धारण किया था वो वहां विद्यमान है, और वो विद्यमान है तो उसमें क्या स्थिति? कहने लगे उसमें न शुभ है और उसमें न अशुभ है, न उसमें शत्रुता है न उसमें मित्रता है। ये हम सभी लोग अहर्निश अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव करते हुए भी उस अनुभव का जो है अपने में निश्चय नहीं कर पाते। फर्क क्या है? अनुभव करते हैं लेकिन अनुभव के अनुकूल हमारा निश्चय नहीं होता। उस अनुभव के अनुकूल यदि जागृत में निश्चय हो जाए तो जागृत में भी वह नूतनता आ जाएगी, शत्रु में भी नूतनता रहेगी, मित्र में भी नूतनता रहेगी, चोर अचोर में भी नूतनता आ जाएगी, है ना? लेकिन वह अनुभव जो है वो हमारे निश्चय में आता, जब तक अनुभव निश्चय में नहीं आता है तब तक जो है हमारे लिए क्या रहे? यह नवीनता, यह रमणीयता हमारे लिए आना कठिन है। अब हम गीता को लेकर के बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने हैं, ये किसके किस समय के लिए कहा? जागृत अवस्था के लिए तो कहा है, व्यावहारिक स्थिति में ही तो कहा है। तो अब जो है ये समत्व हमारा आ जाए। कहा ये समत्व क्या है? समत्व ये नहीं है जैसा आज लोग हम करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सभी ब्रह्म हैं, सभी आत्मा हैं, लेकिन यही कह करके वो फिर भेद खड़ा कर लेते हैं, ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है। सुसुप्ति में कोई ज्ञानी अज्ञानी दिखाई देता? कोई भेद नहीं। तो क्या है वहां? वहां पर जो है एक जो है समक नाम जो गीता में भगवान ने और स्पष्ट कर दिया, समो ही ब्रह्म। सम क्या है? कहा ब्रह्म है। तो वहां एक आत्मसत्ता के अतिरिक्त, ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई निश्चय वहां है नहीं, अन्य कोई दृष्टि है वहां नहीं। तब वहां पर क्या होता? तो वहां शत्रुता भी नहीं है और मित्रता भी नहीं। लेकिन हमारी ये दृष्टि क्या उस गौ में बनती है, क्या उस हाथी में बनती है? नहीं बन पाती। कहने लगे ये बनेगी कैसे? हाथी हाथी होता है, गौ गौ होती, बनेगी? उसके बनने का उपाय क्या? उसके बनने का उपाय ये है कि जो हमने चर्चा की ईसावास में आपने पढ़ा होगा, अंधम तमा प्रविशंति, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? तो अविद्यायां, जो अविद्या की उपासना करते हैं या अविद्या में रत रहते हैं, अविद्या में रमणीयता है जिनकी, अविद्या में व्यवहार हो रहा है जिनका यह, तो वो क्या है? का अंधकार में ही प्रवेश करते, ये सब कह दिया। और फिर बाद में क्या कह दिया? कहने लगे वो भी है तमो, कौन? कहा जो विद्यायां रता, जो विद्या में रत है, कहा वो भी अंधकार में। ये क्या मतलब? और फिर क्या कहा? यस तम वेदो उभय सब, विद्या और अविद्या को, दोनों को जो एक साथ जानता है, ध्यान देना, विद्या को और अविद्या को जो एक साथ जानने वाला है, तो कहने लगे वो क्या कर लेता है? तो कह देगी अविद्या के द्वारा मृत्यु के पार हो जाता और विद्या के द्वारा का अमृत का स्नान करता, संकेत किया वह। तो अब जो है ये दोनों को एक साथ जानने वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अविद्या और एक विद्या, एक माता और एक विमाता, क्या कह दो? एक माता और एक विमाता। माता का कर्तव्य क्या है और विमाता का कर्तव्य क्या है? मान लीजिए जहां पर माता भी है विमाता भी है लेकिन पुत्र एक ही है, और वहां पुत्र किसका होगा? तो माता का ही होगा। अब जो माता का पुत्र होगा, लेकिन दोनों का कार्य क्या है? विद्या विद्या का वो संकेत करने के लिए। जैसे विमाता जो है वो क्या करेगी?

0: तो यही विद्या विद्या की बात।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Brahma Abrahma. Brahma Napunsak hai. Brahma Pulling hai. Brahma Brahmano Brahmana Pulling hai. Yaad rakhna. Yo Brahmanam Vidhati Purvam. Yo Vai Vedansa Prahinati Tasmai. उत्पन्न ब्रह्मा को पैदा करके जो वेद ज्ञान उसको स्थापना किया, इसी बात को भागवत में पहले आता है। जन्माद्यश जतु अन्नयाद इतरत अर्थेषु अभिज्ञसरा तेने ब्रह्मा ऋजा आदि कवये मुह्यन्ति जसुर। तेने विस्तार करते हैं ब्रह्मा आदि कवये आदि कवि आनी बात। आदि कवये आदि कवि कौन है? कहो के वाल्मीकि है। यह बोलते ना रामायण में मुह्यन्ति जत सूरया। देवता लोग जहां से मोहित हो जाते हैं, तो मतलब कहने का ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। तो ब्रह्मा हा यो ब्रह्मा विदधाति पूर्वम वेद ब्रह्म देवानाम प्रथम संभव। देवताओं से सबसे पहले ब्रह्मादि उत्पन्न हुए ब्रह्म। तो ब्रह्म के अंदर जो है ना, इस ब्रह्म से पहले भी कोई यार पूर्व पहले था, पहले कोई था। तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे भगवान विष्णु के नाभि कमल से। तो ब्रह्म भगवान विष्णु कहां से पैदा हुए? नहीं नहीं, देखो आप देवी भागवत पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव है। आनी बाप त्रिदेव है, ये तीनों देव आनी बाप जब अकेला अकेला रहा, किसी ने 3 लाख वर्ष तपस्या किया, किसी ने 3.5 लाख वर्ष तपस्या किया, किसी ने 5 लाख वर्ष तपस्या किया, लक्ष्मी ने 1 लाख तपस्या किया, दुर्गा ने 1 लाख तपस्या किया, सरस्वती ने 1 लाख तपस्या किया, तब जाकर के पद मिला इन लोगों। अन्य बात एक त्रिदेव है और तीनों ने विचार किया हम कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, कैसे आया। तो आकाशवाणी होती है। हाँ, हाँ? नहीं तब करो, नहीं आकाशवाणी होती है वो तो मणि क्या मणिभद्रन पूरा शक उसा है, उसमें चले जाओ तुमको पता चलेगा तुम कौन हो। तो तीनों एक विमान में बैठ करके चले गए, विमान आया उनके सामने, तो विमान में बैठ करके गया, जाते जाते जाते एक जगह में गया जहां जाने के बाद तीनों के तीनों स्त्री हो गया, ब्रह्मा विष्णु और तीनों स्त्री बन गया, तीनों स्त्री। हाँ तो वहां रहा तो देवी ने उनको उपदेश किया, उपदेश करके बोले तुमको पैदा करने वाला मैं ही हूं, तुमको पैदा करने वाला मैं ही हूं, तुम हमारी शक्ति से शक्तिमान होकर जीत। वह तीनों को तीन लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा दिया तीनों को।

और तीनों लेकर के चला, फिर पुरुष बन गया। तीनों जाओ तुम लोग सृष्टि रचना करो, तुम पालन करो, तीनों कर दिया, ये तुम्हारा सहायक बनेगा, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा, ये त्रिदेव है। ये त्रिदेव से परे एक देव है, वो शाश्वत देव है, ये कर्मदेव है। ये सब कर्म के द्वारा, साधन के द्वारा देवत्व को प्राप्त किया। वो त्रिदेव रहेगा, ये तीनों चला जाएगा, कर्म फल भोग समाप्त हो जाए। जैसे अभी आप सुनते हो कि ब्रह्मा जी की आयु कितना है, 100 वर्ष। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो ब्रह्मा जी की आयु का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उनका पतन हो जाएगा। ऐसे इसके बाद में भगवान विष्णु की आयु 100 वर्ष है, तो भगवान विष्णु का आयु समाप्त हो जाए। फिर रुद्र का आयु, शंकर जी का आयु 100 वर्ष है, इनका भी आयु समाप्त हो जाएगा तीनों का, तो फिर महान सृष्टि के क्रम आएगा। इनके भी त्रिदेव भी कर्म के अनुसार ही है, त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु, इसीलिए तीनों झगड़ा करते हैं ना, तीनों के घर में झगड़ा है। शंकर के घर में भी बेटा बेटी लेकर के, पत्नी को लेकर के झगड़ा है, वो इधर जाता है, वो इधर जाता है, उधर। ऐसा भगवान विष्णु की या लक्ष्मी चली जाती है, घोड़े के घर में चली जाती है। लक्ष्मी एक बार देख रहे थे, उनका भाई जो है ना आ रहा था, वो उसमें बैठ करके, वो अश्व अश्व है ना, क्या नाम उनका, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी लक्ष्मी ओ लक्ष्मी दो बार तीन बार चिल्लाया तो सुनी नहीं, वो आपने घोड़ा की तरफ देख रहा था। तो भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा तुमको घोड़ा प्रेम प्रिय लगता है, मैं प्रिय नहीं लगता हूं, मेरी बात सुनते नहीं, जाओ घोड़ा के शरीर में चले जाओ। अभी जब लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी घोड़े का स्वरूप बना, तो लक्ष्मी रोने लगी, हमारे मुक्ति कैसे होगी, हम तो ऐसी कुदृष्टि से नहीं देगा, मेरा भाई है आने बात, क्या नाम उसका, अश्व का नाम, समुद्र के समुद्र से मंथन से निकलो, उच्च श्रवा उच्च श्रवा, फिर जो है ना, तो कहते तुम्हारी मुक्ति होगी जब तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा होगा। तो भगवान विष्णु ने इसका अभिशाप दिया, लक्ष्मी चली गई कुरुक्षेत्र के मैदान में, घोड़ी बनकर रहने लगा, तपस्या करने लगे भगवान शंकर की। तो शंकर प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, बोले लक्ष्मी तू अपने पति को छोड़कर हमारे क्यों तपस्या कर रहे, साधन कर रहे, पति का पत्नी का काम है पति का सेवा करना, पति की आराधना करना। बोले यही तो बात है, इसीलिए तो मैं आपको सेवा बुला रहा हूं। बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे हमको अभिशाप दिया, मैं अब इससे मुक्त कैसे हूं। वो बोलता है कि तेरे गर्भ से पैदा होगा बच्चा, पैदा होगा तब जाकर तेरी मुक्ति होगी अश्व शरीर से। तो वो तो वैकुंठ में रहता, मैं तो कुरुक्षेत्र में रहता, मर्त्य लोक में, दोनों के संगम कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, जा मैं उनको प्रेरणा देता हूं। तो भगवान विष्णु जो अश्व बन करके वहां गया, तो उसमें जो पैदा हुआ हयग्रीव, हयग्रीव पैदा हुआ था लक्ष्मी, तो देखो झगड़ा आएगी नहीं वहां। इसीलिए पुराणों की कथा ऐसे बहुत आती है, एक नहीं दो नहीं। तो कहने का मतलब त्रिदेव कर्म के अधीन है, ये जो त्रिदेव है ना, ये कर्म, भगवान विष्णु है, भगवान रुद्र है, भगवान ये ब्रह्मा जी है, ये तीन देव तीनों गुणों के अंदर है। वो तीन गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये त्रिदेव त्रिगुण के अंदर है, इसीलिए कर्म गुण उसको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपके लिए तो बता रहे हैं ना, ये जो आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओगे तो कर्म तुमको बांधेगा नहीं, न इष्ट कर्म बांधेगा न पूर्त कर्म बांधेगा। उन लोग तो वो अधिकार के लिए तपस्या किया था, वो अधिकार हमको मिले, वो अधिकार हमको मिले,
वैसे हमारे आश्रम में समझो मंडलेश्वर जी है, फिर उसके चेला है, शिष्य है, तो शिष्यों में होड़ लगते रहते हैं, हमको कब मिलेगा पद, कोठारी पद मिलेगा, फलाना पद मिलेगा, उसके लिए मंडलेश्वर के आगे पीछे दौड़ता है कि नहीं, घूमता है कि नहीं घूमता है, आगे पीछे घूमता रहता है, हमको खुश होगा तो हमको मिलेगा, हमको मिलेगा पद, है नहीं बात। तो ऐसे जो पद के लिए तपस्या करता है तो उसको पद मिलता है, साधना करते हैं तो मिलता है, तुम साधना करो तुमको वो पद मिलेगा, पर लाखों लाखों वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष ने 1,00,000 वर्ष बैठ करके तपस्या किया था, भगवान ब्रह्मा जो है ना उनको दर्शन दिए, 1,00,000 वर्ष, वो देवता के हिसाब से बोलते हैं, हमारे हिसाब से नहीं। तो लाख वर्ष यहाँ तो एक दिन एक घंटा नहीं बैठा जाता है, सवाल पूरा हो गया, अरे आवे तो फिर तो ये 1,00,000 वर्ष की बात ही है। चलिए, तो इसीलिए नहीं के पूर्तम अक्षिपत, पूर्तम ने पूर्त कर्म, तो पूर्त कर्म उपलक्षित इष्ट कर्म भी समझ लेना, पूर्त नहीं बांधेगा तो इष्ट बांधेगा ऐसा नहीं समझ लेना, क्यों ज्ञान के अंदर शक्ति है अज्ञान को मिटाने का, जो अज्ञान नाश हो जाता है तो तुम्हारा संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, तीनों प्रकार के कर्म भस्मीभूत हो जाएगा। तो तुमको पद की जरूरत नहीं है, तुमको मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो संसार के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से आने वाला छुटकारा चाहते हो तो ज्ञान का आश्रय लो, इनका कहने का तात्पर्य ही है। तत्र ध्वनिम कुरुस्व, निष्ठा कुरुस्व, समाधिम कुरुस्व, वहां पर तुम समाधि करो, निष्ठा करो, कहा ज्ञान में, वो पूर्व ब्रह्म में, जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है ना उसका सब कर्म समाप्त हो जाता है। जथेदाग्नि समिद्योग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, तो ज्ञानाग्नि जो है ना सभी कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। तो उसके लिए न पूर्त कर्म रहता है, न संचित कर्म, न क्रियमान कर्म, न प्रारब्ध कर्म, न इष्ट कर्म, कोई भी कर्म नहीं रहता, सब कर्म भस्म होता है। तो सब कर्मों को एक साथ भस्म करने के लिए, अगर यदि तुम कहो कि मैंने भोग से कर्म समाप्त करूं, ये संभव नहीं है, ये अनंत जन्मों का कर्म, अनंत जन्म तुमको भोगना पड़ेगा। तो जब अनंत जन्म भोगोगे तो नया कर्म भी हो जाएगा, फिर क्रियामान कर्म हो जाएगा, फिर जन्म होता जाएगा, जन्म होता जाएगा, कर्म होता जाएगा, जन्म कर्म पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठर शयनम, करना ही पड़ेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। हाँ चलिए, एवं कुर्वतो मम किम ततो भवति, शिष्य प्रश्न करते महाराज ऐसा करने से मेरे को क्या होगा, क्या मिलेगा, मिलना चाहिए ना कुछ। इत्याह नहीं इति ते, नहीं ते वो इस मंत्र में जो आया उसका प्रतीक उठाया, नहीं ते पूर्त स्मार्त कर्म इष्टम श्रोतम स कर्म अक्षिपन न पुनर्भोग हेतु बदनाती। देखा, भोग के लिए तुमको कर्म बंधेगा नहीं, न कर्म बद्धते, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्म के द्वारा बन जाता है। तो कल ऐसा करने से तुमको कर्म बंधेगा नहीं, कैसा करने से, ये जो यहां बता रहा है देखा ने? नहीं चेति, नहीं ते पूर्तम स्मार्तम कर्म इष्टम श्रोतम स, श्रोत कर्म स्मार्त कर्म, इष्ट कर्म पूर्त कर्म, ये दोनों कर्म क्या नहीं करेगा, अक्षिफन न पुनर्भोग हेतु हो, पुनर्भोग देने के लिए आनी बात, फिर आगे जन्म लेने के लिए तुमको नहीं बंधेगा, न बदनाते ही, क्यों न बदनाता है, क्यों नहीं बंधेगा, ज्ञान अग्नि न सविजेश सविजेश दग्धत्वा,
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमहो पंडितम बुधा, आया कि नहीं? तो ज्ञान रूपी अग्नि जो है सबीज, सबीज समझ रहे ना, बीज के साथ, बीज वो अविद्या अज्ञान, तो अज्ञान का जब नाश करेगा तो कर्म किसके आश्रम में रहेगा? देखो विद्या अविद्या नियंती तेजस्मीर संगवत, विद्या अविद्या को नाश करेगा, जब अविद्या नाश हो जाएगा, अविद्या के आश्रम में रहने वाला इष्ट कर्म पूर्त कर्म श्रोत कर्म स्मार्त कर्म रहेगा, क्यों? कारण नाशात कार्य नाश, जब तंतु को तुमने जला दिया तो तंतु के आश्रम में रहने वाला जो वस्त्र, वस्त्र किसके आश्रम में रहेगा? जब तुमने धागे को जला दिया बसरा रहेगा धागे के आश्रम में क्या? नहीं समझे? रस्सी को जला दिया सर पर रह जाएगा ना? तो कहते कारण है क्या? अविद्या। अविद्या निवृत्ति मुक्षः, मुक्ति की अविद्या की अज्ञान की निवृत्ति का नाम। तो अविद्या को तुमने नाश कैसे किया? विद्या के द्वारा। विद्या अविद्या निहंती है, विद्या अविद्या को हनन करेगा, नाश करेगा, जलाएगा, भस्म करेगा। तो विद्या जो अविद्या को जला दिया तो अविद्या के आश्रम में रहने वाला सुबह सुबह कर्म, इष्ट पूर्त कर्म, श्रोत स्मार्त कर्म, बड़े बड़े कर्म, छोटे छोटे कर्म, कोई भी कर्म क्यों ना हो, अनिवार्य वो कर्म किसके आश्रम में रहेगा? जब कारण नाश हो गया तो कार्य किसके आश्रम में रहेगा? कहना बाप मर गया और बेटा सब अनाथ हो गया, अनाश्रय हो गया, इनको आश्रय कौन देगा? तो सब धारण देता है इसका आश्रय तो केवल भगवान ही है, बोलता है कि नहीं? इसका आश्रय भगवान ही है। ऐसे तो जब तुमने अविद्या को नाश कर दिया तो अविद्या है तो भगवान है ना, इसीलिए हमारे पंचदशी में हुआ प्रसंग आता है, माया का दो बेटा है, एक ईश्वर है एक जीव है। माया का दो बेटा है, जीव और ईश्वर है, आनी बात जीव और ईश्वर जो है माया का बेटा है, परंतु एक माया, माया का अविद्या, अविद्या प्रधान है, एक माया प्रधान है, आनी बात अभी माया में पड़ा हुआ जो ब्रह्म का प्रतिबिंब वो ईश्वर बना, और अविद्या में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वो जीव बना। मायावश न जीवेश करोति, माया से अविद्या से स्वयं भवति, माया आवश्य जीव ईश्वर बना देता है। माया, माया के जो अविद्या या प्रधान है ना, तम प्रधान अविद्या है, तो उसमें जो पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनेगा जीव, और माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास वो बनेगा ईश्वर। हा एक ही उपाधि, सत्य प्रधान उपाधि और तम प्रधान उपाधि, तम प्रधान आनी बात कैसे? देखो एक घड़ा है, घड़ा कांच से बना हुआ है, कांच से जमते ना शीशा, और एक घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, दो घड़ा है, तो दोनों घड़ा में तुमने दिया रखा, रखा कि नहीं? दीपक तो दोनों में रखा, परंतु एक घड़ा का प्रकाश बाहर जाता है, दूसरा घड़ा का दीपक या बाहर नहीं जाता, क्या कारण है? आवरण तो है, एक सत्य प्रधान आवरण है, माने कांस प्रधान स्वच्छ उपाधि है, प्रकाश जो है बाहर जाता है, स्वच्छ प्रधान जो उपाधि है, स्वच्छ उपाधि है कि नहीं? कांस का जो घड़ा है स्वच्छ उपाधि है, उसका प्रकाश बाहर जाता है, और जो मलिन मलिन उपाधि है
कौन मिट्टी, तो मिट्टी में रहा हुआ